FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। श्रोताओं, आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की नौमी तिथि, तदनुसार 30 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 और 36 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

बखीदारा कार्यक्रम में अभी आपने सुना पीयूष जी की आवाज में ये भक्ति रचना। कार्यक्रम में अब सुनिए कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये भक्ति रचना।

नितिन मुकेश और साथियों की आवाजों में अभी आपने सुनी ये भक्ति रचना। कार्यक्रम के अंत में सुनिए महेंद्र कपूर और साथियों को

0: सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम भक्ति धारा। आज इस कार्यक्रम में आपने सुना नितिन मुकेश, कविता कृष्णमूर्ति, पीयूष और महेंद्र कपूर को। ये आकाशवाणी बैतूल है।
1: सुनिए कार्यक्रम महिला जगत सोमवार से शनिवार सुबह 10:30 पर, जिसमें होगी मुलाकातें नित नए मेहमानों से सोम, बुध, गुरु और शनिवार को।
2: हमारी मुलाकातें हमेशा यूं ही चलती रहे।
1: साथ ही किचन टिप्स, पाक विधियां, प्रेरक व्यक्तित्व और जीवन शैली। मंगलवार और शुक्रवार को सखियों की पसंद, जिसमें आपको सुनवाएंगे आप ही के पसंद के चंद गीत।
3: पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में।
1: सुनिएगा जरूर आपका अपना कार्यक्रम महिला जगत FM 103.1 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर।
0: यह आकाशवाणी बैतूल है। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए आज का चिंतन।
4: वैसे तो ईश्वर निर्गुण निराकार है।

0: है, लेकिन उसके सगुण साकार रूप में दर्शन निश्चल प्रेम में होते हैं। जब गाय बछड़े को दूध पिलाते हुए चाटती है, जब चिड़िया अपने चूजे को दाना लाकर खिलाती है, जब माँ अपने बच्चे को गोद में उठाकर उसका मुख चूमती है, जब पापा अपनी बच्ची को खिलौना लाकर देते हैं और वो खुश होकर नाचने लगती है, जब बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है, जब पत्नी अपने पति को मनपसंद खाना खिलाती है, जब गुरुजी अपने शिष्य के सर पर आशीर्वाद का हाथ फेरते हैं, जब बिछड़े हुए दोस्त जोश के साथ गले मिलते हैं, जब जवान बेटा अपनी बूढ़ी माँ के सिर से पानी का घड़ा उतारकर अपने सर पर रख लेता है, जब कोई संत रोते हुए बच्चे को मिठाई का प्रसाद देकर हंसता है, तब इन सभी दशाओं में व्यक्त प्रेम के रूप में हमें ईश्वर के दर्शन होते हैं। यह संसार ईश्वर की सुंदर सृष्टि है। वे लाखों वर्षों से जीव जंतुओं नर नारियों के आपसी प्रेम के कारण टिकी हुई है। यदि इस संसार में प्रेम न हो तो यह शीघ्र नष्ट हो जाए और इसमें प्राणी मात्र के दर्शन दुर्लभ हो जाएं। स्पष्ट है कि इस क्षणभंगुर संसार की लंबी आयु प्रेम के कारण ही मिली है, इसलिए इसमें दो मत नहीं कि ईश्वर प्रेम रूप ही है। अतः उसका हम सबको संदेश भी यही है कि हम अपने जीवन में प्रेम को सबसे ऊंचा स्थान दें, आपस में हिल मिल कर रहें, आपस में सहयोग करें, एक दूसरे की मदद करें, संघर्ष और विवाद को न बढ़ाएं। प्रेम का ही दूसरा नाम अहिंसा है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम किसी को दुख न पहुंचाएं, किसी को सताएं नहीं, किसी से झगड़ा न करें, किसी प्रकार की हिंसा न करें। भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, ईश्वर पुत्र ईसा मसीह ने हमें अहिंसा का उपदेश दिया, उसे हमारे धर्मों का आधार बनाया। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी अहिंसा के पुजारी थे। दीन दुखियों की सेवा ही उनकी पूजा थी। यही अहिंसा का आदर्श है, प्रेम की पराकाष्ठा है। इसके विपरीत किसी के प्राण लेना, आत्महत्या करना सबसे बड़ी हिंसा है। यह ईश्वर की मर्जी के खिलाफ है। इसलिए हर किसी को हिंसा के अपराध का दंड भुगतना ही पड़ता है। अतः हमें संकल्प लेना चाहिए, प्रेम का नव बीज बोने, मित्र दिल से दिल मिलाओ, आंसुओं को बदल दो मुस्कान में, कुछ कर दिखाओ, नेह भरकर हृदय में तुम प्रीत के नवगीत गाओ, दूरियों का तम हटाने प्रेम का।
1: आप सुन रहे थे आज का चिंतन, यह आकाशवाणी बैतूल है।
2: प्रिय किसान भाइयों, जरूर सुनिए अपना मनपसंद कार्यक्रम किसान वाणी, आकाशवाणी बैतूल FM 103.1 MHz पर रोज शाम 7:20 से 8 बजे तक, जिसमें आपके लिए है कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी और ग्राम विकास पर ढेर सारी जानकारियाँ।
3: 12% से ज्यादा अगर नमी का होगा तो वो बीज आपका खराब होगा।
4: प्राकृतिक खेती में हमें विभिन्न प्रकार की फसलों को लेना चाहिए।
5: डेयरी फार्म में दूध में फेट का परसेंटेज यदि बढ़ाना है।
2: स्थानीय लोकगीत, मंडी भाव और मौसम का पूरा हाल चाल भी। तो सुनते रहिएगा कार्यक्रम किसान वाणी, ट्यून करें आकाशवाणी बैतूल 103.1 MHz पर, या डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप।
6: आपके व्हाट्सएप संदेशों और गीतों पर केंद्रित फरमाइशी प्रोग्राम आपके संदेश आपके गीत सुनिए हर शुक्रवार रात 8 बजे से। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7141234722।
1: यह आकाशवाणी बैतूल है। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरित मानस गान। कलाकार हैं शोभना राव, कविता कृष्णमूर्ति और साथी।

अपने को समर्पित कर देने के लिए रावण ने सीता को एक माह का समय दिया था। इस अवधि की समाप्ति पर सीता जी के लिए अपना अंत हो जाने से अधिक व्याकुलता का कारण पति वियोग है। वो त्रिजटा से कुछ ऐसा उपाय करने की प्रार्थना करती हैं, जिससे वो शीघ्र शरीर त्याग कर सकें। त्रिजटा उन्हें धीरज बंधाती हैं। हताश सीता अशोक वृक्ष से प्रार्थना करती हैं, तुम्हारे नए कोमल पत्ते अग्नि के समान दिख रहे हैं, तुम ही मुझ पर अग्नि वर्षा कर दो ताकि मेरी विरह व्यथा का अंत हो जाए। अशोक वृक्ष की डाल पर बैठे हनुमान जनक नंदिनी के शोक सने वचन सुनकर विचलित हो जाते हैं। वह श्रीराम की अंगूठी सीता जी के सामने गिरा देते हैं। मुद्रा का पहचान कर सीता जी को आश्चर्य होता है। श्रीराम की महिमा के गान के स्वर सुनकर वह राम कथा रूपी अमृत बरसाने वाले से अपने सामने प्रकट होने की प्रार्थना करती हैं।

आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। कलाकार थे शोभना राव, कविता कृष्णमूर्ति और साथी। यह आकाशवाणी बैतूल है। श्रोताओं, अब वक्त है लोकगीतों के प्रोग्राम लोक रंजनी का।

0: bastante.
1: आप सुन रहे थे लोक गीतों का प्रोग्राम लोक रंजनी। आज इस कार्यक्रम में आपने सुना मदन मोहन ब्रजवासी और साथियों को। यह आकाशवाणी बैतूल है। अब वक्त है समाचारों का, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर दो नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजी सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
3: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की जो

0: समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम मिल रहे हैं।
1: गृहमंत्री ने ड्रोन रडार निगरानी टावर अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हनाई 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हनाई की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 23 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कल कहा कि तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एज एआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। श्रोताओं, चलिए अब नजर डालते हैं हमारे केंद्र से आज की प्रसारण सभाओं में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं अभी के शेष कार्यक्रमों की। अब से कुछ ही देर बाद यानी सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे क्लासिक फिल्मी गीतों का प्रोग्राम यादों के झरोके से। कुछ जन उपयोगी सूचनाओं के साथ हम हाजिर होंगे सुबह सवेरे में सुबह 7:50 पर। और आज की इसी सभा में सुबह 8:30 सुनिए फोन इन प्रोग्राम हेलो FM बैतूल। जिले की चिट्ठी कार्यक्रम सुनिए आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से आज सुबह 10:00 बजे 10:05 पर प्रसारित होगा फरमाइशी फिल्म संगीत का प्रोग्राम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, कार्यक्रम महिला जगत सुनिए आज सुबह 10:30 बजे।

इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे वर्ल्ड नो टोबैको डे पर चर्चा, नशा मुक्ति में महिलाओं की भूमिका। इसके अलावा इस कार्यक्रम के श्रृंखला मुलाकात में आज आप सुनेंगे लोक संस्कृति संरक्षण में महिलाएं, इस विषय पर लोक कलाकार या जनजाति महिला कलाकार से बातचीत। श्रृंखला बागवानी पर सुझाव में आज का विषय रहेगा गमलों में सब्जियां उगाने के आसान तरीके। इन सब के अलावा श्रृंखला कल के आकर्षण और कुछ फिल्म संगीत। यह वाणी कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5:30 बजे। इस कार्यक्रम में आज सुनिए चर्चा, लिखने पढ़ने की आदत बनाए रखें। इसके अलावा इस कार्यक्रम के श्रृंखला स्तंभ सेहत मंत्र में आज का विषय रहेगा अच्छी नींद अच्छी सेहत। इन सब के अलावा श्रृंखला अवसर, कल के आकर्षण और कुछ फिल्म संगीत। लोक संगीत ये कार्यक्रम सुनिए आज शाम 6:05 पर। कलाकार होंगे सुखदेव गुजरे और साथी। गैर फिल्मी गजलों भजनों कव्वालियों और गीतों का प्रोग्राम सब रस का समय रहेगा शाम 6:50। श्रोताओं कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:20 पर। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे आकाशवाणी गांव में बातें नई गीत नए। फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम प्रसारित होगा रात 8:00। कार्यक्रम युगल गीत रात 8:30। फिल्म संगीत का ही प्रोग्राम मन भावन का समय रहेगा रात 10:00। और सभा के अंत में रात 10:30 आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज सुनिए राजेश्वरी चौधरी को।

श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि आज सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम महिला जगत में आप सुनेंगे वर्ल्ड नो टोबैको डे पर चर्चा, नशा मुक्ति में महिलाओं की भूमिका। इसके अलावा इस कार्यक्रम में मिलिए लोक कलाकार या जनजातीय महिला कलाकार से, जिनसे लोक संस्कृति संरक्षण में महिलाएं, इस विषय पर चर्चा की जाएगी। बागवानी पर सुझाव में आज का विषय रहेगा गमलों में सब्जियां उगाने के आसान तरीके। इन सब के अलावा श्रृंखला कल के आकर्षण और कुछ फिल्म संगीत।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग वांग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज गया पहुंचेंगे। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी से होगी मुलाकात। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा बीएसएफ को नई जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वैष्णो देवी धाम के दर्शन किए। प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर बेहतर सुविधाओं के लिए व्यवस्थाओं का अध्ययन जारी। और आईपीएल में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट गहराया। कल आरसीबी से होगा फाइनल मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग वांग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज बिहार के गया पहुंचेंगे। यहां वे महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वे दिल्ली पहुंचकर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। वहीं सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी अहम बैठक होगी, जिसमें दोनों देशों के आपसी संबंधों पर चर्चा होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को नई और अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। गुजरात के भुज में कल भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई चौकियों का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने ये बात कही। श्री शाह ने बताया कि अब सिर्फ सीमा की रखवाली नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा की नई अवधारणा पर काम होगा। श्री शाह ने कहा
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही है। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम दे रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल माता वैष्णो देवी धाम के दर्शन किए। इस मौके पर उन्होंने स्थानीय मीडिया से बात करते हुए बताया कि राज्य सरकार का एक दल यहां की व्यवस्थाओं का अध्ययन करने आया है। डॉ. यादव ने कहा कि महाकाल मंदिर, ओंकारेश्वर, भूशाला जैसे धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए देश के बड़े तीर्थस्थलों से सीख ली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल्स पर भी होगा। आकाशवाणी से इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में राष्ट्रीय खरीफ कृषि सम्मेलन में कहा है कि इस बार खरीफ सीजन के लिए जरूरत से 11% ज्यादा बीज उपलब्ध हैं। मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए 1.74 लाख क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार भी तैयार रखा गया है। किसानों को योजनाओं का सीधा फायदा मिले इसके लिए अब तक करीब 9.76 करोड़ फार्मर ITV बनाई जा चुकी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि तिरुवनंतपुरम के सेमी कंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश की पहली एज AI चिप नेत्रा A2000 तैयार कर ली है। ये चिप उन्नत 12 नैनोमीटर तकनीक पर आधारित है। इसका इस्तेमाल निगरानी, ड्रोन, रोबोटिक्स और ऑटोमोटिव जैसे क्षेत्रों में होगा। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार के डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत एक बड़ी कामयाबी है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के चलते सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा को लेकर अहम कदम उठाया है। सरकारी तेल कंपनियों को 30 दिन का LPG भंडार सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और LPG की कोई कमी नहीं है। किसी भी वितरण केंद्र पर आपूर्ति बाधित नहीं हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की PM सूर्यघर योजना प्रदेश में रंग ला रही है। प्रदेश में अब तक 1,29,000 से ज्यादा घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लग चुके हैं और 456 मेगावाट से ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। लाभार्थियों को 900 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी भी दी जा चुकी है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के 6 लाख घरों को इस योजना से जोड़ना है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: बीके बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश ने इस साल गेहूं खरीदी में नया रिकॉर्ड बनाया है।

0: سو لاکھ میٹرک ٹن کے لکش کے مقابلے 104,22,000 میٹرک ٹن سے زیادہ گیہوں خریدا گیا ہے۔ سرکار کی طرف سے 13 لاکھ سے ادھک کسانوں کو 23,708 کروڑ روپے کا بھگتان بھی کیا جا چکا ہے۔ مکھیہ منتری ڈاکٹر موہن یادو نے بتایا
1: کہ یہ گیہوں خریدنے کا کسانوں کی سنکھیا میں مدھیہ پردیش پورے دیش میں پرتھم استھان پر ہے اور سروادھک لمبے سمے تک کسی راجیہ میں گیہوں خریدی کی ویوستھا جاری رکھی تو وہ بھی مدھیہ پردیش۔ سروادھک گیہوں اپارجن والے راجیہ کی طرف سے دیکھتا ہوں تو گیہوں کی ماترا میں بھی پنجاب کے بعد مدھیہ پردیش دوسرا استھان ہے جس کے پاس گیہوں کا اتنا وپل اتپادن کے بعد انہوں نے پروسیسنگ کی ہے۔
0: भोपाल में एक्ट्रेस प्रीशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने कल पति समर्थ सिंह और सास किरबाला सिंह को 5-5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। सास पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप है। 12 मई की रात कटारा हिल्स में प्रीशा की मौत हुई थी। ससुराल पक्ष से आत्महत्या बता रहा है जबकि मायके वाले हत्या का आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ कल परिवार ने ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर गंगा में प्रीशा की अस्थियां विसर्जित की। केंद्र सरकार ने पेंच, कान्हा और बांधवगढ़ को यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला किया है। इसके लिए राज्य सरकार का प्रस्ताव जल्द ही यूनेस्को भेजा जाएगा। ये दर्जा मिलने के बाद पेंच को अंतर्राष्ट्रीय पहचान के साथ साथ रिसर्च के लिए विदेशी फंडिंग भी मिलेगी। प्रदेश में 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा की तारीखें बदल दी गई हैं। राज्य शिक्षा केंद्र ने कल नई समय सारणी जारी की। पहले ये परीक्षा 1 से 6 जून के बीच होनी थी लेकिन अब ये 16 से 23 जून तक होगी। इसके बाद 24 से 28 जून के बीच कॉपियां जांची जाएंगी। उर्दू के मशहूर शायर और पद्मश्री डॉक्टर बशीर बद्र को कल भोपाल में श्रद्धांजलि दी गई। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी में हुई शोक सभा में बड़ी तादाद में शायर, साहित्यकार और नागरिक जमा हुए। 28 मई को उनका निधन हो गया था। भारत सरकार ने उन्हें 1999 में पद्मश्री से नवाजा था। और अब बात मौसम की। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने करवट ली है। कल ग्वालियर समेत कई जिलों में बारिश हुई और तापमान एक झटके में 10 डिग्री तक गिर गया। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, भिंडतिया, छतरपुर, पन्ना, नीमच समेत 9 जिलों में ओले और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि कल से ज्यादातर जिलों में बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। आईपीएल के दूसरे क्वालिफायर में कल गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 214 रन बनाए लेकिन गुजरात ने लक्ष्य 18 ओवर से पहले ही हासिल कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने सिर्फ 53 गेंदों पर 104 रन की धमाकेदार पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच बने। कल अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे फाइनल में गुजरात का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बड़वानी में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 2027 तक सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने का काम जारी है। शिवपुरी में कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में टीकाकरण महाअभियान की प्रगति का जायजा लिया। झाबुआ में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर ने इस साल दुर्घटनाओं में 50% कमी लाने का लक्ष्य तय किया। आगरमालवा में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत दोषी पाए गए लोगों पर अपर कलेक्टर ने कार्रवाई की है। अनूपपुर में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 6 लोगों की मौत हो गई है और 40 से ज्यादा लोग घायल हैं। ग्वालियर में सरकारी भवनों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर पीएम सूर्य घर योजना के तहत बिजली बचत का काम किया जा रहा है। डिंडौरी में किसानों को खाद अब ई टोकन प्रणाली के जरिए दी जाएगी ताकि समय पर और आसानी से उर्वरक मिल सके। पन्ना में गर्मियों में पेयजल समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इंदौर के ग्राम आशापुरा में 10,000 गौ माताओं की देखभाल के लिए एक बड़ी गौशाला विकसित की जा रही है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। सुबह के 7:20 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए क्लासिक फिल्मी गीतों का प्रोग्राम यादों के झरोके से।

कार्यक्रम के आरंभ में आपको सुनवाते हैं भरत व्यास का लिखा गीत फिल्म बेदर्द जमाना क्या जाने से। संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

हम इधर, हम

0: आनंद बख्शी का लिखा गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में फिल्म श्रीमान फंटूस से। संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: एक पागल प्रेमी मेरा दर्द ना कोई जान।
0: कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं मन अडे का गाया ये गाना, बोल योगेश के, संगीत सलील चौधरी का, फिल्म का नाम मेरे भैया।

0: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से?
1: अच्छा बाबा, लो पास से शुरू करती हूँ।

भूपेंद्र और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में फिल्म गृह प्रवेश के इस गाने के साथ ही कार्यक्रम यादों के झरोके से संपन्न होता है।

आप सुन रहे थे क्लासिक फिल्में गीतों का प्रोग्राम यादों के झरोके से। हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए।

0: आज की सुबह सवेरे।
1: सुबह सवेरे
0: सुबह सवेरे में लीजिए सुनिए आज की पहली सूचना। शासन के निर्देशानुसार कल यानी 31 मई 2026 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज के युवाओं और बच्चों को तंबाकू से बने उत्पादों के सेवन से होने वाली गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, टीबी, हृदय रोग से बचाना और जागरूक करना है। युवाओं और समाज को नशे से बचाव के लिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर जिले में जन जागृति कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके तहत तंबाकू से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में पोस्टर प्रदर्शनी के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। इसके साथ ही स्कूल कॉलेजों के विशेष समर कैंप में चित्रकला, निबंध लेखन, भाषण, रंगोली प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही मैराथन, प्रभात फेरी, नुक्कड़ नाटक, गीत संगीत, वॉल बिल्डिंग जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इस दौरान स्कूल और कॉलेज के आसपास 100 मीटर के दायरे में स्थित गुटखा दुकानों को प्रतिबंधित किया जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय नशा मुक्ति हेल्पलाइन नंबर 14446 का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत जिले के सभी विभाग, स्वैच्छिक संस्थाएं, गैर सरकारी संगठन, धार्मिक संगठन मिलकर गतिविधियों में सहभागिता करेंगे।

0: अगली सूचना, पीडीएस से राशन सामग्री लेने वाले हितग्राही को ईकेवाईसी कराने के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। वे अपने एंड्रॉइड फोन पर अपना ईकेवाईसी ऐप को डाउनलोड कर अपने फेस वेरिफिकेशन के माध्यम से ईकेवाईसी कर सकता है। वृद्ध हितग्राही और बच्चों की ईकेवाईसी भी इस ऐप से कर सकते हैं। परिवार के किसी भी एक सदस्य के मोबाइल से ही सभी सदस्यों की ईकेवाईसी की जा सकती है। साथ ही मध्य प्रदेश से बाहर गए हितग्राही किसी भी प्रदेश में इस ऐप पर अपना ईकेवाईसी कर सकते हैं। हितग्राही घर बैठे अपनी ईकेवाईसी करा सकते हैं और बिना किसी समस्या के राशन प्राप्त कर सकते हैं। हितग्राही जिन्होंने अब तक अपनी ईकेवाईसी नहीं कराई है, वे घर बैठे अपने मोबाइल फोन पर ही अपना ईकेवाईसी कर लें, जिससे आगामी माहों में आपको बिना किसी बाधा के राशन प्राप्त हो सके।
1: प्रिय किसान भाइयों, जरूर सुनिए अपना मनपसंद कार्यक्रम किसान वाणी, आकाशवाणी बैतूल FM 103.1 MHz पर रोज शाम 7:20 से 8 बजे तक, जिसमें आपके लिए है कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी और ग्राम विकास पर ढेर सारी जानकारियाँ।
2: 12 से ज्यादा % अगर नमी का होगा तो वो बीज आपका खराब हो।
3: प्राकृतिक खेती में हमें विभिन्न प्रकार की फसलों को लेना चाहिए।
4: डेयरी फार्म में दूध में फेट का % यदि बढ़ाना है,
1: स्थानीय लोकगीत, मंडी भाव और मौसम का पूरा हाल चाल भी, तो सुनते रहिएगा कार्यक्रम किसान वाणी, ट्यून करें आकाशवाणी बैतूल 103.1 MHz पर या डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से जिले में 20 स्वास्थ्य शिविर लगाने की प्राप्त स्वीकृति के परिपालन में 30 मई को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहपुर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार शिविर में जिला चिकित्सालय से आए शिशु रोग, स्त्री रोग, दंत रोग, मानसिक रोग विशेषज्ञ द्वारा जांच और उपचार किया जाएगा। साथ ही शिविर में संभावित हृदय रोग के मरीज के लिए भी शिविर आयोजन किया जाएगा, जिसमें विशेषज्ञ द्वारा इको जांच भी की जाएगी। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ने आमजन से शिविर का लाभ लेने की अपील की है।
5: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहुं सुदर्शन।
6: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
0: शासकीय एकलव्य महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोसनी बैतूल में इस वर्ष संस्था में प्रवेश को लेकर छात्राओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। विगत सत्र में सभी 10 ट्रेंडों में 100% प्रवेश होने के साथ ही बैतूल जिले ने महिला प्रवेश के क्षेत्र में पूरे मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। संस्था में इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, मैकेनिक कंप्यूटर हार्डवेयर, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और सिस्टम मेंटेनेंस, कोपा, स्टेनो हिंदी, स्टेनो अंग्रेजी, ऑफिस असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग तथा स्विंग सीविंग टेक्नोलॉजी, कटिंग और टेलरिंग जैसे रोजगार परक ट्रेड संचालित है, जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त कर छात्राएं देश विदेश में प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार कर रही हैं। प्रवेश अधिकारी के अनुसार इस संस्था में मध्य प्रदेश शासन की एकलव्य योजना के अंतर्गत संस्था के अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्राओं को निःशुल्क छात्रावास और भोजन सुविधा के साथ ₹1000 प्रति माह छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। इससे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को बड़ी राहत मिल रही है तथा वे सुरक्षित वातावरण में रहकर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। इस संस्था में सभी वर्ग की छात्राएं प्रवेश ले सकती हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्राओं के लिए 50% सीटें आरक्षित है। महिला ITI कोसमी में संचालित सभी 10 ट्रेंड ट्रेड छात्राओं के कौशल उन्नयन, रोजगार और स्वरोजगार की दिशा में अत्यंत सहायक सिद्ध हो रही है। स्विंग टेक्नोलॉजी ट्रेड में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता केवल 8वीं उत्तीर्ण निर्धारित है। वहीं अंग्रेजी विषय में रुचि रखने वाली छात्राओं के लिए स्टेनो अंग्रेजी ट्रेड रोजगार का उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। इसी प्रकार फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग आधुनिक और तेजी से उभरता हुआ रोजगार परक ट्रेड है, जिसमें भविष्य की व्यापक संभावनाएं हैं।
7: सुबह सवेरे
0: आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है

0: हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दे?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइन 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
3: रिगार्डिंग द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट टू कीप द प्राइस स्टेबल, भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की, सो दीज ऑल एफर्ट्स हैव बीन डन टू कीप द प्राइस स्टेबल। वी आर वर्किंग ऑन द स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स ऑल्सो, और मार्केटिंग कंपनीज को वर्कआउट करने के लिए कहा है कि एलपीजी का जो रिजर्व है दैट शुड बी मिनिमम 30 डेज रिजर्व, एंड वी आर वर्किंग ऑन इट, एंड सिमिलरली फॉर क्रूड ऑल्सो वी आर वर्किंग।
2: संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।
4: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
2: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रही है। श्री महाजन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जा रही हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारी पोत निसोस केरोस होर्मुस जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6वें चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने तीव्र प्रगति की है। सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर 90.6% हो गए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों के टीकाकरण का आंकड़ा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं की डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। म्यांमार के राष्ट्रपति यूंग मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यूंग मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमार के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति की कल म्यांमार भारत

0: संचार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमार और भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
2: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार।
0: इस यात्रा के अंतर्गत म्यांमार के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं और शहर के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
3: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया। एक चतुर्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेगा और बीएसएफ के जवानों की जो प्रमुख जिम्मेदारी भी है। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के 2 सप्ताह में होगी। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आगे ऐसी कोई चूक न हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पंजाब नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1977 वार्ड में से 958 वार्ड जीत लिए हैं। कांग्रेस को 397, श्रोमणी अकाली दल एसएडी को 192 और भाजपा को 172 वार्ड में जीत हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी को केवल 7 वार्ड मिले। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 251 वार्ड जीतकर 30 स्थान हासिल किया। गोवा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1987 में इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और वो भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज पणजी स्थित कला अकादमी में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे।
4: गोवा में आज आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह राज्य के पिछले 4 दशकों की उल्लेखनीय प्रगति और विकास यात्रा को रेखांकित करेगा। 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद 1967 में हुए ऐतिहासिक जनपद संग्रह ने गोवा की अलग पहचान को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1987 में कोंकणी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद राज्य गठन का रास्ता साफ हुआ और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। आज के समारोह में कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इसके साथ

0: थी कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण, पुरस्कार वितरण और नागरिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलों की शुरुआत भी की जाएगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति गोवा स्थित CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारेक्काल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बहुत तेज बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की भी आशंका व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हांगकांग में चल रही एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अब तक कुल 8 पदक अपने नाम किए। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय एथलीटों ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है जया भारती।
2: धन्यवाद कनक। नीट UG पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आज के अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने सर्वोच्च न्यायालय का बयान दिया है, जवाबदेही तय होने तक नहीं रुकेंगे पेपर लीक मामले। देशबंधु और नवभारत टाइम्स ने CBSE की 12वीं की आंसर शीट भी डिजी लॉकर में भेजे जाने की जानकारी दी है। पत्र लिखता है, यहीं से करा सकेंगे रिवैल्यूएशन। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करने की अनिवार्यता से छूट देने का सर्वोच्च न्यायालय का इनकार भी अनेक अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, समय सीमा 1 साल बढ़ी। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। पत्र ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए TET पास करना ही होगा। जनसत्ता ने कर्नाटक में कांग्रेस की बैठक आज होने का समाचार देते हुए लिखा है, DK शिवकुमार को चुना जाएगा नेता। पंजाब केसरी ने सिद्धरमैया की सिद्धि शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है, कर्नाटक में जितनी शालीनता और शांति के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है उसे भारतीय लोकतंत्र की जीवंत ताकत कहा जा सकता है। दैनिक जागरण ने घरेलू उड़ानों में कटौती से हवाई किराया 30% तक बढ़ने का समाचार दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी भी कई अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, अटका मॉनसून 7 दिन के बाद देगा दस्तक, 10% कम होगी बारिश। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, बेवफा मॉनसून। दैनिक भास्कर लिखता है, इस साल सूखे का खतरा। हालांकि पत्र ने बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर पूर्व में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का LPG भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइन 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश माघो। द हेडलाइंस, सेंटर आस्क्स ऑयल मार्केटिंग कंपनीज टू बिल्ड 30 डेज LPG रिजर्व्स एज वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट परसिस्ट्स। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे शोज मेजर गेन्स इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज राइज टू 90.6%। म्यांमार प्रेसिडेंट मीन आउंग फ्लाइंग टू अराइव इन इंडिया दिस मॉर्निंग ऑन अ 5-डे विजिट। IMD forecasts heavy rain.

0: पठान बात कर रहे हैं सर, परभणी महाराष्ट्र से।
1: रहीम खान जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
0: जी हाँ सर, अतुल बाग आकाशवाणी हमारे परभणी में नहीं बल्कि हमारे भारत में धूम मचा रही है। और हम भी जब गुरुवार का दिन आता है तो ऐसा कहते हैं ना, वो काटे नहीं कटते हैं लम्हे इंतजार के, नजरें जमा के बैठते हैं हम सभी श्रोता बैतूल आकाशवाणी के इंतजार में।
1: क्या बात है रहीम जी, और कैसा चल रहा है, क्या माहौल है आपके क्षेत्र में अभी?
0: अभी तो देखिए सर, माहौल तो बड़ा बढ़िया है और हम सभी हमारे श्रोताओं के परिवार की ओर से आपको बकरीद ईद की शुभकामनाएं और मुबारकबाद देते हैं।
1: आप सभी श्रोताओं को हमारे आकाशवाणी परिवार की ओर से भी ढेर सारी शुभकामनाएं रहीम जी। और
0: बहुत शुक्रिया सर। अभी जी, देखिए परभणी का माहौल ऐसा है
1: जी
0: कि बहुत सारी धूप बरस रही है अंगारों में जैसी, और धूप के अंदर हम तो आरसीसी बिल्डिंग वर्कर का काम करते हैं
1: जी।
0: तो स्टील सीधा करना, स्टील बनाना, कलम फिर फिट करना, स्लैब की बांधी करना, यानी गर्म चीज में गर्म काम करते हैं। तो कैसा है सर, इतनी अड़चन और इतनी परेशानी हो रही है। तो देखिए धूप का मौसम खत्म होने जा रहा है और हमारी सभी नागरिकों से, अच्छे देश के अच्छे नागरिकों से प्रार्थना और दुआएं हैं कि जल्द से जल्द हमारे भारत में बारिश अच्छी से चालू हो जाए, ताकि हमारे सभी शेतकरी बंधु भाई बंधु यानी पीक मसल फर्स्ट क्लास आए।
1: बिल्कुल आज आपने ईद के दिन इतनी दुआएं मांगी हैं तो जरूर उसे पूरा किया जाएगा और खुदा जो है वो सभी की सुनता है। और आज कौन से गीत की आप फरमाइश लेकर आए हैं रहीम जी?
0: हाँ सर, आज का फिल्म का नाम है कुर्बानी, जिसमें फिरोज खान जी और अमजद खान जी ने भूमिकाएं निभाई थी
1: जी।
0: इसमें खुर्बा मेरी जान, मेरा मेरा दिल मेरा ईमान, यारी मेरी कहती है यार पे कर दे सब कुर्बान, कुर्बानी कुर्बानी अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। ये गीत हम सुनना चाहेंगे सर और बैतूल आकाशवाणी के माध्यम से, और हमें उम्मीद है कि आप हमारे परभणी महाराष्ट्र में गीत हमारे नहीं बल्कि हमारे सभी श्रोताओं तक जरूर पहुँचाएं।
1: बिल्कुल रहीम जी, तो हम आप तक पहुँचाते हैं आपकी पसंद का।
0: इसके लिए दो बच्चे हैं छोटे, एक हरान खान है हमारे पोतरे और नवासे है
1: जी,
0: सलमान साहब नांदेड़ से, सभी के साथ में परभणी महाराष्ट्र में बैतूल आकाशवाणी का आनंद ले रहे हैं।
1: शुक्रिया जी कि आप हमारे कार्यक्रम सुनते रहते हैं। और रहीम जी, अब हम आपको सुनवाते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।

0: हेलो एफएम बैतूल।
1: हेलो, नमस्कार सर।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मेरा शुभ नाम है देवजीत दास और मेरा गांव का नाम है बादरी पार, डिस्ट्रिक्ट 1-4 आसाम से।
0: देवदास जी, आज कौन से गीत की आप फरमाइश लेकर आए हैं?
1: तो मुझे आज गाना सुनना है, फिल्म का नाम है जुर्म, फिल्म का नाम है जुर्म, गाना गया है कुमार सानू ने
0: जी।
1: और गाने का बोल है, जब कोई बात देवी गड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनाबा, ये गाना।
0: बिल्कुल बिल्कुल देवीदास जी,
1: प्यारा सा गाना है,
0: बहुत ही प्यारा गीत है देवीदास जी। और अभी क्या माहौल है आपके क्षेत्र में?
1: मौसम तो अभी तो सुबह से बारिश हुई, अभी बारिश नहीं है
0: जी,
1: सुबह 5-6 बजे तक बारिश हुई बहुत।
0: अच्छा, बारिश शुरू हो गई है आपके क्षेत्र में जी।
1: सर आपका वहाँ पर मौसम कैसा है?
0: हमारे यहाँ का मौसम तो अभी गर्म है, नौतपा शुरू है और काफी तेज गर्मी इस क्षेत्र में हो रही है। देवीदास जी, आप अपने दोस्तों के नाम लेना चाहते हैं?
1: मैं परिवार में कुछ, मेरा परिवार में सुना है, मेरे पिताजी है जीतन कुमार दास और माताजी है श्री प्रणी दास, बड़े भैया इटोजीत दास और अब तेरे सर गाना भी, और ये गाना कुछ मैं दोस्तों को डेडिकेट करूंगा। तेरे मेरा है, मेरे बड़े भैया है अनुप कुमार भट्टाचार्य और दीदी है छठवा भट्टाचार्य जी, और हैदराबाद चंडीपुर से मेरे बहन बाबली दास और रामतो भाई और बापन दादा है, और मेरा दादा है जवाहरलाल बर्मन, और अभी जो आकाशवाणी बैतूल में सुनते सारे सुखा कर गाना डेडिकेट करूंगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल देवीदास जी, हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रेडियो सेट पर ये गीत।

0: सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हेलो एफएम बैतूल।
4: हेलो एफएम बैतूल सर जी, नमस्कार।
3: नमस्ते जी,
4: नागवन से बोल रहा था सर जी, निमपानी से।
3: सतीश जी कैसे हैं आप?
4: बढ़िया हैं सर जी, आप कैसे हो?
3: हम तो बढ़िया हैं सतीश जी। और कैसा चल रहा है आपका काम काज?
4: बस खेती बना रहे सर जी, बोने के लिए
3: खेती बना रहे हैं। तो कौन सी फसल आप लेते हैं इस सीजन में?
4: मक्के की फसल लेंगे सर जी। आप
3: मक्के की फसल लेंगे? आप
4: जी खाद डाल रहे हैं
3: जी, यानी आप जैविक खेती करते हैं?
4: जी सर जी, जी।
3: बहुत अच्छी बात है कि सतीश जी आज आप जैविक खेती की ओर रुख कर रहे हैं। और जैविक खेती के लिए जैसा कि गोबर खाद का होना आवश्यक है, केचुआ खाद जिसे कहते हैं, तो ये किस तरीके से आप बनाते हैं?
4: सर जी, गाय और भैंस के गोबर से जो पुरानी खाद होती है
3: जी,
4: उसको लाके खेत में डालना पड़ता है, एक दो साल पुरानी।
3: जी जी, तो ये आप अपने घर में ही तैयार करते हैं या फिर आप खरीदते हैं?
4: खरीदना पड़ता सर जी, यहाँ पास में गांव है, यादव लोगों के गांव, अपने पास उतने जानवर नहीं है।
3: बिल्कुल नागवंशी जी, और आज कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे?
4: सर जी मैं आज सुनना चाहूंगा, तू नींदों की रानी और मैं प्यार का।
3: जी
4: सर जी, मैं अपने परिवार का नाम लेना चाहता हूँ।
3: बिल्कुल बिल्कुल, आप ले सकते हैं।
4: सर जी मेरी निधेश है उर्मिला नागवंशी, बच्चे का नाम है शिवांश नागवंशी, बेटी का नाम है साक्षी नागवंशी, माता जी का नाम है हमारी लीला नागवंशी।
3: तो बिल्कुल सतीश जी, हम आपको सुनवाते हैं आपके और आपके पूरी परिवार की तरफ से ये गीत।

0: हेलो एफएम बैतूल।
1: हेलो
0: हाँ जी
1: जी, मैं प्रीति टेकाम बोल रही हूँ।
0: जी प्रीति जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद
0: जी क्या करते हैं आप?
1: जी। मैं सर जॉब में हूँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हूँ मैं।
0: जी, और आप हमारे कार्यक्रम सुनते रहते हैं?
1: जी सर बिल्कुल सुनते हैं, जब भी फुर्सत में रहते हैं, श्रीमान जी के साथ भी जब भी हम
0: जी
1: जाते हैं फुर्सत के क्षणों में बिल्कुल सुनते हैं, और
0: बिल्कुल,
1: वैसे भी म्यूजिक से लगाव है,
0: क्या बात है। आप
1: बहुत अच्छा लगता है कार्यक्रम।
0: संगीत से जुड़े हैं और आप हमारे नियमित श्रोता हैं। और किस प्रकार का संगीत आपको पसंद आता है?
1: सर ज्यादातर तो जो अपने पुराने जो गाने हैं वो
0: जी
1: बहुत ज्यादा मतलब सुनने में बहुत मधुर लगते हैं,
0: जी
1: आजकल का भी अच्छा है, लेकिन जो मतलब पुराना जो संगीत है, पुराने
0: जी
1: जो
0: बिल्कुल,
1: गाने हैं वो
0: जी
1: बहुत पसंद है।
0: बिल्कुल, पुराने गीतों की जो है वो बात ही है, कुछ अलग है,
1: जी
0: जिसमें
1: जी सर,
0: मधुर संगीत होता है। और आज कौन से गीत की आप फरमाइश लेकर आए हैं?
1: आप मुझे हाथों की लकीरों में लिखा है ये गीत मेरा फेवरेट है, आप सुना दीजिए।
0: जी
1: तेरा मेरा दिल का रिश्ता है।
0: जी जी बिल्कुल, हम आपकी पसंद पर ये गीत आपको सुनवाएंगे ही। और आपके परिवारजनों के आप नाम लेना चाहते हैं?
1: जी बिल्कुल सर, ये इसमें जी मेरे हसबेंड का नाम है श्री कृष्ण कुमार टेकाम,
0: जी
1: हमें सासू माँ जी है श्रीमती गंगा देवी टेकाम, बेटी है अदिति टेकाम, बेटे का नाम है आदि टेकाम। सभी लोग आपके मतलब प्रोग्राम सुनते हैं।
0: जी शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम सुनते हैं और आपको पसंद भी आते हैं। क्या हम पूछ सकते हैं कि कौन सा कार्यक्रम आपको पसंद आता है?
1: आपकी पसंद का जो फरमाइश वाला है मेनली
0: जी
1: सच्ची
0: जी बिल्कुल
1: सहेली में भी बहुत सारे जो टिप्स बताते हैं वो भी
0: जी,
1: बहुत अच्छा लगता है।
0: शुक्रिया प्रीति जी, आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ी और अब आपको सुनवाते हैं आपके और आपके परिवार की पसंद पर ये गीत।

0: हेलो एफएम बैतूल।
1: हेलो,
0: हाँ हेलो एफएम बैतूल।
1: हाँ जी, मैं ऋषभ देशमुख बोल रहा था जी। मैं बिलोंग करता हूँ बैतूल जिले के भेजदे तहसील के ग्राम मालेगांव में निवास करता हूँ
0: जी। और आज कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
1: सर, मैं गीत सुनना चाहता हूँ धुरंधर 2 मूवीज का
0: जी।
1: शरारत सिखावा।
0: और क्या कर रहे हैं अभी आप?
1: मैं तो फिलहाल सर खेत में आया हूँ, अभी कल्टीवेटर हो गया है खेत में, तो थोड़ा सा देखने आया हूँ। अपना गौ पालन चालू किया है, तो आज उनकी सेवा करने आया हूँ, थोड़ी दवाई वगैरह चारा पानी करने के लिए आया हूँ।
0: जी, यानी आप कृषि के साथ में पशुपालन भी करते हैं?
1: जी सर, अभी नया व्यवसाय स्टार्ट करने का सोचा है मैंने, थोड़ा लोन वगैरह मिल जाए तो कुछ बड़ा सोचा है सर।
0: यानी आप अब जो है वो कृषि में ही अपना रोजगार स्थापित करना चाहते हैं?
1: जी सर, जी सर,
0: इसके लिए शासन की बहुत सारी योजनाएं हैं ऋषभ जी, और जिसका
1: जी जी
0: आप लाभ ले सकते हैं।
1: जी सर।
0: और अभी कितने जानवर आपके पास में है ऋषभ जी?
1: अभी तो टोटल 7 जानवर है सर मेरे पास।
0: और अभी दूध का उत्पादन शुरू है?
1: हाँ, दूध का उत्पादन 1-2 जानवर दे रहे हैं, एक
0: जी
1: खाली है, बाकी 2 बैल है सर।
0: जी जी
1: जी सर।
0: और खेती में अभी जैसा कि आप जमीन बना रहे हैं, तो इस बार किस फसल को आप लेने वाले हैं?
1: सर प्रमुखता अभी तो जो समय की मांग है उसके हिसाब से तो अभी सर मक्का का उत्पादन ही ठीक हो रहा है, क्योंकि सोयाबीन पर से भरोसा उठ चुका है किसान का, उत्पादन ही नहीं हो पा रहा है।
0: जी जी जी
1: जी सर।
0: ऋषभ जी, और आप अपने दोस्तों के नाम लेना चाहेंगे?
1: जी सर, मेरे दो प्रमुख दोस्त है जिनके मैं नाम लेना चाहूंगा
0: जी,
1: जो कि बाहर ही जॉब वगैरह करते हैं, कोई ड्यूटी में है, कोई कुछ है सर, तो उनके नाम में लेना चाहूंगा। विक्रम चंदेल है हमारे, विकास रोड़की है, अजय ठाकरे है, दीपक ठाकरे है सर, इन लोगों के नाम पे फरमाइश है सर। धुरंधर 2 मूवी का गाना है चलो शरारत सिखावा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो ऋषभ जी, हम आपको सुनवाते हैं आपके और आपके दोस्तों की पसंद पर आप ही के रेडियो सेट पर ये गीत।

0: तो श्रोताओं, ये था इस हफ्ते का फोन इन कार्यक्रम हेलो एफएम बैतूल का पहला भाग। इसका अगला भाग आप सुनेंगे कल यानी रविवार सुबह 10:05 पर। तब तक कार्यक्रम से इजाजत दीजिए आपके रेडियो हमसफर संदेश खड़तकर को। नमस्कार।
1: हेलो एफएम बैतूल,
2: आप सुन रहे थे फोन इन प्रोग्राम हेलो एफएम बैतूल। ये आकाशवाणी बैतूल है। कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से।

आपने ट्यून किया है भारत नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम चित्रलोक में।

चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। ये प्यारा सा गाना भी आप सुन रहे थे कलर टू फिल्म से, विशाल मिश्रा, नीति मोहन और साथियों की आवाजें, गीतकार थे सईद कादरी और संगीतकार मिथुन। दोस्तों आज है इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो यानी अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस। इसका उद्देश्य आलू के पोषण, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा में उसके महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। आलू विश्व की प्रमुख खाद्य फसलों में से एक है, ये हर आय वर्ग के भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। भारत सहित अनेक देशों में आलू की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, ये किसानों की आय बढ़ाने में भी सहायक है। आलू से अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं जैसा कि हम लोग रोज खाते भी हैं, इसलिए इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। आलू की खेती और उससे बनने वाले नाना प्रकार के व्यंजन आजीविका का महत्वपूर्ण साधन उपलब्ध कराते हैं, इसीलिए इस वर्ष की थीम भी शायद यही बात कह रही है। इस वर्ष की थीम है वेयर पोटैटोज ग्रो लाइवलीहुड्स फ्लरिश। तो चलिए चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ा जाए और आपको सुनवाते हैं ये

0: अभी आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान की आवाज में पिंटू की पप्पी फिल्म का गाना। रमन रघुवंशी ने लिखा इसे और संगीत से संवारा डॉक्टर नेट्स ने। आप सुन रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
1: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए रश्मि रॉकेट फिल्म का गाना आवाज़।

विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए सुनिए एआर रहमान और हीरल विरदिया की आवाजों में महबूब का लिखा और एआर रहमान का संगीत बद्ध किया गाना, फिल्म का नाम हीरोपंती 2।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं। सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक, और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश देहाती डिस्को फिल्म से दिव्या कुमार की आवाज प्रणव वत्स ने लिखा, इसे और संगीतबद्ध किया है गणेश आचार्य ने।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: सुनने वालों को नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे अभिनेता की जो सिनेमा के पर्दे पर बतौर विलेन भी नजर आए।
1: मैं थूकता हूं तेरी सूरत पे, थूक कर दिखाऊं? हवेली पे आ जाना, कल यहां पे हजारों लोग होंगे, पूरी फोर्स बदलवा के रख दूंगा मैं, हाहाकार मचा दूंगा।
2: क्या
1: हाहाकार?
2: तेरे बाप का राजा क्या?
3: क्वाइट विक्रम, मामा ठाकुर से गलती हुई है।
2: क्या बात कर रहे सर?
1: ये बात मैं दिल्ली तक लेकर जाऊंगा।
2: चलिए अभी दिल्ली।
0: बतौर चरित्र अभिनेता भी, बतौर कॉमेडियन भी।
4: ए खालिद भाई, मेरा नंबर है।
5: अरे यार तू दोस्त है उनका, मैं गया तू गए की
4: ना,
5: बात
4: ना, ना ना दोस्त है तो घर पे आ।
5: क्या बात करता है, सिर्फ 50 रुपया? ये तो बहुत कम है यार, तू टेंशन मत ले यार, कोयला ले और 50 के आगे एक जीरो लिख डाल, 500 हो जाएगा, बात खत्म।
2: क्या 500?
5: खालिद भाई मेरी बीवी क्या? अरे सॉरी सॉरी, ये तो बहुत बुरा हुआ, सॉरी।
2: एक बार ये लिखने वाला खालिद भाई मेरे हाथ में आ जाए, मैं उसकी डेथ सर्टिफिकेट लिख डालूंगा, देखना।
5: मेरे को मालूम है किसने लिखा है।
0: और उन्होंने रंगमंच पर भी अपनी अभिनय प्रतिभा दिखाई। आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम सलाम कर रहे हैं जाने माने अभिनेता परेश रावल को।

परेश रावल का जन्म 30 मई 1950 को मुंबई में हुआ था। उनका परिवार जुहू में रहता था और उनका एडमिशन वहां जुहू स्कूल में करवा दिया गया। जब वो 11-12 साल के थे तो स्कूल के मंच पर अभिनय करने लगे और जुहू स्कूल की प्रिंसिपल ने उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने नन्हे परेश से कहा कि वो अगर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, मंच पर वो अपनी अभिनय प्रतिभा की जौहर दिखाना जारी रख सकते हैं। स्कूल की पढ़ाई इसी तरह से चलती रही। रंगमंच और पढ़ाई को किसी तरह से परेश रावल ने बैलेंस किया और फिर मुंबई के नरसी मुंजी कॉलेज में पढ़ने लगे। यहां के प्रिंसिपल ने भी परेश रावल की अभिनय प्रतिभा को समझा और उनके साथ सहयोग किया, यानी उन्हें कॉलेज के लेक्चर्स छोड़ देने की अनुमति मिल गई क्योंकि वो अपने कॉलेज के लिए थिएटर किया करते थे। परेश रावल ने अपने कॉलेज को कई प्रतियोगिताओं में जिताया। उसके बाद 1973 आया जबकि परेश रावल ने पेशेवर थिएटर ज्वाइन किया। इंडियन नेशनल थिएटर के बैनर तले उन्होंने अपना पहला प्ले किया जिसका नाम था वैन छे मौत। ये वो दिन थे जब परेश फिल्मों में काम नहीं करना चाहते थे। वो थिएटर की दुनिया में खुश थे क्योंकि यहां उन्हें अपने मन मुताबिक एक्टिंग करने मिल रही थी। लेकिन फिर उनकी नजर पड़ी नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी और अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेताओं के काम पर और तब उन्हें यह एहसास हुआ कि थिएटर के अलावा फिल्मों में भी अभिनय की दुनिया का विस्तार है। और तकरीबन 4-5 साल बाद सन 1978 से 1980 के बीच परेश रावल ने यह फैसला किया कि उन्हें फिल्मों की दुनिया में जाना है। फिल्मी दुनिया में संघर्ष करना शुरू किया। श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी, कुमार साहनी जैसे कला फिल्मों के निर्देशकों से उन्होंने समय समय पर मुलाकात की और बताया कि वो फिल्मों में काम करने के इच्छुक हैं और फिलहाल थिएटर में सक्रिय हैं। लेकिन परेश रावल का काम नहीं बना।

अब परेश को ये समझ में आ गया था कि फिल्मों में उनके लिए फिलहाल तो जगह नहीं है। वो थिएटर में अपना पूरा ध्यान लगा रहे थे। एक दिन की बात है, मुंबई के मशहूर पृथ्वी थिएटर में परेश रावल के किसी नाटक का शो चल रहा था। जाने माने प्रोड्यूसर करीम मोरानी उस शो को देखने आए और उन्होंने नेपथ्य में जाकर परेश रावल से भी बात की और बाद में निर्देशक राहुल रवेल से परेश के नाम की सिफारिश की। राहुल रवेल उन दिनों फिल्म बना रहे थे अर्जुन, और सन 1985 में परेश रावल को फिल्म अर्जुन के लिए साइन कर लिया गया। शूटिंग का पहला दिन था, पहली बार परेश रावल कैमरे का सामना कर रहे थे। उन्होंने अपना टेक इतनी अच्छी तरह से दिया कि निर्देशक राहुल रवेल ने कहा, परेश जी अब आप मेरी हर फिल्म में काम करेंगे। और इस तरह से परेश रावल थिएटर की दुनिया से होते हुए फिल्मों में चले आए। धीरे धीरे परेश रावल ने फिल्मी दुनिया में अपने पैर जमाने शुरू किए, लेकिन इन दिनों वो नाटक करते चले जा रहे थे। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, सन 1976-77 का जमाना था। परेश रावल एक गुजराती नाटक कर रहे थे ठोकर, जो पीटर श्वाफर्स के नाटक इक्वल पर आधारित था। और इन दिनों उनकी मुलाकात हुई मॉडल और अभिनेत्री स्वरूप संपत से। परेश रावल को स्वरूप संपत से प्यार हो गया, लेकिन दिक्कत यह थी कि परेश रावल का ताल्लुक एक मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार से था और स्वरूप संपत एक अंग्रेजीदा परिवार से आई खूबसूरत मॉडल, मिस इंडिया और एक बेहद खूबसूरत नाजुक शख्सियत थी। दोनों का कहीं कोई मेल नहीं था। परेश कहते हैं कि ये उनके लिए सपनों जैसे दिन थे। आखिरकार एक दिन परेश रावल और स्वरूप संपत ने शादी कर ली।

परेश रावल कहते हैं कि फिल्मों में अभिनय के लिए अगर हिंदुस्तानी सिनेमा के कोई आदर्श हैं उनके लिए तो वो हैं बलराज साहनी, नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी। परेश रावल का ये भी मानना है कि अभिनय उन्हें बड़ा ही दिलचस्प करियर लगता है क्योंकि एक्टिंग की दुनिया में एक जीवन में कई जीवन जीने का मौका मिलता है। अर्जुन के बाद परेश रावल को फिल्मी दुनिया में अपना नाम अच्छी तरह से कमाने का मौका मिला तो वो थी महेश भट्ट की सन 1986 में आई फिल्म नाम। इसमें भी परेश रावल ने विलेन का रोल किया था। इसके बाद तो परेश रावल ने कई फिल्मों में तरह तरह के रोल किए। कभी वो बतौर विलेन नजर आए, कभी चरित्र

0: अभिनेता के तौर पर, और कभी आपको हंसाते हुए नजर आए, कॉमेडी करते हुए।
1: विश्वजीत, हाँ बोल। ए, इसमें तो कौन सी साड़ी पहननी है, है?
2: पता नहीं इनकी नाम भूलने की बीमारी कब जाएगी। इतनी सारी साड़ियाँ लेकर क्या कर रहे हो?
1: अरे भाई, कल तुमने जो 15-20 साड़ी खरीदी थी ना, है ना, तो मैं ये पूछने आया हूँ कि इसमें कौन सी साड़ी को इस्त्री मारनी है। डार्लिंग विश्वजीत।
2: परमजीत।
1: कौन परमजीत?
2: मेरा नाम परमजीत है जिससे तुमने शादी की है।
1: अभी अभी सोना बेटा, तुम्हारी बात को बोलो ना। अच्छा, क्या बात बात में चिल्लाते रहने का है?
2: ओहो डैडी, मेरा नाम सोना नहीं मोना है।
1: ये साड़ी की उलझन में मैं इसका नाम भी भूल गया, परिमल।
3: डैडी जी, मेरा नाम परिमल नहीं, अनमोल है।
1: ए, अब तेरे को क्या हो गया चुनीलाल?
2: मणिलाल।
1: कौन मणिलाल?
2: तोड़ा नाम मणिलाल है, मणिलाल पटेल।
1: ये नाम मैंने कब रखा?
2: बचपन से
1: बचपन से मेरा ये नाम है, और मुझे अभी बताती हो तुम? ले, अभी मैं याद रखूंगा, मेरा नाम मेथी लाल है, बस।
2: ओ जीसस।
1: जीसस? अभी तुमने बोला ना मेरा नाम मेथी लाल है, अभी जीसस।
2: गेट आउट, गेट आउट।
0: परेश रावल की सबसे मशहूर कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी। परेश मानते हैं कि हेरा फेरी की सफलता का सारा श्रेय जाता है इस फिल्म के लेखक नीरज वोरा को, जिन्होंने कॉमेडी को बड़ी अच्छी तरह से निभाया था।
4: तो भैया, आप गांव में घर है ना आपके?
5: नहीं है। क्यों
4: नहीं? क्योंकि अगर कल शाम ने आपको घर से निकाल दिया
5: है?
4: तो मेरा तो ठीक है, आप इस उम्र में कहां कुत्ते की तरह भटकोगे।
5: देख राजू, जबान को लगाम दे, समझा?
4: देखा, चोर की दाढ़ी में तिनका।
5: सच बात बोलता तो मेरे को कोरा कागज पे अपना दस्तखत दे तेरे बाबा।
6: आपको मुझ पे भरोसा नहीं?
4: ये इसके दिल में खोट है।
6: तेरे दिल में खोट है? मैं तो किराया देकर रहता हूँ, तू तो मुफ्त में रहता।
4: हाँ तो मुफ्त में रहता तो क्या हुआ, मैं दस्तखत करने को तैयार हूँ।
6: तो मैं भी दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ।
4: हाँ तो करना तू।
6: हाँ तो तू भी करना।
4: हाँ तो कागज लेके आना।
6: तू कागज ले।
4: अरे मैं क्यों लेके आऊं?
6: मैं क्यों?
4: तुम दो में से दोनों बाहर जाओ, पेपर लेके जाओ।
5: इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले मेरे को। नहीं रे, इन दोनों को उठा ले।
4: हेलो, पेपर पे साइन किया है, इसने अभी तक नहीं किया, खोट है इसके दिल में।
6: बताओ ना, साइन कर रे बाबा, साइन कर। तू कर ले साइन, साइन कर।
7: गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है।
6: क्या हुआ? आपको गाना सुनाई दिया?
4: गाना? ये सब बहानेबाजी है, मैं चैलेंज मार के बोलता हूँ ये साइन नहीं करने वाला।
6: ये तो साइन कर रहे बाबा, साइन करना, जल्दी साइन कर रहे। साइन कर।
7: गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है।
6: आपको गाना नहीं सुना दे रहा?
4: कौन सा गाना
6: साफ सुनाई दे रहा है?
4: ये गुरु घंटाल आदमी है, साइन नहीं करने वाला। मैं कहता हूँ उसका बोरिया पिस्तौल उठाओ, बाहर फेंक दो उसको।
6: ये तो साइन कर रहे, साइन कर रहे, गाना गाना लगा ले, साइन कर रहे गाने।
8: हेलो
4: हेलो, देवी प्रसाद।
8: नहीं देवी प्रसाद नहीं है, तुम क्या करोगे?
4: सर वो मेरी मछली का क्या हुआ?
8: वो तो मैं खा गया।
4: खा गए?
8: हाँ, वो मैं मस्त तेल में फ्राई करके वो मैं खा गया।
0: बतौर विलेन परेश रावल अपनी दो फिल्मों को बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं, एक है फिल्म डकैत और दूसरी फिल्म कब्जा। आज परेश रावल 100 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं, और एक कलाकार के लिए सबसे मुश्किल होता है अपनी कुछ प्रतिनिधि फिल्मों का चुनाव करना। लेकिन अपने एक इंटरव्यू में परेश रावल ने अपनी पसंदीदा फिल्मों के बारे में बताया है। उनकी सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है केतन मेहता की फिल्म सरदार, जिसमें उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का किरदार निभाया था। परेश रावल से जब पूछा गया कि इस फिल्म के लिए उन्होंने तैयारी कैसे की, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल से तो वो मिल नहीं सकते थे, वो इस दुनिया में नहीं है, तो परेश का जवाब था कि उन्होंने असंख्य तस्वीरें उनकी देखी और उन तस्वीरों के जरिए ये अंदाजा लगाया कि सरदार पटेल किस तरह से बोलते होंगे, किस तरह से चलते होंगे और उनका स्वभाव किस तरह का होगा। इसके अलावा उन्होंने इस अभिनय के लिए बहुत सारी रिसर्च भी की।
9: फिर वही बात, हम यहाँ पे आजादी की बात करने आए हैं, बंटवारे की नहीं। और अगर बंटवारा होना ही है तो उसका निर्णय एक आजाद देश के आजाद लोग करेंगे, अंग्रेज सरकार नहीं।
0: पूजा भट्ट की फिल्म तमन्ना को वो अपनी बहुत महत्वपूर्ण फिल्म मानते हैं, क्योंकि इस फिल्म में उन्होंने एक वृहन्नला का, एक हिजड़े का किरदार निभाया था। परेश ये कहते हैं कि ऐसे किरदार भी मानवीय होते हैं, उनका अपना संघर्ष, उनकी अपनी तकलीफें होती हैं, और इस फिल्म के जरिए उन्होंने इस तरह

0: हेरा फेरी फिर हेरा फेरी, आंखें आवारा पागल दीवाना, गरम मसाला, दीवाने हुए पागल, मालामाल वीकली, गोलमाल, हलचल, छुप छुप के, भागम भाग, शंकर दादा, भूल भुलैया, वेलकम, मेरे बाप, पहले आप, ती धनाधन और हंगामा जैसी ना जाने कितनी फिल्में हैं जिनके जरिए परेश रावल ने आपको हंसाया है।
1: और नाचते नाचते तुम्हारे पांव कहां पड़ रहे थे और घुंघरू किस ताल में बज रहे थे वो मैं अच्छी तरह समझ गया हूं। अब जब तुम्हारी चोरी सामने आ गई है तो उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा कर लौंडे के साथ गुलछर्रे उड़ाने का बहाना बना रही हो।
2: अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डाके?
1: अरे नौटंकी, मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? क्या बेवकूफ समझ रखा है मुझे? इतना याद रखना, हम सब समझ गया हूँ और ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और ये जो महंगी महंगी साड़ी है जो तुम्हारी इस गोल घूमर जैसे बदन को पहनाई है उसका क्या? और दिन रात जो तरह तरह के खाने जो तुमने चाट चाट के रसोई घर में खाए हैं उसका पैसा कौन देगा?
0: सन 1994 में परेश रावल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला फिल्म वो छोकरी के लिए, और फिल्म सर के लिए उन्होंने जीता फिल्म फेयर पुरस्कार।
3: हम लोगों को इतना खुश देखकर आपको अजीब लग रहा है ना? मैं बताता हूँ, बात यह है कि जब ये छोटी थी ना तो खुश रहती थी, खेलती रहती थी। हाँ, लेकिन जिस दिन से इसकी माँ गई है ना, चुप हो गई है, घर एकदम शमशान हो गया था। और इतने साल के बाद आपने सर पे हाथ रख दिया, मेरे घर में जान आ गई है।
0: सन 2001 में फिल्म हेरा फेरी के लिए परेश रावल चुने गए सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन फिल्म फेयर की ओर से। सन 2003 में आवारा पागल दीवाना फिल्म के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता।
4: मेरा गला बैठने को आया है? तू क्या कान दुकान पे बेच के आया है? साला बेरा, इधर कचरा नहीं डालने का। ये तो तू नया है ना, इसके लिए मैं प्यार से बात करता हूँ। ये गुलाब वाला, तेरा नाम क्या है?
5: लिसन जेंटलमैन,
4: ये साला कौन सा नाम है? समझ में नहीं आता, इधर कचरा नहीं डालने का।
5: I'm sorry.
4: अबे सॉरी क्या इंडिया समझा? गुना करो, सॉरी बोलो।
6: क्या हुआ दादी जी?
4: अब ये साला घन चक्कर को मैं एक कलाक से समझा भी नहीं था कि क्या इधर कचरा नहीं डालने का। इसको बोल इधर से कचरा उठावे वरना।
0: परेश रावल की एक महत्वपूर्ण फिल्म है अंदाज अपना अपना, जिसमें वो सलमान खान और आमिर खान के साथ नजर आए थे। परेश रावल रंगमंच पर भी सक्रिय हैं। उनकी कंपनी टेलीविजन के लिए सीरियल्स बनाती है और उन्होंने एक फिल्म का निर्माण भी किया है, ओ माय गॉड। ये फिल्म गुजराती के एक प्रसिद्ध नाटक पर आधारित थी।
7: किसे भेजनी है नोटिस?
8: भगवान को।
7: मिस्टर भगवान? सर ने
8: पता नहीं क्योंकि हम लोग मिले नहीं।
7: अरे कहीं तो रहता होगा मिस्टर भगवान। अरे ये नोटिस किसे भेजूं?
8: हाँ, लोग कहते हैं कि वो मंदिरों में रहते हैं।
7: अच्छा,

0: पद्मश्री से सम्मानित किया था। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी अभिनेता परेश रावल पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
3: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: थे जवानी।

0: पिछले एक महीने में जिले में क्या कुछ खास हुआ, किन उपलब्धियों ने सुर्खियां बटोरी, किन अभियानों ने लोगों का ध्यान खींचा और प्रशासन से लेकर आम जनता किन मुद्दों पर सक्रियता दिखाई गई, इन सब का लेखा जोखा हम आपके सामने रखेंगे। साथ ही जानेंगे आने वाले दिनों में जिले के लिए क्या महत्वपूर्ण होने वाला है, कौन सी योजनाएं आकार लेंगी, किन कार्यक्रमों की तैयारियां चल रही हैं और क्या है वो खबरें जो हरदा के भविष्य की दिशा तय कर सकती हैं। तो आइए खोलते हैं हरदा जिले की चिट्ठी और पढ़ते हैं बीते दिनों की कहानी आने वाले कल के जमाने।
1: बात सबसे पहले मौसम की। प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी प्रदेशवासियों से भीषण गर्मी में अपना ख्याल रखने की अपील की है। लापता के चलते जिले में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। कल जिले में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सुबह कुछ राहत जरूर मिली लेकिन दोपहर बाद गर्म हवाओं और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। हालात ऐसे रहे कि शाम तक सड़कें लगभग सूनी नजर आईं। श्रीनगर जिले में चंगा में 2026-27 के पहले चरण का काम आज पूरा हो रहा है। एक मई से शुरू हुए इस अभियान के तहत मकान सूचीकरण और आवास करने का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए अधिकारियों, प्रबंधकों और प्रवेशकों को पहले ही विशेष प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रबंधक घर घर पहुंचकर भवनों का विवरण दर्ज कर रहे हैं, आवास संबंधी जानकारी जुटा रहे हैं। जिले में ईद उल अजहा यानी बकरीद का पर्व पूरे उल्लास, श्रद्धा और भाईचारे के माहौल में मनाया गया। शहर से लेकर गांव तक मुस्लिम समाज के लोगों ने ईदगाह मस्जिदों में विशेष नमाज अदा कर देश में अमन, तरक्की और खुशहाली की दुआ मांगी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और सौहार्द का संदेश दिया। भीषण गर्मी और बढ़ती पेयजल समस्याओं को देखते हुए प्रशासन भी सक्रिय है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संबंधी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। ग्रामीण नागरिक हैंडपंप या नल जल योजना बंद होने की शिकायत 0757-77-22-32-12 पर दर्ज करा सकते हैं। इसी क्रम में हरदा विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगरे ने विधायक दिवस से विधानसभा क्षेत्र के 24 गांवों को फायर फाइटर पानी टैंकर उपलब्ध कराए हैं। इसका उद्देश्य गर्मी के दौरान पेयजल संकट से राहत पहुंचाना है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जिले में जागरूकता गतिविधियां जारी है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किशोरियों को माहवारी स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों और महाविद्यालयों में पोस्टर मेकिंग, रैली और संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। किशोरियों चुप्पी तोड़ो, खुलकर बात करो का संदेश देकर सामाजिक संकोच दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। वे डिजिटल कार्य प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए प्रेमश्री स्वामी विवेकानंद शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय में ई ऑफिस प्रणाली का विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में कर्मचारियों को दैनिक कार्यों में ई ऑफिस का बेहतर प्रभावी उपयोग सिखाया गया। अब एक महत्वपूर्ण नई खबर। सुप्रीम कोर्ट ने लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 21, 22 और 23 अगस्त को विशेष लोक अदालत आयोजित करने का निर्णय लिया है। वैवाहिक संपत्ति, मोटर दुर्घटना, भूमि अधिग्रहण, मुआवजा और श्रम संबंधी मामलों की सुनवाई राज्य, जिला और मध्यस्थता केंद्रों पर की जाएगी। जिले में कुपोषण दूर करने, स्कूलों में बच्चों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पोषण फैली अभियान और विद्या आसन अभियान को समाज के व्यापक संयोग को लेने वाले विभिन्न सामाजिक संगठनों, समाज सेवियों ने इन अभियानों में सक्रिय भागीदारी का भरोसा दिलाया है। किसानों के लिए भी एक अहम खबर है। प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जाएगा। किसानों का पंजीयन 15 जून तक जारी रहेगा। वे खरीदी केंद्रों पर उपज बेचने से पहले किसानों के लिए फेस ऑथेंटिकेशन अनिवार्य किया गया है ताकि योजनाओं का लाभ सही किसानों तक पहुंच सके। दूसरी तरफ पुलिस परिवारों के स्वास्थ्य और कल्याण को ध्यान में रखते हुए हरदा पुलिस ने कंट्रोल रूम में विशेष शिविर का आयोजन किया। इसमें मानसिक स्वास्थ्य, संतुलित आहार, पारिवारिक सामंजस्य और नशे मुक्त जैसे विषयों पर विशेषज्ञों ने जानकारी दी। और अब एक और सुखद खबर। मुख्यमंत्री दूरदर्शन योजना के तहत हरदा जिले के 196 वरिष्ठ नागरिक आगामी 3 जुलाई को माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए रवाना होंगे। यात्रा राज्य सरकार के खर्च पर कराई जाएगी। इच्छुक वरिष्ठ नागरिक 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। तो श्रोताओं, हरदा जिले की चिट्ठी में आज बस इतना ही। कल सुबह 10 बजे हम लेकर आएंगे पड़ोसी निवेदा पड़ोस जिले की चिट्ठी। हरदा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

जिले की चिट्ठी कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फरमाइशी फिल्म संगीत का प्रोग्राम आपकी फरमाइश।

की काशफा कराई जाएगी। इच्छुक वरिष्ठ नागरिक 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। तो श्रोताओं, हरदा जिले की चिट्ठी में आज का सपना है, कल सुबह ठीक 10 बजे हमले करेंगे पड़ोसी निर्मदा पुरुष जिले की चिट्ठी। हरदा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

जिले की चिट्ठी कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फरमाइशी फिल्म संगीत का प्रोग्राम आपकी फरमाइश।

0: आनंद बख्शी का लिखा गीत आप सुन रहे थे अभिजीत और साधना सरगम की आवाजों में। संगीत था अनु मलिक का और फिल्म का नाम दिल ने इकरार किया। गीत को सुनना चाहते थे रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा, और इसी गीत को सुना चाहता सारणी से अमित खादर का, निहारिका, शिवपाल, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारस मणिवाग, पंजाब राव निम्बालकर और संदीप पाटिल ने।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है जानकार बनी।

0: सतर्क रहिए।
1: कार्यक्रम आपकी फरमाइश में अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संजय का वो गाना, जिसे लिखा है सतीश ने और जिसकी धुन बनाई है श्याम सुरेंदर ने। फरमाइश करता है सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला भाई, नसीम बेगम, आयशा हादिया, आसमा सालिया, शोएब खान, मुस्ताबर, राव भाई, शाहिद भाई, गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर, और इसी गीत को सुनना चाहे गंज बैतूल से हितेश जैन, हरीश आर्य, पूरन लाल रायपुरे, सलीम भाई दुआ वाला, ललित रायपुरे, दौलू सुरे और उमेश जैन ने। तो इन सब की फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं ये गाना। आवाज है उदित नारायण की, फिल्म का नाम संजय।

सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का प्रोग्राम आपकी फरमाइश, ये आकाशवाणी बैतूल है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम महिला जगत।

नमस्कार सखियो श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम महिला जगत में और मैं हूं आपकी रेडियो हम सफर प्रीति। तो स्वीकार कीजिए प्रीति का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड नो टोबैको डे के उपलक्ष्य में नशा मुक्ति में महिलाओं की भूमिका इस विषय पर। साथ ही मुलाकात होगी एक ऐसी लोक गायिका जिनकी आवाज सुनते ही लोग झूम उठते हैं, जिनका एक गाना सोशल मीडिया से लेकर शादी ब्याह तक खूब छाया रहा है, जिनके गीत में मिट्टी की खुशबू भी है और देसी ठुमके भी। अरे इतनी भी क्या जल्दी है उनका नाम जानने की? हम उनका नाम नहीं बताएंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और हाँ, कार्यक्रम में मिलेंगे कुछ आसान और काम के बागवानी सुझाव भी, ताकि आपके घर का आंगन भी महके और मन भी। यानी आज का महिला जगत होगा जागरूकता, मुस्कान, संगीत और हरियाली से भरपूर। तो बने रहिए हमारे साथ। श्रोताओं, हर वर्ष 31 मई को पूरी दुनिया में वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है, ताकि लोगों को तंबाकू और नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा सके। श्रोताओं, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार को धीरे धीरे खोखला कर देता है। और जब परिवार को संभालने की बात आती है तो सबसे बड़ी भूमिका निभाती है एक महिला, माँ, बहन, पत्नी और बेटी के रूप में। महिलाएं न केवल परिवार की ताकत होती है बल्कि समाज को सही दिशा देने वाली प्रेरणा भी होती है। श्रोताओं, आज तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और शराब जैसी चीजें केवल आदत नहीं रही बल्कि एक गंभीर सामाजिक समस्या बन चुकी है। हर दिन लाखों लोग तंबाकू के कारण बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। कैंसर, सांस की बीमारी, दिल की तकलीफ, ये सभी नशे की ही देन है। लेकिन सबसे दुखद बात तो यह है कि इसका असर केवल नशा करने वाले व्यक्ति पर नहीं पड़ता है बल्कि पूरे परिवार पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। घर का वातावरण बिगड़ता है, आर्थिक स्थिति कमजोर होती है और बच्चों का भविष्य भी प्रभावित होता है। ऐसे में अगर कोई सबसे पहले इस बदलाव को महसूस करती है तो वो होती है उस घर की महिला। श्रोताओं, एक माँ अपने बच्चों की पहली शिक्षक होती है। अगर माँ बचपन से ही बच्चों को

अच्छे संस्कार दे, नशे से दूर रहने की सीख दे, तो आने वाली पीढ़ी को काफी हद तक सुरक्षित बनाया जा सकता है। पत्नी अपने पति को प्यार से और समझदारी से नशा छोड़ने के लिए प्रेरित कर सकती है। कई गांवों और शहरों में महिलाओं ने मिलकर नशा मुक्ति अभियान चलाए हैं। कहीं महिलाओं ने शराब की दुकानों का विरोध किया तो कहीं तंबाकू के खिलाफ रैलियां निकाली। यही सब गतिविधियां बताती है कि जब महिलाएं ठान ले तो समाज में बड़ा बदलाव आ सकता है। मध्य प्रदेश के कई ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों ने मिलकर लोगों का नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने घर घर जाकर यह नारा दिया कि नशा छोड़िए और परिवार जोड़िए। धीरे धीरे पुरुषों ने भी उनकी बात समझी और कई परिवारों में खुशियां भी लौट आई। साथियों, जब एक महिला जागरूक होती है तो पूरा परिवार जागरूक हो जाता है। तो श्रोताओं, आइए जानते हैं कि महिलाएं नशा मुक्ति के लिए क्या क्या कदम उठा सकती हैं। सखियों, सबसे पहले तो बच्चों को शुरू से अच्छे संस्कार दें, परिवार में खुलकर संवाद करें, नशे के नुकसान की जानकारी दें। अगर परिवार का कोई सदस्य नशे की गिरफ्त में हो तो उसे प्यार और धैर्य से समझाइए। समाज में जागरूकता कार्यक्रमों में हिस्सा लीजिए। स्कूल और गांव स्तर पर नशा मुक्ति अभियान चलाए जा सकते हैं। श्रोताओं, याद रखिए, एक सिगरेट केवल धुआं नहीं उड़ाती है, वो धीरे धीरे किसी के सपनों को भी राख बना देती है। और एक महिला अपने प्यार, धैर्य और समझदारी से उन सपनों को फिर से जीवन दे सकती है ना। तो श्रोताओं, अब वक्त हो चला है हमारी खास मेहमान से मिलने का, तो जिन्होंने अपने गायन से हम सभी के दिलों में जगह बनाई है। पर उससे पहले सुनते हैं उन्हीं का ये प्यारा सा गीत, फिर आप।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: श्रोताओं, बिल्कुल ठीक समझा आपने। हम इसी गाने की गायिका काजल धुर्वे जी आज हमारे साथ मौजूद है।

0: की नीड है तो आप हमें बता सकती हैं। तो मैंने फटाफट इनकी जॉब बढ़िया एक्सेप्ट कर ली और हम आ गए यहाँ पे।
1: चलो बहुत अच्छी बात है। और मैम, लोकगीतों से आपका जुड़ाव बचपन से है या धीरे धीरे इस कला से प्रेम हुआ?
0: नहीं, बचपन से ही मुझे नाचने गाने का बहुत शौक था तो इसीलिए मम्मी जी जैसे घर में गाती बजाती थी तो मैंने भी सीख लिया धीरे धीरे सारी
1: चलो
0: चीजें।
1: अच्छी बात है। और आपके अनुसार लोक संस्कृति और लोकगीतों को जीवित रखने में महिलाओं की क्या भूमिका है?
0: देखिए, महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है बिकॉज ऑफ हम जैसे घर पे सीखते हैं, घर पे हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, जो वो अपनी संस्कृति को हमें दिखाती है। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनको भी वो दिखाती है, सारी चीज़ें सिखाती है कि भाई ये हमारे गाने हैं, इस तरह से गीत गाए जाते हैं, बन्ना बन्नी है, जो भी हमारे पुराने रीति रिवाज हैं वो हमें सिखाती है, ना कि हमारे पिताजी सिखाते हैं।
1: एग्जैक्टली
0: इसलिए
1: बिल्कुल
0: माताओं बहनों की बहुत बड़ी भूमिका है संस्कृति को जीवित रखने में।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और आज की युवा पीढ़ी जो है वो लोकगीतों और अपनी परंपराओं से जोड़ने के लिए, उन युवा पीढ़ियों के लिए हमें क्या करना चाहिए?
0: युवा पीढ़ियों के लिए हमें करना चाहिए कि जो हमारी माताएं हैं,
1: जी
0: सर्वप्रथम यदि वो इस चीज़ से जुड़ी होंगी तो ही वो आगे अपने बच्चों को बता पाएंगी, तो युवा उस चीज़ से जुड़ पाएंगे। तो हमें करना ये चाहिए कि माताओं को भी प्रॉपर ध्यान देना चाहिए, घर पे वैसा माहौल रहना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: ऐसा नहीं कि हम पढ़े लिखे हैं तो हम बिल्कुल अपनी परंपराओं को भूल जाएंगे, हमें ये सब नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: बिल्कुल आप अपने बच्चों को सिखाइए जिससे कि उनका जुड़ाव बना रहे।
1: बना रहे, बिल्कुल। ये तो बहुत सही बात कही मैम आपने। अच्छा, कोई ऐसा लोकगीत जो गाते समय आपको भावुक कर देता है या दिल के बहुत करीब है?
0: देखिए, भावुक तो कोई गीत, मतलब सारे गीत मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं बिकॉज ऑफ वो मैंने गाए हैं और जो साथ में जो भी भैया वगैरह कुछ जो भी गाते हैं उनका जो है एक साथ बॉन्डेशन जो रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है। तो गाने तो आपने ज़्यादातर मेरे सुने होंगे चुलबुले वाले गाने हैं, है ना,
1: बिल्कुल
0: तो उसमें कोई इतना भावुक होने वाली बात नहीं है, परंतु हाँ मज़ा बहुत आता है और दिल के करीब मेरा सबसे ज्यादा गाना है ले जाओ होशंगाबाद।
1: अच्छा, बिल्कुल। वो तो गाना हम सभी, इवन हमको और हमारे श्रोताओं को भी बहुत पसंद है। अच्छा, हमने सुना है कि आप गाने की रिकॉर्डिंग के समय हंसती बहुत है, तो क्या ये सच है?
0: जी हाँ बिल्कुल, जैसा कि आप अभी मुझे सुन ही पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो मैं थोड़ी हंसमुख टाइप की लड़की हूँ, तो हंसती तो बहुत हूँ। और इसमें सबसे बड़ा हाथ है हमारे अखिलेश जैन सर का, क्योंकि वो इतना कंफर्ट फील करवा देते हैं कि हमें वहाँ रिकॉर्डिंग करते टाइम नर्वसनेस बिल्कुल नहीं होती
1: फील नहीं
0: है।
1: होती। हाँ
0: और दूसरा हाथ है शिवम विरपाचे भैया का, क्योंकि वो भी बड़े हंसमुख हैं और गाना गाने से पहले उनको भरपूर डांस करना होता है, नाचते हैं वो स्टूडियो में भी, तो और फिर हंसमुख लोगों के साथ रहो तो हंसी तो
1: हंसी
0: आती
1: आई
0: ही
1: जाती, सही
0: है।
1: बात है। और हंसते खेलते ही अगर हम कोई काम करें तो वो ज्यादा
0: जी
1: अच्छा
0: जी
1: होता है।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल। और कभी ऐसा हुआ है मैम कि गीत के बोल भूल जाएं, कभी लाइव परफॉर्मेंस आपकी चल रही हो और फिर भी आपका आत्मविश्वास बना रहे?
0: देखिए, ये बहुत बार हुआ है कि हम लोग मतलब लाइव परफॉर्मेंस के दौरान लिरिक्स भूल जाते हैं,
1: अच्छा
0: इसलिए हम लोग ना फोन पास में रखते हैं कि
1: हाँ
0: लिखा हुआ रहता है पास में, तो और अगर फिर भी ऐसा हो कि हम भूल गए तो तर ऐसे कर करके
1: हाँ
0: हम लोग निभा लेते
1: चलो, यही
0: हैं।
1: तो एक कलाकार की पहचान है कि वो किस तरीके से अपनी गलतियों को छुपा लेते हैं। हाँ, और मैम, घर परिवार और अपनी कला, इन दोनों को साथ लेकर चलना, ये एक महिला या एक लड़की के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट तो हो ही जाता है ना? तो इसके लिए आपका अनुभव कैसा है इस चीज में?
0: देखिए, अनुभव तो ऐसा है कि दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना थोड़ा मुश्किल तो होता है, पर बोलते हैं ना नारी शक्ति होती है, वो
1: बिल्कुल
0: उसके 10 हाथ होते हैं, वो सब कुछ संभाल लेती है। तो
1: सही
0: मैं
1: बात।
0: अपनी रिकॉर्डिंग भी, प्रोग्राम भी, ट्रैवल भी, प्लस रिश्तेदार, प्लस घर,
1: प्लस
0: सारी चीज़,
1: पढ़ाई,
0: हाँ प्लस पढ़ाई भी, सारी चीज़ों को मैनेज करके बढ़िया से कर ले रही हूँ। हाँ कभी कभी थकान हो जाती है कि भाई, और दिमाग में टेंशन हो जाता है कि इधर देखे, पढ़ाई को देखे या फिर घर को देखे, फिर भी कर लेते हैं।
1: चलो यही तो सही बात है। बिल्कुल। और सोशल मीडिया और नए संगीत के इस दौर में लोकगीतों को कितना फायदा और कितना नुकसान हुआ है?
0: देखिए, नुकसान तो बिल्कुल नहीं हुआ है, सोशल मीडिया जब से आया है ना तब से ये गाने क्या है और ज़्यादा सुने जाने लगे हैं। पहले सिर्फ यूट्यूब तक सीमित था, परंतु जैसे ही सोशल मीडिया आया, जैसे इंस्टाग्राम आया या पहले टिकटॉक चलता था,
1: हाँ
0: है ना, तो टिकटॉक का तो मुझे नहीं पता, पर मैंने जितना देखा है तो मैंने इंस्टाग्राम को ही देखा है, तो जैसे ही कोई भी गाना आया इंस्टाग्राम पे कोई भी अपना आदिवासी कोई भी भाई बहन उठा के वो गाना मस्त उस पे रील बना लेते हैं। तो ऐसे रील बनाते बनाते भी वो गाना बहुत वायरल हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: तो इससे बिल्कुल फायदा ही फायदा है, कोई नुकसान नहीं है।
1: बिल्कुल सही बात है। और अगर आपको कोई नई पीढ़ी की लड़कियां जो है हमारे जो हमारा कार्यक्रम सुन रही है तो आप उनको कुछ सलाह देना चाहेंगी कि देखो बहुत सारी लड़कियां होती हैं कि जिनको लोक गायन में आगे बढ़ना है पर उनको कोई रास्ता नहीं मिलता, या कोई जैसे आपने कहा कि आपके पास अखिलेश सर का फोन आया था बट उन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है यहाँ तक पहुंचने का, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस तरीके से आप अपने इंटरेस्ट को डेवलप कर सकते हैं?
0: देखिए, इंटरेस्ट को डेवलप करना है तो सबसे पहले तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा।
1: हाँ जी।
0: आप ये सोचोगे कि सिर्फ घर पे ही रह के सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, ऐसा मतलब अगर कोई कमाई भी करना चाहता है ना तो भी उसको बाहर ही जाना पड़ेगा, घर पे बैठ के कुछ नहीं होता, है ना। तो अगर आप लोकगीत गाना चाहती हैं तो आप बिल्कुल कॉन्टेक्ट कर सकती हैं। प्लस जैसे कई लोगों के क्या होते हैं, घर वाले नहीं मानते, तो पहले उनको कन्विंस कीजिए कि नहीं भाई हमारी रुचि है, हमें करना है, आप प्लीज हमारा साथ दो। और फैमिली भी सपोर्ट करती है, इवन मेरी फैमिली भी इतनी सपोर्टिव है, लोग कुछ भी बोले उनको पता है कि उनकी लड़की क्या कर रही है, तो बहुत ही सपोर्टिव है। और मैं कहना चाहूंगी कि निकलो, अपने आप को पहचानो, और जो भी तुम्हारा मन हो ऐसे दबे मत रहो। शादी के बाद तो ठीक है, जो भी होना है होगा ही, परंतु यदि आपने मायके में ही अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं की, यहाँ पे ही हिम्मत नहीं करोगे तो बाद में तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए यदि करना है तो बिल्कुल
1: बिल्कुल सही कहा आपने, हमें अपने घर वालों का विश्वास जीतना जरूरी है। तो मैम, आपने आज अपनी मधुर बातों से और अपने अनुभव से हमारे कार्यक्रम को खास बना दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया, और सभी सगाजनों को बहुत बहुत सेवा जवाहर, और जो भी मेरा इंटरव्यू सुन रहे हैं या जो भी मेरी

तो श्रोताओ थी ना खास मुलाकात, तो चलिए अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर। सखियों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई चाहता है कि घर में थोड़ा सुकून, थोड़ी हरियाली और ताजगी बनी रहे। तो क्यों ना अपने छोटे से आंगन, बालकनी या छत को ही हम मिनी किचन गार्डन बनाए। जी हाँ, अब हम करेंगे गमलों में सब्जियां उगाने के आसान तरीकों की बात। अगर आपके पास ज्यादा जगह नहीं है तब भी आप टमाटर, मिर्ची, धनिया, पुदीना, मेथी, पालक, कढ़ी पत्ता जैसी सब्जियां आसानी से गमलों में उगा सकती हैं। सखियों, सबसे पहले हमें ऐसे गमलों को चुनना होगा जिसमें पानी निकलने की सही व्यवस्था हो। मिट्टी में कंपोस्ट या गोबर खाद मिलाना चाहिए ताकि पौधों को पोषण मिलता रहे। पौधों को रोज थोड़ा थोड़ा पानी दे, लेकिन ज्यादा पानी भरने ना दे वरना जड़ें कमजोर पड़ जाएंगी। श्रोताओं, धूप भी बहुत जरूरी होती है। गमलों को ऐसी जगह रखें जहां धूप आती है। सखियों, रसोई के सब्जियों के छिलके, चाय पत्ती और सूखे पत्तों से बनी खाद पौधों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इससे सब्जियों को प्राकृतिक खाद मिलता है। और सखियों, यदि कीड़ों से बचाव करना है तो नीम का पानी या हल्का साबुन वाला पानी पौधों पर छिड़कने से कीड़े कम लगते हैं। सखियों, घर की उगी हुई सब्जियों का स्वाद ही अलग होता है। यह न सिर्फ पैसे बचाती है बल्कि परिवार को शुद्ध और ताजा भोजन भी देती है। तो आज ही अपने घर के छोटे से कोने को हरियाली से सजाइए और बागवानी का आनंद उठाइए। तो चलिए अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: तो सखियों, अब वक्त हो चला है इजाजत लेने का, और कल है रविवार, और रविवार को हमारी ये प्यारी सी मुलाकात तो नहीं हो पाएगी, लेकिन आप चिंता मत कीजिएगा क्योंकि फिर मिलेंगे सोमवार यानी 1 जून को बिल्कुल नए उत्साह और नई बातों के साथ। तो अगले कार्यक्रम में हमारी आज की बात का विषय होगा परिवार में संवाद और बच्चों का पोषण। साथ ही मुलाकात करवाएंगे एक खास मेहमान से और होंगे कुछ जरूरी हेल्थ टिप्स, जिनमें जानेंगे इस गर्मी में डिहाइड्रेशन से कैसे बचें और खुद को स्वस्थ और तरोताजा कैसे रखें। तो सुनना न भूलिएगा सोमवार को कार्यक्रम महिला जगत, इसी समय इसी अपनेपन के

आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत, ये आकाशवाणी बैतूल है। कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम विविध भारती मुंबई से।

0: आज की रात सबको याद रहे।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है मन चित्रपट संगीत। अब आपको सुनवाते हैं एग्रीमेंट फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में, गुलशन बावरा के बोल, संगीत है बप्पी लाहिरी का।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: जी साझा करेंगी अपने दिल की बात। तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
1: चित्रपट संगीत कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं चंबल की कसम। इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीत को लिखा साहिल लुधियानवी ने, संगीत तैयार किया खय्याम ने।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवानी अपनी, थी धन्य जवानी।

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत ये कार्यक्रम संपन्न हुआ।
1: दोस्तों नमस्कार, आज के मैटिनी शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विश्व तंबाकू दिवस पर आइए सुनते हैं BEST के चीफ मेडिकल ऑफिसर अनिल कुमार सिंगल से जयंत पात्रीकर की ये बातचीत।
2: नमस्कार श्रोताओं, विविध भारती के मैटिनी शो में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम सब जानते हैं 31 मई ये जो दिन है, इस दिन मनाया जाता है विश्व तंबाकू विरोधी दिवस। और तंबाकू विरोध क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में क्या किया जाना चाहिए, सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए आज हमने विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है BEST के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल जी को। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: थैंक यू।
2: सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो लत है तंबाकू की, ये जो नशा होता है, ये लत के अलावा भी तंबाकू का कोई इस्तेमाल होता है, वो किस तरह से होता है?
3: जी एक्चुअली ह्यूमन ने तंबाकू का जो सेवन करने से पहले उसको कोई अलग तरीके से यूज करते थे। जैसे कि हमारा देश खेती प्रधान देश है
2: जी, जी।
3: तो वहाँ पे खेती हमारा पूरा डिपेंडेंसी रहता है।
2: हाँ।
3: तो खेती को जो दो तीन चीजें से जो खतरा है, जैसे कि वाइल्ड एनिमल्स या बड़े जानवर वगैरह, उनसे खतरा रहता था, तो उनके खेती के जो बॉर्डर पे ये तंबाकू के प्लांट्स लगाए जाते थे।
2: अच्छा।
3: और उनकी वो स्मेल से जो वाइल्ड एनिमल्स वो दूर चले जाते थे। दूसरा था कि खेती को दूसरा जो प्रॉब्लम था वो चूहे से, तो चूहे खेती खराब कर देते थे। तो अभी आज भी की तारीख में भी जो तंबाकू के जो लीव्स रहते हैं
2: जी जी,
3: वो जो बड़े रहते थे वो सूखने के बाद उसको गर्म करके,
2: अच्छा गर्म करके
3: उसको आग लगा के उसको चूहे के जो अंडरग्राउंड जो उनके
2: बिल होते हैं,
3: बिल होते हैं। हाँ। उसमें डाल देते, चूहे भाग जाते या मर जाते थे।
2: अच्छा, अच्छा।
3: आज की तारीख में भी हमारी जो गाड़ियों में,
2: ग्रामीण इलाकों में ऐसा होता है,
3: इवन सिटी में भी,
2: सिटी में
3: जो ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन चूहे गाड़ी के जो वायर
2: कुतर जाते
3: हैं, तो उसको रोकने के लिए भी तंबाकू डाल देते थे उससे। तो उसके अलावा जो तंबाकू का जो पान रहते हैं उसको सूखने के बाद उसका पाउडर करते, उसको ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड करके भी यूज होता था। जैसे इंसेक्ट्स है जो खेत को या धान को खराब न कर दे। सो ये कुछ तरीके थे जो अदर देन सेवन हम इंसान इसको यूज करते थे। तो ये मुझे यहाँ पे कहना है कि तंबाकू से किसी को भी सेफ नहीं है, सब खतरे में है। अगर वो जीव छोटा है तो जल्दी मरेगा, अगर बड़ा है स्लोली स्लोली लेकिन मरेगा जरूर। तो तंबाकू के लिए कहा जाता है कि तंबाकू के जो सेवन करने वाले में से 50% लोग को तंबाकू मारी डालता है। तो ये मैं श्रोताओं को मैं चाहता हूँ कि बात ध्यान से सुने और अपने दिमाग में उसको हमेशा के लिए स्थापित कर दे।
2: जी जी जी, ये तो बस एक पेस्टिसाइड की तरह इसको जो इस्तेमाल किया जाता है वो केवल उतनी बात अच्छी है तंबाकू की, ये कह सकते हैं बस।
3: बाकी जी

0: बाकी कुछ नहीं। चलिए एक और आपसे बात जाननी थी कि आप बीएसटी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं और 2014 से आपने एक मुहिम चलाई थी तंबाकू विरोधी, क्योंकि हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट लाइन में जितने लोग काम करते हैं, खासतौर से जो ड्राइवर्स होते हैं बस के और ट्रकों के ड्राइवर्स होते हैं, इन लोगों में ज्यादा लत होती है तंबाकू। तो आपने जो मुहिम चलाई है इसके विरोध में, तो उसके 12 साल हो गए, क्या फायदे आपको नजर आए?
1: तो मैं श्रोताओं को बताऊं कि तंबाकू में 7000 अलग अलग प्रकार के केमिकल्स रहते हैं,
0: रसायन,
1: 7000
0: रसायन।
1: जब कोई भी इसको कंज्यूम करता है तो वो शरीर में जाके अलग अलग बीमारियां करते हैं, जैसे कि सिंपल हार्ट बीट्स बढ़ जाती है
0: जी,
1: ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट अटैक आ सकता है, देन लकवा मार सकता है, अपने जो बोन्स है वो वीक हो जाते हैं, और तंबाकू खाने वाले लोगों को बैक पेन या शोल्डर पेन या फ्रैक्चर के भी प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं। उसके अलावा तंबाकू की वजह से टीबी शरीर की बीमारियां होती है, और सबसे डेंजर जैसे कि कैंसर, पर्टिकुलरली मुंह का कैंसर। तो ये सब बीमारी की वजह से हमारे पास हमारे एम्प्लॉयज कर्मचारी उसकी लत की वजह से पीड़ित थे, और उसके वजह से हमारा जो रेवेन्यू जनरेशन भी कम हो रहा था, बिकॉज बीमारी की वजह से वो काम पे नहीं आ सकते थे। तो हमने ये सब चीज को देख के हमने 2014 में तंबाकू मुक्त बेस्ट ये अभियान शुरू किया,
0: और मुक्त बेस्ट,
1: अच्छा, और आज तक उसको हमने कंटिन्यू किया है। तो 12 साल के आज ये अभियान को हो गए, तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ये 12 साल में 5000 हमारे कर्मचारी ने तंबाकू की व्यसन परमानेंटली छोड़ दिया है।
0: वाह।
1: उसके अलावा एक जो सर्वे है उसको हम गेट्स बोलते हैं, ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे,
0: अच्छा,
1: उसके मुताबिक कि सरकार अगर 100 रुपीज टैक्स लेती है तंबाकू के ऊपर, तो सामने 816 रुपए का हमें अतिरिक्त भार हमें भुगतना पड़ता है, और जो भार है मेनली तंबाकू की वजह से जो बीमारियां होती है उसके ट्रीटमेंट के लिए, और दूसरा जो बीमारी की वजह से लोग काम पे नहीं जाते या प्रोडक्टिविटी लॉस के हिसाब से ये नुकसान। तो 12 साल में हमने देखा है कि बीमारियां कम हो गई, उसका जो ट्रीटमेंट का खर्चा कम हो गया, बीमारियां कम हो गई, इसलिए सिकनेस एब्सेंटिज्म हमारे कम हो गया, और इसके वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और रेवेन्यू भी बढ़ गया, और साथ साथ में बीमारियां कम हुई है तो जो उसकी वजह से मोर्टेलिटी थी
0: जी,
1: जो डेथ, वो भी हमारे इधर कम हो गई है, कैंसर के प्रमाण हमारे उधर कम हो गए, तो लोगों में एक अच्छी भावनाएं तैयार हुई है तंबाकू के विरुद्ध में। तो ये बीमारियां कम होने से ये जो लोग ठीक हो रहे हैं या जो बीमार कम पड़ रहे
0: जी,
1: तो ये नोटिफाई किया गया, और हमारी जो अभियान को नेशनली और इंटरनेशनल भी रिकॉग्निशन मिला है, एक्नोलेज किया गया, अवार्ड भी मिला है।
0: क्या बात।
1: तो ये तो मैं चाहता हूँ कि पूरी भारत में ऐसे अभियान अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में
0: चलाया जाए
1: जो लोग अच्छे हो, प्रोडक्टिविटी बढ़े हमारी।
0: रूप से आप सभी, आप और आपकी पूरी टीम जो ये मुहिम चला रही है, अभियान चला रहे हैं, आप इसके लिए अभिनंदन के पात्र हैं।
1: यस, थैंक यू।
0: पुरस्कार भी आपको मिल चुका है और काफी उपलब्धियां रही इस अभियान के। बेसिक एक बहुत ही सवाल ये है कि लोग क्यों खाते हैं तंबाकू, क्या होता होगा, ये नशी शुरुआत कैसे होगी, और वो खाने के बाद क्या उन्हें महसूस होता होगा कि फिर वो बार बार उसे खाने लग जाते हैं।
1: बेसिकली वो तंबाकू खुद से तो कोई खाता नहीं है
0: जी,
1: मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है कि पीयर प्रेशर, स्कूल कॉलेज के जमाने से दोस्त खा रहा है,
0: अच्छा,
1: कलीग खा रहा है, ले लेना,
0: अच्छा,
1: ले लेना, तो छोटी छोटी शुरुआत छोटे से होती है। लेकिन यहाँ पे साइंटिफिक रीजन ऐसा है, जब तंबाकू का सेवन किया जाता है
0: जी,
1: आइदर स्मोक से या स्मोकलेस से, तो अपने ब्रेन में एक केमिकल्स जो है
0: जी,
1: वो उसकी मात्रा बढ़ जाती है, वो केमिकल का नाम है डोपामिन। और डोपामिन जो कहते हैं इसको हैप्पीनेस हार्मोन भी बोलते हैं
0: जी,
1: वो जब डोपामिन का लेवल ब्रेन में बढ़ता है तो लोग स्ट्रेस भी फील करते हैं, उसको खुशी महसूस करते हैं, और सिंपल भाषा में बोले तो किक आती है उनको, और किक की वजह से लोग ये पर्टिकुलर ड्राइवर्स ये किक की वजह से ये तंबाकू का सेवन करते हैं। तो ये जो देन शुरुआत में बहुत कम मात्रा में तंबाकू की सेवन, बहुत कम मात्रा में डोपामिन लेवल बढ़ता है,
0: अच्छा,
1: लेकिन डे बाय डे जैसे जैसे आगे ये लत बढ़ती है तब वो डोपामिन लेवल बढ़ता है, तब तंबाकू का लेवल कंजम्पशन की मात्रा भी बढ़ जाती है,
0: अच्छा,
1: उसको कहते हैं कि निकोटिन रिसेप्टर, डोपामिन रिसेप्टर्स,
0: हाँ,
1: वो जो
0: हाँ,
1: है वो रजिस्टर हो जाते हैं, तब थोड़ा भी डोपामिन बढ़ने के लिए ज्यादा मात्रा तंबाकू की कंज्यूम करने की जरूरत पड़ती है। तो ये विशेष साइकिल तैयार होती है,
0: यानी पहले एक ग्राम खाने पर भी जो खुशी मिलती थी, हाँ, वो 10 ग्राम खाने के बाद भी नहीं मिलती
1: है,
0: आगे फिर वो मात्रा बढ़ती है।

0: जाता है,
1: मरते बाद इसलिए वो उसकी लत लगती जाती है और
0: ओहो,
1: पेशेंट उसके पूरी अधीन हो जाता है, उसकी पूरे डिपेंडेंस तैयार हो जाती है और देन वो बीमारियां शुरू होती है।
0: अच्छा, फिर वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक बार लत लग जाए तो फिर वो कौन कौन सी बीमारियां, बहुत लंबी लिस्ट है।
1: यस, बहुत बड़ी लिस्ट है। शुरुआत में लोगों को लगता है कि कैंसर, कैंसर ठीक है होता है, 100% होता है वो, लेकिन उसको टाइम लगता है।
0: जी
1: लेकिन उससे पहले जो होते हैं कि
0: हाँ
1: मैंने पहले बताया कि पहला तो जब तंबाकू खाते हैं तो
0: जी
1: पहले हमारी हार्ट बीट्स बढ़ जाती है और कोई नोटिस नहीं करता है, हार्ट बीट्स बढ़ जाती है, देन ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। देन ये ब्लड प्रेशर बढ़ता है देन डेफिनेटली वो हार्ट पे उसकी असर होने लगती है, तो देन हार्ट अटैक आने के रिस्क बढ़ जाती है। देन जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो पैरालिसिस, उसके भी जब तंबाकू कंज्यूम करते हैं तो हमारे जो खाने की जो पाचन शक्ति है वो पुअर हो जाती है और उसके वजह से लोग उनको अपचन समस्या रहती है, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी की दिक्कत होती है। जब एक अपचन होता है तो बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट विटामिन या कैल्शियम मिनरल्स जो एब्जॉर्ब होने चाहिए वो एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और उसके वजह से पर्टिकुलरली कैल्शियम जो बोलते हैं।
0: डॉक्टर साहब आप तो बता रहे हैं तंबाकू खाने का ये असर है,
1: ये
0: मगर कई लोगों को देखा गया है
1: हाँ,
0: कि वो जब तक वो तंबाकू नहीं खा लेते सुबह सुबह चाय पीने के बाद या सिगरेट नहीं पी लेते तब तक उन्हें हाजत नहीं आती और वो टॉयलेट नहीं जाते।
1: वो एक मिथ है, वो ऐसा कुछ नहीं है। अपचन होता है तो कैल्शियम, सबसे बड़ा कैल्शियम का प्रॉब्लम शुरू होता है और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाए, इसलिए वजह से बेसिकली हड्डियां और मसल्स में कैल्शियम की बहुत नीड रहती है, जरूरत रहती है, तो ये मसल्स एंड हड्डियां भी वीक हो जाती है और ऐसे
0: बोन डेंसिटी कम हो जाती
1: है, बोन डेंसिटी कम हो जाती है। तो ऐसे जो तंबाकू जो खाने वाले लोगों में बैक पेन, मसल्स पेन और फ्रैक्चर की मात्रा भी ज्यादा रहती है। देन तंबाकू खाने की वजह से हमारी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, इम्यूनिटी बोलते हैं, वो कम हो जाती है और उससे अलावा लोग ड्यूटी पे रहते हैं तो लंच या डिनर या स्किप करने के लिए भी लोग तंबाकू खाते हैं, तो ये सब की वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है। उसके वजह से जैसे कि जो क्षय रोग या टीबी शरीर की बीमारी का उनको ज्यादा खतरा रहता है
0: जी।
1: और ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द एंड या नॉट द लीस्ट ये कैंसर की बीमारी। अभी मैं यहाँ पे बताऊंगा कि तंबाकू को सबसे ज्यादा मुंह का कैंसर होता है और भारत देश पूरे विश्व में तंबाकू की वजह से होने वाले
0: कैंसर के
1: मुंह के कैंसर के प्रथम नंबर पे आता है।
0: ओहो।
1: और ये कलेक्टिवली जो भी मैंने बीमारियां बोली उसके वजह से भारत में हर दिन 3,500 लोग की मृत्यु होती है, तो ये श्रोताओं को जानना बहुत जरूरी है।
0: ये बहुत दर्दनाक
1: चीज है,
0: मगर तो सत्य है।
1: लेकिन ये सत्य है
0: जी,
1: और
0: जी,
1: ये
0: जी।
1: मैं नहीं बोल रहा हूँ
0: हाँ।
1: ये ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे के रिपोर्ट में लिखा है।
0: जी, जी, जी। हमने ये भी सुना है डॉक्टर साहब कि तंबाकू खाने से डायबिटीज होता है, मधुमेह।
1: यस, इसमें थोड़ा बाहर दूंगा
0: जी जी,
1: कि पहला तो हम समझ लेते कि पूरी दुनिया भर में दो देश में सबसे ज्यादा तंबाकू प्रोडक्शन होता है, उसका कंज्यूम भी होता है, वो है एक है चीन और दूसरा नंबर पे हमारा भारत देश है।
0: अच्छा,
1: और दोनों देश में ही सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट है, मधुमेह के पेशेंट है।
0: ओ, अच्छा।
1: तो ये इनडायरेक्टली कोरिलेशन है कि तंबाकू
0: हाँ।
1: वजह से डायबिटीज हो सकती है। आज की तारीख में देखें तो पूरी दुनिया में डायबिटीज के सबसे ज्यादा मरीज भारत में पाए जाते हैं, पहले दो साल पहले चाइना में था, अभी भारत में हो गया, और दोनों में ज्यादा ही कंजम्पशन होता है। जैसे मैंने बताया कि तंबाकू में 7,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स रहते हैं, वो कंज्यूम करने के बाद हमारे जो डायबिटीज का जो मेन जो कंट्रोल मैकेनिज्म है इंसुलिन
0: जी, जी।
1: ये जो इंसुलिन के प्रोडक्शन को और इंसुलिन को फंक्शन को ये तंबाकू अल्टर करता है।
0: अच्छा,
1: और बहुत सारे रीजंस है और इसके वजह से शुगर कंट्रोल मैकेनिज्म हमारी बॉडी का डिस्टर्ब हो जाता है।
0: अच्छा।
1: अगर आप WHO की साइट पे जाओगे और डायबिटीज के बारे में इन्फॉर्मेशन मांगोगे तो उसके जो पांच प्रमुख कारण है उसमें पांचवा कारण है तंबाकू का व्यसन।
0: अच्छा,
1: तो लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि तंबाकू वजह डायबिटीज भी होती है।
0: मगर जरूरी नहीं कि डायबिटीज है तो उसको तंबाकू की लत होगी,
1: नॉट नेसेसरी, बट तंबाकू खाने वालों को रिस्क ज्यादा रहती है,
0: इसकी रिस्क है, डायबिटीज हो सकता है।
1: यस, हो सकता है, और वो डायबिटीज मतलब बहुत कड़वी बीमारी है।
0: जी जी जी, तंबाकू अगर कोई किसी को अगर उसका नशा है, लत है और वो छोड़ना चाहे तो निश्चित रूप से बहुत उसके फायदे उसको मिलेंगे।
1: यस,
0: और उसके विड्रॉल सिम्टम्स भी होते होंगे।
1: यस,
0: तो हमें दोनों बातें बताइए, छोड़ने के बाद में विड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और एक बार वो छोड़ दे, निश्चय कर ले, अपना निर्धार पक्का हो जाए उसका कि छोड़ना है, तो उसके क्या क्या फायदे उसे होने वाले।
1: तो पहला हम उसके फायदे के बारे में बोलेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: जब तंबाकू अगर सपोज वो हर एक घंटे में खाता है
0: जी,
1: या किसी बहुत बार तो वो

0: नींद से सुबह में उठता है तो आप कितने समय में उसको तम्बाकू की जरूरत पड़ती है, वो एक भी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फैक्टर है,
1: अच्छा
0: उसकी लत के बारे में हमें मालूम पड़ता है कि उठने के बाद कितने समय के बाद उसको तम्बाकू खाने की जरूरत पड़ती है। तो जब तम्बाकू उस समय पर नहीं खाया तो पहला तो

0: एक केमिकल का नाम है निकोटीन,
1: जी
0: और
1: जी
0: निकोटीन की वजह से हमारे ब्रेन में डोपामिन बढ़ता है और उसकी वजह से उसकी लत लगती है।
1: अच्छा
0: तो जब तंबाकू सडनली आप छोड़ देते हो, लोग कहते हैं कि हम आज मैं अगर 5 बार खाता हूं तो कल 4 बार खाऊंगा, तीन तीन,
1: हाँ
0: तो ऐसा कभी नहीं होता। उसको झटके से ही छोड़ना है
1: अच्छा
0: तो ही फायदा होगा, तो ही उसकी लत छूटेगी। तो जब झटके से छोड़ते हो तब आपको निकोटीन का विड्रोल सिम्टम 100% महसूस होगा।
1: शरीर वो जो है अपनी प्रतिक्रिया देता है।
0: यस, महसूस होगा ही।
1: हाँ
0: वो जो विड्रोल सिम्टम, जैसे कि वो वीकनेस आ जाएगा, कंसंट्रेशन नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा, पर्टिकुलर ड्राइवर कंट्रोल को ये बहुत होता था हमारे पास तो ये। लेकिन यहाँ पे जरूरी है कितना टाइम तक ये विड्रोल सिम्टम रहता है।
1: अच्छा
0: वो 2 दिन से ज्यादा 2 हफ्ते चलता है, उसके बाद अपनी बॉडी खुद को
1: नॉर्मल हो
0: एडजस्ट करने
1: जाता है।
0: लगती है,
1: जी जी जी
0: उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है,
1: तो पूरा शरीर अपने जो है सामान्य स्थिति में आ जाता
0: आ
1: है
0: जाता है बस,
1: जैसा तंबाकू खाने से पहले
0: पहले
1: था।
0: था वैसा।
1: वाह,
0: बस थोड़े दिन के लिए अपने को सहन करना है, और वो समय अगर निकाल डाला तो वापस कभी तंबाकू खाता
1: देखिए
0: नहीं।
1: ये कितनी जरूरी बात है हमारे श्रोताओं को, इनमें से किसी को अगर ये लत है तो ये समझना बहुत जरूरी है कि वो छोड़ना चाहते हैं तो तुरंत छोड़ दें,
0: झटके से छोड़ना है
1: झटके से एक
0: बस,
1: साथ,
0: बस
1: और उसके बाद तंबाकू
0: दो दिन से
1: के
0: दो
1: बारे में सोचना ही
0: हफ्ते
1: नहीं। 2 हफ्ते, ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते
0: दो ज्यादा से ज्यादा दो
1: ये
0: हफ्ते
1: लक्षण रहेंगे,
0: बस, विड्रॉल सिम्टम ज्यादा।
1: विड्रॉल सिम्टम्स, और उसके बाद वो सामान्य स्थिति
0: सामान्य
1: में आ
0: हो
1: जाएगा।
0: जाएगा,
1: क्या
0: अपनी
1: बात,
0: बॉडी अपने आप को रिकवर करती है।
1: वाह वाह। तो फायदे हमने जान लिए। हम तंबाकू की बातें जब होती है तो एक एक्ट है, एक ऐसा नियम है, कुछ वो कानून है, कॉप्टा एक्ट कुछ ऐसा कहते हैं, ये क्या होता है, क्या कॉप्टा एक्ट क्या है?
0: सी, जैसे तंबाकू की वजह से हमारे पास जैसे सबसे ज्यादा मौतें होती है, खर्चा होता है,
1: जी जी
0: 100 रुपए के टैक्स के सामने 816 रुपए का हमें खर्चा हो रहा है। तो ये उसको और कम करने के लिए कुछ कानून बनाया है, उसको
1: अच्छा
0: कोटपा एक्ट बोलते हैं। उसका फुल फॉर्म है कंजम्पशन ऑफ टोबैको प्रोडक्ट एक्ट,
1: अच्छा
0: तो
1: कंजम्पशन ऑफ
0: ऑफ
1: टोबैको
0: टोबैको
1: प्रोडक्ट
0: प्रोडक्ट
1: एक्ट,
0: एक्ट,
1: कॉटपा एक्ट।
0: कोटपा एक्ट।
1: अच्छा
0: उसके अंतर्गत आपको पब्लिक प्लेस में तंबाकू का कोई भी प्रकार का सेवन प्रतिबंध है, इज अ
1: प्रतिबंधित है।
0: पनिशेबल ऑफेंस।
1: जी।
0: देन वो खाके पब्लिक प्लेस में थूकना भी इज अ पनिशेबल ऑफेंस। देन उसके एडवर्टाइजमेंट
1: जी
0: जो होती है वो
1: हाँ
0: भी अलाउड नहीं है आपको कोई भी प्रकार के। सो ये एक एक्ट इसलिए लाया है कि लोग एक दूसरे को देख के जो खाते हैं वो ना खाए,
1: जी।
0: और उसकी लत और उसको कम करते जाए हम लोग।
1: जी
0: उसका फायदा हुआ है, कम हुई है,
1: हाँ
0: जो लोग खाने वाले परसेंटेज कम हुआ है,
1: जी
0: लेकिन जो उसे और हमें आगे लेके जाना है उसको एक और, अभी कुछ सरकार ने उसको कड़क किया है कि उसके अंतर्गत वो सरोगेसी ऐड बोलते हैं उसको
1: अच्छा
0: भी बैन किया है, कि
1: हाँ
0: कुछ नाम सेम रखते हैं लेकिन कुछ अलग प्रोडक्ट रहता है।
1: हाँ
0: एक्स तंबाकू का जो प्रोडक्ट था पहले
1: जी
0: उसको
1: जी
0: खाली नाम सेम रखते हैं और प्रोडक्ट कुछ अलग रहते
1: होता
0: हैं,
1: तंबाकू ही है मगर उसको कुछ एक
0: वो
1: नया
0: अलग,
1: नाम और नया रूप दे देते हैं।
0: या तो फिर उसका प्रोडक्ट अलग कर देते हैं
1: अच्छा
0: कि
1: अच्छा
0: तब जो पहले वो नाम तंबाकू
1: हाँ
0: के वजह से के लिए यूज होता था, अब
1: हाँ
0: वो तंबाकू की वजह से नहीं होते, कुछ अलग प्रोडक्ट जो नॉर्मली लोग
1: अच्छा अच्छा
0: खाते
1: अच्छा
0: पीते हैं उसके लिए, तो
1: हाँ हाँ
0: सरोगेट ऐड बोलते हैं, उसको भी बैन किया है।
1: जी
0: तो
1: जी
0: ये इसका उद्देश्य यही है कि तंबाकू का कंजम्पशन कम हो जाए, उसके वजह से जो बीमारियां है कम हो जाए और खर्चे भी
1: जी
0: कम हो जाए।
1: तंबाकू तो नहीं मगर तंबाकू जैसे, और तंबाकू इस्तेमाल करके कुछ नए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, इसी की अभी बात कर रहे थे। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि लोग सीधे सीधे तंबाकू तो नहीं खाते मगर ऐसे प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल करते हैं
0: इनडायरेक्ट
1: इनडायरेक्टली जिससे तंबाकू उनके शरीर में जाता है।
0: जैसे अभी बहुत कुछ आ गया है, वो इनहेलेशन आ गया है,
1: हाँ,
0: वो भले सिगरेट नहीं पीते लेकिन कुछ इनहेलेशन
1: ई
0: तरीका है,
1: सिगरेट कर
0: ई
1: ई
0: सिगरेट आ गई
1: सिगरेट
0: है,
1: हाँ
0: उसको उसको भी अलाउ नहीं है, वो भी हानिकारक है,
1: जी जी जी
0: उसमें हानिकारक है वो भी।
1: हाँ। तो ये जो तंबाकू ना खाके अगर ये ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं उन्हें
0: उसे
1: भी उतना ही धोखा है,
0: यस यस
1: उतना ही रिस्क है।
0: यस यस अमेरिकन
1: जो व्यक्ति तंबाकू नहीं खाता वो गलती से उसके शरीर में तंबाकू चला जाए तो पहला रिएक्शन बॉडी का तो ये होता है कि जैसे कभी पान खाते हुए पान में किसी ने हल्का सा
0: हाँ,
1: तंबाकू डाल दिया और वो हमने खा लिया
0: और दिक्कत
1: तो
0: होती है।
1: तुरंत उल्टियां होने लगती हैं।
0: यस यस यस और बहुत बार तो जैसे कि
1: और लेकिन जिनको लत लगती है उनको पहली बार ऐसा नहीं होता
0: उनको
1: है।
0: नहीं होता, ये जो आपने बताया
1: हाँ
0: वो सबसे
1: हाँ
0: ज्यादा अफेक्ट करता है, पेसिव स्मोकिंग बोलते हैं उसको, कि
1: हाँ
0: अगर हस्बैंड स्मोक करता है,
1: जी जी
0: उसकी वाइफ है या उसके बच्चे हैं,
1: हाँ
0: तो उसमें भी वो धुआं जाता है ना,
1: बिल्कुल
0: वो
1: हाँ
0: धुआं जाता है। देन या घर में कोई तंबाकू खाता है तो उसको देख के बच्चे भी उसके खाने लगते हैं,
1: अच्छा
0: तो ये बहुत जरूरी है। तो पेसिव स्मोकिंग के वजह से इट हैज बीन एस्टैब्लिश कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है,
1: जी
0: जैसे कोई एक फैमिली में एक हस्बैंड स्मोक करता है
1: जी
0: और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो उसके वो धुआं उसको जाए तो उसके बच्चों को भी खतरा है,
1: जी
0: जो अभी तक दुनिया में आए नहीं है उसको भी खतरा है,
1: उस पर
0: तो
1: भी असर हो रहा है।
0: बहुत खतरा है उसके लिए, सबसे ज्यादा खतरा है उसको तो।
1: जी
0: पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं उसको।
1: हाँ।
0: ये सिर्फ चीजें लोगों को आई डोंट नो मालूम है या उसको इग्नोर करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं, आई डोंट नो, बट लोगों को मालूम होना जरूरी है ये बातें।
1: अच्छा, हमने सुना है कि कुछ दवाइयों के तरीके में कुछ तरह के मेडिसिन है, उसमें तंबाकू का इस्तेमाल भी होता है?
0: नहीं, आई डोंट थिंक सो।
1: अच्छा,
0: आई डोंट थिंक सो।
1: या कुछ लोगों ने कहा कि हमें तो फलां डॉक्टर साहब ने कहा है कि पान में थोड़ा तंबाकू खा लिया करो ताकि आपका पेट अच्छा रहे।
0: नहीं, ये सब मिथ्स है, मिथ्स।
1: अच्छा,
0: है, मिथ्स है।
1: ऐसा कुछ
0: सी तंबाकू इतनी क्वांटिटी इज नॉट इज हार्मफुल फॉर द बॉडी।
1: बस वो
0: बस उसको छोड़ना ही है ना, उसको नजदीक जाना ही नहीं उसके बस।
1: हाँ,
0: बस
1: हाँ,
0: जैसे मैं शुरुआत में बताया, छोटा जीव है जल्दी मरेगा, बड़ा है तो बाद में मरेगा।
1: मरेगा
0: जरूर।
1: तो इस कठोर सत्य को, इस कटु सत्य को जो हमें जान लेना चाहिए,
0: जाना एक्सेप्ट करना है हमें,
1: एक्सेप्ट करना है। कोई जादुई मिक्स आपने बनाया?
0: यस, उसको हमने,
1: ये कैसे हुआ?
0: Yes,
1: कब हुआ?
0: या
1: और इसका क्या आपको परिणाम कैसा देखने को मिला?
0: उसको हमने नाम दिया मैजिक मिक्स।
1: अच्छा,
0: या मैजिक चूरन,
1: जादुई चूरन,
0: जादुई चूरन।
1: वाह।
0: जैसे अभी तंबाकू की जो एडिक्ट लोगों में दो प्रकार की एडिक्शन है, एक है साइकोलॉजिकल एडिक्शन जो 90% लोगों में, 10% लोग में फिजिकल डिपेंडेंसी है।
1: अच्छा,
0: तो 90% लोग बस उसको वो कलर का चूर्ण मांगता है और उसको हाथों में घसना है और खाना है, और उसका जो कैनिस्टर या डबी बोले जो महाराष्ट्र में, तो वो उसको दिख गई तो उसको लगता है मैंने तंबाकू खा लिया।
1: अच्छा।
0: तो हमने वो बेस को ध्यान में रखते हमने चूर्ण बनाया है जिसमें दालचीनी, अजवाइन, जीरा, बड़ी शोप और लवंग का इस्तेमाल किया है। जब उसको आप ग्राइंड करोगे तो हुबहू तंबाकू सरीका ही लगेगा।
1: अच्छा।
0: और जो चूने की जगह पे हमने राइस पाउडर यूज करते हैं उसमें।
1: अच्छा।
0: तो जब आप उसको हाथ में लेके घिसोगे तो फील सेम ही आएगा कि आप तंबाकू को घिस रहे हो।
1: जो लोग तंबाकू मल के खाते
0: हैं, तो उसको कलर भी वैसे ही है उसका ना। उसमें साइंस ऐसा है कि जो दालचीनी है इसकी प्रॉपर्टी है कि जो निकोटीन के विड्रोल को और कम करती है। तो साइंस भी है उसके पीछे।
1: क्या बात है।
0: तो इसके वजह से हमने चूर्ण बनाया, उसका नाम रखा मैजिक मिक्स।
1: मैजिक मिक्स,
0: मैजिक मिक्स।
1: वाह वाह वाह।
0: और वो मैजिक ने सच में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मैजिक किया है।
1: हाँ।
0: और वो खा के बहुत सारे लोगों ने तंबाकू छोड़ दिया है।
1: वाह वाह।
0: तो मैं लोगों को बोलूंगा कि उसकी लिस्ट अवेलेबल है यूट्यूब में।
1: अच्छा।
0: मैजिक मिक्स मेरा नाम डाल के आपको मिल जाए कैसे बनाना है।
1: हाँ।
0: हमने उसको कॉपीराइट किया है, आप कोई भी घर पे बना सकता है।
1: अच्छा।
0: और उसको यूज करे और अपनी जब भी तलब लगे तंबाकू की जगह उसको खाए।
1: मतलब ये मैजिक मिक्स कोई कमर्शियल प्रोडक्ट?
0: नो, इट इज नॉट कमर्शियल प्रोडक्ट।
1: ये सबके लिए है, सबके फायदे,
0: सबके फायदे के लिए हमने खाली कॉपीराइट किया कि इसको कमर्शियल यूज कोई ना करे उसको।
1: अच्छा। हाँ।
0: तो आपके लिए ये, आप खाओ, खुद बनाओ,
1: सबके लिए ये मुफ्त है, फ्री है,
0: खुद बनाइए घर पर खाइए।
1: तो ये फॉर्मूला जो है वो यूट्यूब पे देख करके बनाया जा सकता है।
0: और मेन बार उसको खा के थूकना भी नहीं है। तो स्वच्छ भारत अभियान को भी हम प्रमोट कर रहे हैं उससे।
1: क्या बात है। वाह वाह।
0: उसके खाने के बाद वो निगलना ही है क्योंकि वो निगलने के बाद बहुत सारे बेनिफिट देता है।
1: बिल्कुल।
0: सब ये अपने गर्म मसाले फायदेकारक ही हमारे बॉडी को,
1: हमारे सुनने वालों के बेनिफिट के लिए।
0: यस,
1: हम इस मैजिक मिक्स का जो फॉर्मूला है उसे एक बार दोहराते हैं।
0: हाँ।
1: इसमें क्या क्या चीजें आपने डाली?
0: दालचीनी,
1: दालचीनी,
0: अजवाइन,
1: अजवाइन,
0: जीरा,
1: जीरा,
0: बड़ी सौंफ,
1: सौंफ,
0: सौंफ और एकाध लौंग।
1: अच्छा।
0: उसको मिक्स करके,
1: लौंग तो एक ही ले,
0: एक ही लेना,
1: बाकी जितनी
0: बाकी इक्वल क्वांटिटी, इक्वल क्वांटिटी,
1: इक्वल क्वांटिटी,
0: इक्वल वन। उसको ग्राइंड करना है मिक्सचर में, मिक्सचर होगा वो हुबहू तंबाकू सरीका लगेगा।
1: अच्छा।
0: लेकिन उसमें तंबाकू नहीं है, चूने की जगह पे राइस पाउडर यूज करने का, वो भी
1: घर चावल,
0: चावल का आटा।
1: अच्छा।
0: तो ये आप करके उसको सेम कनिस्टर में,
1: तंबाकू मलने की आदत है,
0: ऐसे ही मल के खाओ,
1: मल के जो है अपना पूरा एक्शन कंप्लीट,
0: एक्शन कंप्लीट,
1: और उसके बाद चाहे तो उसको होठों में दबा ले थोड़ी देर,
0: या दबा लो,
1: उसका जो जूस निकलेगा
0: वो
1: आपके शरीर के लिए फायदे
0: करेगा।
1: वाह वाह।
0: उसको थूकना भी नहीं है।
1: क्या बात है। बहुत ही जादुई बात है ये तंबाकू के बारे में, इस लत को छोड़ने के लिए जो है कारगर सिद्ध होगी। तो डॉक्टर साहब, अब कार्यक्रम के आखिर में कुछ तंबाकू छोड़ने के बारे में कुछ पते की बात हो जाए, आप क्या बताना चाहेंगे इस मौके पे?
0: मैं भारत के वासियों को बताना चाहता हूँ कि तंबाकू कभी भी हमें फायदा नहीं करता है, उससे सिर्फ नुकसान नुकसान नुकसान ही होता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक भी नुकसान होता है।
1: जी जी, जी।
0: वो लोगों को मालूम नहीं है, ऐसा सर्वे हुआ है कि अगर आपने तंबाकू की लत छोड़ दी तो आपका जो एक इंडिविजुअल घर की जो आर्थिक परिस्थिति 10% इम्प्रूव हो जाती है।
1: क्या बात है। मुझे एक और बात याद आई कि मेरे कॉलेज के दिनों में मेरा एक दोस्त था।
0: हाँ।
1: और वो कृषि बैकग्राउंड से था।
0: हाँ।
1: उसके घर वाले जो है खेती करते थे। हाँ। तो वो कहता है वो तंबाकू खाया करता था बहुत नियमित रूप से। हाँ। और वो कहता है मुझे सांप ने अगर काट लिया तो मुझे जहर नहीं चढ़ेगा।
0: हाँ।
1: ये कितना बड़ा मिथ है आप जरा
0: मिथ मिथ वो गलत मिथ सी है सब सब मिथ सी
1: बहुत बड़ी गलत
0: बहुत गलत

0: फेमी है। ये तंबाकू छोड़ना बहुत जरूरी है,
1: जी
0: वो सिर्फ वो इंडिविजुअल को नहीं खाता है, पूरी फैमिली को बर्बाद कर देता है वो। जैसे हमने देखे, आप किसी को अगर अगर देखना है तो टाटा हॉस्पिटल में जाके एक बार चक्कर मार के आए बस, खाली समझ जाएंगे ये तंबाकू से क्या गड़बड़ होती है।
1: जी जी
0: लोगों को जिंदा है लेकिन मुंह में खाना नहीं खा सकते, नाक में नलीर से खाना खाया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि अपने फैमिली को, अपने देश को स्ट्रांग करने के लिए,
1: जी
0: उसको मजबूत करने के लिए, शारीरिक और मानसिक और आर्थिक मजबूत करने के लिए, हमें तंबाकू की लत को छोड़ना ही है।
1: और कोई भी फॉर्म हो तंबाकू का,
0: कोई भी फॉर्म,
1: या तो कच्चा तंबाकू है या वो उसकी पाउडर नसवार होती
0: है, स्मोकिंग है,
1: या स्मोकिंग है,
0: कोई भी प्रकार
1: किसी
0: का
1: भी तरह से,
0: बस उसको छोड़ दो, बस खत्म करो, अपनी फैमिली और देश के लिए उसको छोड़ दो।
1: बहुत ही अच्छी बातें आज तंबाकू विरोध जो है इसके बारे में आपने बताई, और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आप यहां आए और इतनी अच्छी जानकारी हमें दी,
0: थैंक यू,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद। तंबाकू की वजह से भारत में हर दिन 3,500 लोगों की मृत्यु होती है। तंबाकू की वजह से मनुष्य उसकी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्थिति खतरे में पड़ जाती है, और उसके वजह से उनकी फैमिली बहुत नुकसान भुगतना पड़ता है। तो मैं आज तंबाकू विरोध दिवस के निमित्त श्रोताओं को अपील करूंगा कि तंबाकू की व्यसन को पूरी तरह छोड़ दे, और झटके से छोड़ दे, और अपने फैमिली को और हमारे देश को मजबूत बनाए। धन्यवाद।

विश्व तंबाकू दिवस पर अभी आप सुन रहे थे VEST के चीफ मेडिकल ऑफिसर अनिल कुमार सिंगल से जयंत पात्रीकर की ये बातचीत। आज का मैटिनी शो बस यहीं तक, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति ने गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
0: सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में कहा कि देश में एलपीजी की कमी की कोई सूचना नहीं है। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यभार मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने के निर्देश दिए हैं। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा यह सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
2: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल NS राजासुब्रमणी उनका स्थान लेंगे। गुजरात टाइटंस पहुंची अहमदाबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि गोवा न केवल अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार आतिथ्य सत्कार के लिए प्रसिद्ध है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह अवसर उन सभी को याद करने का है जिन्होंने राज्य की प्रगति और पहचान के लिए अथक परिश्रम किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पत्रकारों, लेखकों और हिंदी भाषा के समर्पित प्रबुद्ध व्यक्तियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचे और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आज अभिनेता परेश रावल का जन्मदिन है, बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं हम उन्हें और उनकी फिल्मों के गाने आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे। भागम भाग इस फिल्म का गाना रेमो फर्नांडिस और सुजेन की आवाजों में, समीर के बोल संगीत प्रीतम का।

अंतराल के बाद अब आपको सुनवाने जा रहे हैं आंखें फिल्म का गाना, नितिन रायकवार आदेश और अरुण बख्शी की आवाजों में। नितिन रायकवार के बोल, संगीत है जतिन ललित का।

अगला गीत सुनते हैं कार्यक्रम का, ओ माई गॉड, इस फिल्म का गाना है। कैलाश खेर, मीत ब्रदर्स और अनजान की आवाजें, कुमार के बोल, मीत ब्रदर्स अनजान का संगीत है।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: ये है राजा फिल्म का गाना, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला जो गीत है ये हंगामा फिल्म का गाना शान और साधना सरगम की आवाजों में। समीर के बोल हैं, संगीत है नदीम श्रवण का।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अगला गाना गोलमाल, इस फिल्म का गाना शेखर और स्नेहा पंत की आवाजों में, विशाल दादलानी और कुमार का लिखा हुआ गाना, संगीत है विशाल शेखर का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली तेलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
1: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत।

यादों की महफिल कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अतिथि तुम कब जाओगे। इस फिल्म का गाना अनुपम आमोद की आवाज, इरशाद कामिल के बोल, संगीत है प्रीतम का।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस सुरीला सफर कार्यक्रम में। कार्यक्रम के साथ मैं हूं मंजू द्विवेदी। दोस्तों, आज जो इबारत या जो टेक्स्ट हमने फेसबुक पेज पर पोस्ट किया है, तो उसको आपको एक बार पढ़ के सुना देते हैं कि एक हसीन शाम को मन किया कि ठंडे ठंडे पानी से नहा लूं, ये सोचते हुए कि ऐ दिल तू किस पे आ गया है। मन में उथल पुथल थी कि पीते पीते कभी कभी यूं अंडे का फंडा भी समझ लेना चाहिए, इसलिए मैंने कहा सूरज जरा आ पासा। तो उसने कहा आला बर्फी वाला। मैंने कहा जब तक समोसे में आलू रहेगा, इश्के दी चाशनी का बोलबाला रहेगा। इसके बाद मन सोचने लगा हाय रे वो दिन क्यों ना आए। ये आज की इबारत है। एक हमारे साथी लिखते हैं कि इबारत हो या शरारत हो, हमारी ये इनायत है, चलेंगे साथ सफर में चाहे कहीं कयामत हो। एक साथी लिख रहे हैं कि शाम तो नहीं, हमारा तो दिन सुबह से ही हसीन बन पड़ा है। सुबह से मौसम अटकेलियां कर रहा है, कभी धूप कभी छांव, कभी तेज हवा हल्की सी बूंदाबांदी। इस मौसम का क्या वर्णन करूं, मन सुबह से झूम उठा, ये मौसम का जादू है मितवा, अब दिल पर काबू है मितवा। दोस्तों, आज जो इबारत हमने पोस्ट की उसमें कुछ जो गाने हैं वो खाने पीने की चीजों को लेकर है। आपको बता दें कि आज इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस है। आलू को हम एक सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा बहुत सारे स्नैक्स या बनाने में या फिर जो छोटा मोटा नाश्ता शाम के समय का होता है उसमें आलू का बहुत महत्व होता है। हम सभी को पसंद होता है, चाहे वो समोसा हो, आलू बड़ा हो या फिर एक कोई सैंडविच हो जिसमें आलू डाला जाता हो, इस तरह के बहुत सारे नाश्ते बनाए जाते हैं आलू से। तो आलू हमारे जीवन में या हमारे रसोई घर में क्या महत्व रखता है, इसके क्या फायदे हैं या इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे इसके ज्यादा से ज्यादा फायदे हमें मिल सके, इस बारे

आज हम बात करेंगे। वैसे जब शाम के नाश्ते की बात होती है तो सबसे पहले हमारा मन करता है कि आलू के पकोड़े खा लिया जाए या आलू से बनी हुई ऐसे ही किसी नाश्ते की हमें याद आ जाती है। वैसे सबका सबकी पसंद जो है वो अपनी अपनी अलग होती है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस पर हम थोड़ी आलू की बातें करेंगे और इसके अलावा कुछ और भी गीत हम सुनेंगे। सबसे पहले जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं वो है दुल्हन एक रात की। इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज, राजा मेहंदी अली खां के बोल हैं। संगीत किसका है ये आप हमें बताइए। धर्मेंद्र और नूतन पर फिल्माया गया ये गाना है।

0: उनको देखा तो मौसम सुहाना हो गया। जी हाँ, शाम का वक्त हो और अगर आपको पता चले कि आपकी पसंद का आलू का बना हुआ कोई बहुत ही मज़ेदार नाश्ता आपके सामने आया है तो आप भी यही कहेंगे ना कि उनको देखा तो दिल उस पर आ गया है। मदन मोहन का इसमें संगीत है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आलू सब्जियों का राजा है और वो हर किसी के साथ मिलकर बनाया जा सकता है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि बेफिक्र और रूमानी शाम की याद दिलाती है आज की इबारत। इसे पढ़कर मन में एक चुलबुली और हास्य से भरी तस्वीर उभर रही है जिसमें खुद से बातें करते करते अचानक से शायरी और फिर खाने पीने की चीजों जैसे कि ठंडे पानी, समोसे, बर्फी पर आ जाते हैं। ये बोलचाल की भाषा का बहुत ही प्यारा और अनूठा मिश्रण है जो कह रहा है कि जीवन की उलझनों को भी हंसी मजाक के चाशनी में डुबोकर आसान बनाया जा सकता है। जिंदगी में चाहे जितनी समस्याएं हो, हंसी मजाक का स्वाद कभी कम नहीं होना चाहिए। अंत में गुजरे हुए उन सुनहरे दिनों की याद इस पूरी इबारत को एक बहुत ही भावुक और प्यारा सा मोड़ दे देती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि हर रोज हसीन शाम को इतने लू वाली गर्मी है, शाम को ऑफिस से आने के बाद ठंडे ठंडे पानी से दोबारा शावर में नहाना ही पड़ता है, उसके बाद ही आगे की दिनचर्या शुरू हो पाती है और हम थोड़े से रिलैक्स हो पाते हैं। तो चलिए आपके दिल दिमाग को हम थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं क्योंकि गर्मी ज्यादा है और ठंडे पानी से नहाने का इसमें जो मजा है वो तो और भी है ही। पति पत्नी और वो इस फिल्म का गाना महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, रविन्द्र जैन का संगीत।
1: ठंडे ठंडे पानी से नहा

कह दो के आ रहे हैं साहब नहा रहे हैं।

आलू से बना हुआ कोई स्वादिष्ट नाश्ता जब आपके घर में बन रहा हो तो उसकी सुगंध चारों तरफ फैल जाती है, और जब वो सुगंध फैलती है तो ऐसा भी कभी होता होगा ना कि आसपास में आपके कोई पड़ोसी, आपके कोई नाते रिश्तेदार, आपके कोई दोस्त आपका दरवाजा खटखटाते होंगे और पूछते होंगे भाई आज क्या बन रहा है। एक साथी लिख रहे हैं, आलू वो सादगी है जो हर स्वाद में रंग भर देता है, इसलिए हर घर की रसोई में उसकी खास जगह होती है। हर सब्जी उसका साथ पाकर और भी स्वादिष्ट हो जाती है।

बताती है आलू सच में रसोई का राजा है। आलू न दिखावे में बड़ा है न नाम में, लेकिन काम में सबसे बड़ा है। यही उसकी असली पहचान है, जो हर मौसम हर सब्जी और हर थाली में फिट हो जाए वही असली राजा कहलाता है। आलू, आलू की कहानी सादगी की जीत है, कम में भी सबसे ज्यादा स्वाद देने की कला है। एक साथी लिख रहे हैं कि आज मैं आलू की टिक्की बना रही हूँ। एक साथी लिख रहे हैं कि मुझे बटाटा वड़ा और फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद है। और एक हमारे साथी जो है उन्होंने हमें अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस की शुभकामनाएं दी है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू की खोज दक्षिण अमेरिका में हुई थी और आलू की कहानी वहीं से शुरू हुई थी। एक साथी लिख रहे हैं कि आज आलू की बात चल रही तो आलू के पराठे, समोसे, पकौड़े से लेकर चिप्स पापड़ तक सभी का स्वाद निराला है। सुबह सुबह आलू के पराठे मिल जाए, दोपहर में आलू की सब्जी और पूरी मिल जाए और शाम को समोसे मिल जाए तो कहना ही क्या। ये सिर्फ आलू ही नहीं, ये हमें सिखाता है कि हमें सब के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। जैसे आलू हर सब्जी में मिलकर इसका स्वाद बढ़ा देता है, वैसे ही हमें जीवन में होना चाहिए, सबके साथ मिलकर चलना चाहिए ताकि हमारा महत्व हमेशा बना रहे। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू के बिना भारतीय रसोई अधूरी है। यद्यपि आज आलू भारतीय रसोई का एक अभिन्न अंग बन गया है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से भारतीय मूल की सामग्री नहीं है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू महज एक सब्जी नहीं, ये एक एहसास है, ये वो निश्चल साथी है जो हर दूसरी सब्जी के साथ अपनी पहचान मिटाकर घुल मिल जाता है। कभी वह गोभी के साथ जुगलबंदी करता है तो कभी मटर के साथ मिलकर एक नया स्वाद रचता है। वह किसी राजा के थाल का हिस्सा भी है और एक गरीब की झोपड़ी में तसल्ली का निवाला भी है। और एक साथी लिख रही है कि मुझे तो पता ही नहीं आज आलू दिवस है, आज अजीब संयोग बना है, आज हमारी श्रीमती जी ने आलू के पराठे बनाए हैं, दही के साथ सेवन कर रहे हैं हम। बहुत धन्यवाद आपका। एक साथी लिख रहे हैं कि बेहद खूबसूरत गीत के साथ शुरुआत की है। वैसे आलू दिवस पर हमारे यहाँ आलू पालक टमाटर की सब्जी बनी है, मुझे आलू बहुत ज्यादा पसंद है और बच्चों को भी ये बहुत पसंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए कि आपका दिल आलू से बनी हुई कौन सी रेसिपी पर सबसे ज्यादा आता है? कौन सी रेसिपी है जब आप ये कहते हैं कि ये दिल मुझे बता दे कि क्या खाऊं और क्या नहीं खाऊं? भाई भाई फिल्म का गाना, गीता दत्त की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत, अशोक कुमार और श्यामा पर फिल्माया गया गाना।

तो बताया क्या आपने कि आपका दिल आलू से बनी हुई कौन सी चीज पर आ गया है। बहुत सारे श्रोताओं ने इतनी सारी बातें लिखी है, लिखते हैं कि लाल टमाटर हरे मटर में मंडी चलने की ठानी, आलू भी तैयार हो गया साथ चली गोभी रानी। मुझे आलू इसलिए पसंद है कि वो सभी के साथ बहुत अच्छी तरह एडजस्ट हो जाता है, इसीलिए सबको आलू भाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि आज भी लंच में दही वाले आलू बनाए हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि उदयपुर जिले में फतेह स्कूल के पास में एक जगह है जहाँ के आलू बड़े बहुत फेमस है। मैं कल परीक्षा देने जा रहा हूँ, जरूर वहां के स्वादिष्ट आलू बड़ों का आनंद लूंगा। और एक साथी लिख रहे हैं कि इबारत कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया आपने, आज आलू दिवस पर गीतों का मजा मिलेगा। और लिखा है कि आलू दुनिया के हर कोने में मिलते हैं, आलू बिना कोई रसोई बन नहीं सकती, ये सभी सब्जियों में मिक्स हो जाता है। चिप्स और पराठा तो आलू के ही स्वादिष्ट होते हैं, खिचड़ी और तहरी में मिलाकर उसका टेस्ट भी बदल दिया जाता है जो सबको पसंद आता है। अब तो मिठाइयों में भी आलू का प्रयोग होने लगा है, समोसा तो बिना आलू के बन ही नहीं सकता, आलू की पकौड़ी तो चटनी के साथ गर्मा गर्म खाने में बड़ा ही मजा आता है। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू कार्बोहाइड्रेट और ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है, आलू पौधे का भूमिगत तना होता है, जड़ नहीं होता है। एक साथी ये लिख रहे हैं कि आलू सब्जियों के राजा है, पर मैं तो कहूंगी रसोई की रानी है। एक माँ जानती है कि बच्चों को कैसे सब्जी खिलाना पड़ती है, आलू के साथ कुछ मिला दो तो खा लेते हैं। और हमारा जो बिहारी खाना है वो तो बिना आलू के पूरा ही नहीं बनता है, दाल भात चोखा लिट्टी चोखा, और अगर आलू नहीं है तो ये व्यंजन अधूरा है। संक्रांति में दही चूड़ा, उसके साथ आलू दम, सफर में जाना है पूरी के साथ आलू की भुजिया, बरसात के दिनों के लिए आलू का सूप होता, अतिथियों के लिए आलू के चिप्स, सर्दियों में आलू के अचार। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि आलू सब सब्जियों के साथ घुल मिल जाता है, और अपने यहाँ आलू का रायता बहुत पसंद किया जाता है जो दही के साथ बनाया जाता है। और एक साथी ने हमारे ये बात लिखी है कि अगर ठंडे ठंडे पानी से ही नहाना था तो सूरज को और पास क्यों बुलाना था। बात तो आपकी सही है, लेकिन अगर इस गाने में अगर आप गौर करेंगे तो एक लाइन आती है कि आलू टमाटर का साग। जी हाँ, जब बहुत भूख लगी हो तो आलू टमाटर का जो साग होता है ना, वो हमारे मन को कितना ललचाता है, ये इसमें दिखाया गया है, इसीलिए हमने इस गाने को चुना है। तो सुनिएगा आप ये गाना। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू साधारण सा दिखता है लेकिन हर रसोई की जान है, हर मसाले और हर सब्जी के साथ मिलकर स्वाद दो गुना कर देता है, इसलिए उसे सब्जियों का राजा कहा जाता है। जिस थाली में आलू हो वो थाली अधूरी नहीं लगती, वो हर स्वाद को पूरा करने की ताकत रखता है। आलू की खासियत यही है कि वो खुद में सादा होकर भी हर व्यंजन को खास बना देता है। चलिए आगे बढ़ते हम, और बैराग फिल्म का गाना आप

सुनवाते हैं। ऐसा कभी होता होगा ना कि आपने फरमाइश की है कि मुझे आलू से बना हुआ समोसा खाना है, लेकिन बन कुछ और जाता है, आलू के पकोड़े बन जाते हैं या आलू की टिकिया बन जाती है, तो आपके दिल में यही आता होगा ना कि अरे मैंने तो ये बनाने के लिए कहा था पर आज तो ये बन गया है, कुछ अलग ही हो गया है। चलिए ऐसा ही कुछ गाना है, सुनते हैं बैराग फिल्म से।

कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि रेसिपी कौन सी बनने वाली होती है और क्या बन जाती है, हम कोशिश करते हैं एक नई चीज कुछ बनाने की और कुछ और बनाने का सोचते हैं, लेकिन वो बन नहीं पाता, कुछ और ही बन जाता है। हो सकता है कि वो उससे ज्यादा स्वादिष्ट, और कभी कभी वो स्वाद जिसकी हम उम्मीद रखते हैं वो कभी नहीं आता है, तो भी मन बड़ा खिन्न हो जाता है। एक साथ ही लिख रहे हैं कि आलू को ध्यान से खाओ, क्योंकि आलू बाहर से ठंडा होता है लेकिन अंदर से गर्म होता है। एक साथ ही लिख रहे हैं कि आलू ज्यादा खाओगे तो आलू जैसे हो जाओगे और लौकी खाओगे तो लौकी जैसे बनोगे। एक साथ ही लिख रहे हैं कि आज सचमुच संयोग है, मैंने आज आलू के पराठे ही बनाए, पतिदेव को बहुत पसंद है मक्खन और अचार के साथ। एक साथ ही लिख रहे हैं कि आलू की लौंज एक प्रकार की मिठाई है। और एक साथ ही लिख रहे हैं कि सर्दियों में नए आलू को मिट्टी की हांडी में जिसमें आग तपती

साथ। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू की लौंज एक प्रकार की मिठाई है, और एक साथी लिख रहे हैं कि सर्दियों में नए आलू को मिट्टी के हांडी में जिसमें आग तपती उसमें रख देते हैं, उस पके आलू खाने का अलग ही आनंद और स्वाद है। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की आप सभी को बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई इसके भी दिन बहुरे हैं और वो भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू के भल्ले भी बड़े स्वादिष्ट होते हैं, दही भल्ले की तरह ही। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू और दाल की बड़ी की चटपटी भाजी बहुत पसंद है, और तो और मैंने आपका कार्यक्रम सुनकर श्रीमती जी से वही भाजी का आग्रह किया और उन्होंने भोजन बन जाने के बाद भी मेरी फरमाइश के अनुरूप मुझे भाजी बनाकर वो दे रही है। एक साथी लिख रहे हैं कि किसी पड़ोसी ने तो दरवाजा नहीं खटखटाया, पर हाँ कई बार हमारी बेटी और उसकी सहेलियों ने जरूर कहा कि बाहर से अंदर आते ही कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है आलू बेसन की, क्योंकि हम जब सैंडविच के लिए मसाला तैयार करते हैं तो उसमें अहम भूमिका तो आलू की होती है, पर उस पर और भी कई चीजें डाली जाती है। सबसे तेल, फिर उसमें थोड़ा जीरा, सौंफ और खड़ा धनिया, और फिर थोड़ा सा बेसन डालकर भुनना, फिर अमचूर या नींबू डालकर उसमें उबले आलू को डालना, और फिर कहीं जाकर इस मसाले को ब्रेड में डालकर सेकना, तब जाकर सबको खिलाना, और फिर उसके बाद सबकी तारीफ पाना। एक साथी लिख रहे हैं कि बंगाल का आलू, बिहार और मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें आलू से बनाई जाती है, उसके बारे में इन्होंने लिखा है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आजकल थोड़ा मौसम का मिजाज ठंडा है, बारिश हो जाने से प्याज की पकौड़ी, समोसे और कुछ गर्म नाश्ता खाने का मन करता है। मौसम के साथ जुबान का मिजाज भी बदल जाता है तो अच्छा खाने का मन करता है, चाहे जितनी भी गर्मी हो, पर बाजारों में चाट के ठेलों पर खूब भीड़ होती है, आलू की टिक्की समोसे बहुत खाए जाते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब आलू का जो आकार होता है गोल गोल होता है, लेकिन एक लंबे आकार की भी चीज होती है, और उसके बारे में भी बहुत सारी बातें इस गाने में कही गई है, तो उसे भी हम सुन लेते हैं। जोड़ी नंबर वन इस फिल्म का गाना है, प्रतीक जोसेफ की आवाज है, इन्हीं का लिखा हुआ गाना है। संगीत किसका है ये आप हमें बताइए।

जोड़ी नंबर वन इस फिल्म का ये गाना आपने सुना, इसमें संगीत हिमेश रेशमिया का, और बड़े दिलचस्प अंदाज में इन्होंने जो है जीवन का फलसफा वो सिखाने की कोशिश की गई है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आलू की टिक्की के साथ चटपटी इमली की चटनी ऊपर दही से डाल दे, फिर खाने में स्वाद आ जाता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि व्रत में तो आलू बहुत इस्तेमाल किया जाता है, उबला आलू और दही का रायता, फ्राई में फिंगर चिप्स, हर हाल में आलू बहुत अच्छा लगता है, समोसे तो आलू के बगैर ही नहीं सकते। एक हमारी साथी लिख रहे हैं कि आज ही मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि आलू टमाटर की रसीली सब्जी बनाना, कहते हैं कि डायबिटीज वालों को लाल आलू खाना चाहिए और उबले हुए आलू को 12 घंटे फ्रिज में रखने के बाद खाना चाहिए, जिसमें से आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि कटक का आलू दम दही बड़ा जिस किसी ने खाया उसे कटक घूमने आने का मजा आया। विश्व प्रसिद्ध आलू दम दही बड़ा के स्वाद सभी मुसाफिर के पेट भरने के लिए ये याद किया जाता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि जब हमारे बच्चे छोटे थे तो उनकी फरमाइश होती थी कि फिंगर आलू बनाने हैं, तो सच कह रहे हैं हम बनाते बनाते थक जाते पर वो सब खाते जाते थे, और तो और एक दो दोस्त भी आ जाते, वो दिन भी क्या दिन थे। आजकल तो मम्मी आलू ज्यादा नहीं खाने चाहिए ऐसा कहती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू तो हम लोगों के यहाँ पहले भी बोया जाता था और वो अगस्त सितंबर तक सब्जी का पूरा काम करता था, लेकिन धीरे धीरे जो है इसके कम हो गया है ये। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू भारतीय रसोई की रीढ़ है, इससे यदि इसे सही और संतुलित तरीके से जैसे कि उबाल कर या बेक करके पकाया जाए तो ये सेहत और स्वाद दोनों के लिए बेहतरीन है। आलू भारतीय रसोई का राजा है जिसके बिना हर घर का भोजन अधूरा माना जाता है। स्वाद पोषण और उपयोगिता के मामले में भारतीय व्यंजनों में आलू का स्थान सबसे ऊपर है। आलू वाकई स्नैक्स का राजा है, ये इतना वर्सेटाइल है इसमें कोई भी लाजवाब डिश मिनटों में बनाई जा सकती है। तो फिलहाल अगला जो हम गीत सुनवा रहे हैं उसमें तो केवल आलू टमाटर का जो साग होता है उसे ही कितने इस तरीके से इसमें हम सुनेंगे इस गाने में कि भूख होती है तब तो वो चीज हमें और भी ललचाती है, लेकिन नहीं भी भूख हो तो बोलने का जो अंदाज है इस के बारे में सुनकर ऐसा लगता है कि हाँ आलू टमाटर का साग खा लिया जाए। संगीत किसका है बताइए हमें।

ठंडा पड़ा और पेट में आग है, गर्मा गर्म रोटियां कितना

आलू टमाटर का साग, इमली की चटनी बने, रोटी का दादी सिके ही उस पे असली लगे। आलू टमाटर का साग इमली की चटनी बने, ओ हो रोटी का दादी सिके

उजाला फिल्म का गाना हमने सुना, शंकर जयकिशन का इसमें संगीत है। और ये सही बात है कि जब हम पिकनिक पर जाते हैं तो सबसे ज्यादा जो सब्जी या कुछ चीज बना के ले रहे वो आलू की होती है। आलू की सब्जी और पूरियां, या फिर मसाले वाली पूरियां, या फिर आलू के पराठे, या इस तरह की चीजें हम बना करके ले जाते हैं। या यहाँ तक कि हम जब सफर में जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो भी सबसे ज्यादा जो सब्जी आपको दिखाई पड़ेगी वो आलू की सब्जी ही होगी। एक साथी लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का फरुखाबाद शहर के जो आलू होते हैं वो भारत में नंबर वन तरह के आलू होते हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि पुराने जमाने और आज तक आलू बैंगन की सब्जी सबसे ज्यादा गुजरात के घरों में खाई जाती है। और एक

साथ ही ये भी लिखने हैं कि ज्यादा खाओगे तो एसिडिटी करेगा। जी हाँ, कोई भी चीज हो उसे अति किसी भी चीज की नहीं होनी चाहिए। एक साथी लिख रहे हैं कि छोटे छोटे आलू को जाड़े के दिनों में हर घर में तापने के लिए जो अलाव जलाते हैं उसमें भून कर बच्चे अक्सर कटोरी में नमक उसमें डाल करके खाते हैं, गरम गरम बड़ा टेस्टी होता है। पहले गन्ने की पेराई होती थी तो खोलते कढ़ाई में जब राब तैयार होने को होती थी तो छोटे छोटे आलू को धागे में गूंथ कर कढ़ाई में डाल देते थे। कितना मीठा और टेस्टी वो आलू के लिए जो है हम झगड़ा करते थे। अब तो गांवों में गन्ने की पेराई बंद हो गई है तो मीठा आलू भी अब नहीं मिलता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आजकल लाल आलू बहुत मिल रहे हैं जिनमें कम मात्रा में स्टार्च होता है और भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल्स होते हैं। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू की भाजी, बैंगन का भरता, बोले जी बोलो तो क्या खाओगे, ये एक इस गाने के बारे में इन्होंने लिखा है। और एक साथी लिख रहे हैं कि सबसे सस्ता आलू है, जो सभी सब्जियों के भाव ज्यादा हो जाते हैं तो केवल आलू धनिया डालकर रसदार सब्जी चावल और रोटी के साथ खाने का जो मजा है वो बड़ा आता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आज आलू की बातें सुनकर हमारी बेटी ने भी फरमाइश कर दी कि अभी तो खाना बन गया है तो डिनर में आज मस्त आलू की रसेदार सब्जी जिसमें डाली हो थोड़ी सी केरी और उसके साथ हो जाए थोड़े से जीरा राइस, ऐसा इन्होंने लिखा। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू की बात हो रही तो मुझे चूल्हे की आंच में सेक कर आलू बहुत पसंद आते हैं। जब कभी लंबी यात्रा पर जाता हूं तो मम्मी हमेशा ही आलू के पराठे और आलू की चटनी ही रखती है जो सूखी रहती है और आसानी से हम ले जा सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब हम आलू की बातें तो हम कर रहे हैं, उसे चटपटे व्यंजन भी, लेकिन हो सकता है कि हमारे कई साथी हो जिन्हें कुछ मीठी चीजें भी पसंद हो, जैसे बर्फी वगैरह, इस तरह की चीजें भी तो उन्हें पसंद आती है। या फिर आलू से भी हम आलू की बर्फी भी बना सकते हैं। कई साथियों ने हमारे लिखा है कि आलू का हलवा बनाया जाता है, आलू की बर्फी भी बनती है। तो चलिए एक गाना सुन लेते हैं, बर्फी फिल्म का, स्वानंद किरकिरे के बोल, प्रीतम का संगीत है, आवाज किसकी है आप बताइए।

मोहित चौहान की आवाज में ये गाना आपने सुना। हमारे एक साथी की बात है कि आज अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस है। आलू को हम सब्जियों का राजा कह सकते हैं, एक ऐसी सब्जी जिसके सहारे हम कोई भी उत्सव मना सकते हैं, कोई भी त्योहार की शान बढ़ा सकते हैं। सब्जियों को खाने में मुंह बिगाड़ने वाले बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। गोभी आलू, मटर आलू, परवल आलू, कटहल आलू, टमाटर आलू, किसी भी कॉम्बिनेशन में सुपर हिट है। आलू समोसे में आलू, पराठे में आलू, पकौड़े में आलू। और एक साथी ने हमारी ये लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र ने आलू के महत्व को समझाने के लिए हर साल 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के रूप में घोषित किया है। इस साल की थीम है, जहां आलू उगते हैं वहां आजीविका फलती फूलती है। और ये थीम ग्रामीण अर्थव्यवस्था और छोटे किसानों को सहारा देने में आलू की भूमिका को रेखांकित करती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि माँ के हाथ के बने आलू के पराठों का स्वाद अब कहाँ मिलेगा, आज आपने माँ की याद दिला दी। और एक साथी लिख रहे हैं कि भंडारे में आलू पूड़ी खाने का स्वाद तो खाने वाला ही जानता है। और एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि मेरी बेटी पूना के एक घर में रहकर पढ़ रही थी, मैं कभी कभार 10-15 दिन के लिए जाती थी। उसकी सहेलियों को बहुत आलू के भरवा पराठे और दही का रायता बनाकर खिलाया था। आए दिन यही फरमाइश उनकी होती थी। चलिए धन्यवाद आपका। मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी इस फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं, और देव कोहली के बोल हैं, अनु मलिक का इसमें संगीत है।

मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी फिल्म का ये गाना हमने सुना, और सचमुच जब समोसे की बात आती है तो ज्यादातर उसमें आलू ही डाल करके बनाया जाता है। आलू के बगैर समोसे का मजा हमें तो नहीं आता है। हो सकता है बहुत सारे साथी हमारे इस बात से इत्तेफाक रखते हों। एक साथी हमारे लिख रहे हैं, उन्होंने आलू बोने का सबसे अच्छा तरीका जो है उसके बारे में बहुत विस्तृत विवरण लिखा है। पूरा तो हम आपको नहीं सुनाएंगे, लेकिन हाँ अगर आप चाहें तो ये बात आपके काम की हो सकती है कि उन्होंने लिखा है कि सबसे अच्छा तरीका यह कि खेत में 3-4 बार गहरी जुताई करके और मिट्टी को भुरभुरा और समतल बना ले, बुआई से पहले बीजों को फफूंद नाशक जैसे कि कार्बेंडाजिम से उपचारित करें और बीज को मेड़ों पर 5 से 7 सेंटीमीटर की गहराई में रोपे, जहां लाइन से लाइन की दूरी सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी इतने सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बारे में बहुत विस्तृत विवरण इन्होंने लिखा है जो हो सकता है कि आपके काम का हो। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि एक ही इबारत रहती है, ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसे किस नजरिए से देखते हैं। किसी को इसमें बहुत कुछ अच्छा नजर आता है और किसी को इसमें कुछ बिल्कुल नहीं भाता है। तो ये हमारी सोच पर निर्भर करता है कि अब गिलास पानी से आधा भरा है, इसे आधा भरा कहें या आधा खाली कहें, ये हमारी सोच पर है। वैसे सबसे जो अच्छी बात यह है कि इससे हमें बहुत सारे गानों के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए अब बात ऐसी है कि कई बार ऐसा होता है कि हमने अपने जीवन में वो चीजें खाई होती है और हमें अच्छी लगती है, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है जब हमें कोई बीमारी हो जाती है और डॉक्टर कहते हैं कि नहीं आपको आलू नहीं खाना है या मीठा नहीं खाना है या तला हुआ नहीं खाना है, और तब हमारे दिल में एक ही बात आती है कि हाय रे वो दिन क्यों ना आए कि जब आलू की इतनी स्वादिष्ट रेसिपी बनती। चलिए अनुराधा फिल्म का गाना सुनते हैं।

और अब एक बड़ी सुंदर बात, आलू का रस चेहरे पर लगाने से ग्लो आता है, ऑलराउंडर है आलू, ये हमारी एक साथी ने बात लिखी है। और इसी के साथ कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

दोस्तों नमस्कार। आज की त्रिवेणी में बातें होंगी आशा की, उम्मीद की। आशा क्या है? वैसे तो इसे परिभाषित करना या इसका वर्णन करना कठिन है, लेकिन आशा को हम तब पहचानते हैं जब हम इसे महसूस करते हैं और जब हमें इसकी जरूरत होती है। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि आशा है अपने लिए एक बेहतर भविष्य की कल्पना करना और उसे पाने की कोशिश करना। हम सभी के जीवन में आशा का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि ये निराशा से बचाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये एक सकारात्मक भावना है जो विपरीत परिस्थितियों में भी हमें जीवन का अर्थ, उद्देश्य और धैर्य प्रदान करती है। आशा कठिन समय में मानसिक शक्ति बनकर हमें लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। आशा एक भावना है और सोचने का एक तरीका भी। कई बार जब हम हर तरफ से थक हार चुके होते हैं, हमें आशा की कहीं कोई एक किरण कहीं ना कहीं से किसी बाहरी कारण से भी मिलती है, तब हम फिर से ऊर्जा से भर जाते हैं। मुश्किल हालातों से उबरने में आशा की ज्योत जलाए रखना बेहद जरूरी है। आशा को हमें एक इच्छा शक्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमें मंजिल तक पहुंचने में मदद करती है। आशा एक भावना है, एक मानसिकता है, जिसके जरिए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। फिर चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन और प्रतिकूल क्यों ना हो, आशा एक विश्वास ही तो है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा।

आशा का अर्थ है आगे बढ़ते रहना, हिम्मत बनाए रखना और जीवन के अर्थ के साथ हर मुश्किल से उबरने का रास्ता खोजना। आशा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन के बहुत कठिन समय में भी सहारा दे सकती है। यदि हम किसी विपरीत परिस्थितियों में भी आशा का अनुभव करते हैं तो इसका मतलब यही है कि हम सकारात्मक निर्णय लेने की अधिक संभावना रखते हैं। कभी कभी हमारे दिलो दिमाग पर भय और निराशा आशा से कहीं अधिक आसानी से हावी हो जाती है। ये डर हमारे आशा के भाव को कमजोर करने लगते हैं। हालांकि हम अक्सर आशा को व्यक्तिगत स्तर पर देखते हैं, लेकिन आशा को सामूहिक रूप से भी अनुभव किया जा सकता है। राष्ट्र पर जब कोई संकट का समय आता है तब आशा और विश्वास का दामन थामे रहना आगे बढ़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है। आशा हमें भविष्य के लिए बेहतर कल्पना करने और उसे पाने का प्रयास करने के लिए प्रेरित करके जीवन को खूबसूरत बनाए रखती है, जिससे निराशावादी सोच दूर रहती है। आशा।

दोस्तों, विपरीत परिस्थितियों का सामना करते समय यदि मन में आशा हो तो मस्तिष्क अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करता है और हम भी बेहतर महसूस करते हैं। आगे बढ़ते रहने की ये इच्छा शक्ति, जिसे हम उम्मीद या आशा कहते हैं, ये जीवन को गति प्रदान करती है। इसीलिए आशा को बनाए रखने पर बल दिया जाता है। आशा रखने से मन मस्तिष्क बेहतर ढंग से कार्य करता है और हम भी बेहतर महसूस करते हैं। लेकिन याद रखिए कि आशा

0: में आप नहीं मिलती। इसके लिए प्रयास करना पड़ता है और इसे बनाए रखने के लिए हमें स्वयं से परे भी जुड़ना पड़ता है। आशा स्वास्थ्य के लिए एक शक्तिशाली औषधि भी हो सकती है। इसीलिए चाहे हम किसी भी कठिनाई से गुजर रहे हों या चुनौतियों से जूझ रहे हों, पहले से कहीं अधिक आशा की जरूरत है ताकि हम मजबूती से टिके रह सकें। आशा की एक किरण जीवन की मुश्किलों, असफलताओं और बीमारियों से लड़ने की शक्ति देती है, जिससे व्यक्ति हार नहीं मानता। आशावादी दृष्टिकोण से जीवन में बदलाव आते हैं और हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। आशा हमें जीवन का उद्देश्य खोजने में मदद करती है। आशा ही जीवन की वो धुरी है जिस पर समाचार।
1: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित G7 और G13 सीमा चौकियों का उद्घाटन किया। इस दौरान अमित शाह ने घोषणा की कि BSF की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरीके से बदला जा रहा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनते ही सीमा पर फेंसिंग के लिए जमीन का गतिरोध एक हफ्ते में दूर कर लिया गया है।
2: G7 और G13 का लोकार्पण हुआ है। शॉर्ट टावर से लेकर कनेक्टिंग रोड से लेकर पीने के पानी से लेकर मेडिकल सुविधाएं, रहने की व्यवस्थाएं और नई फेंसिंग इंट्रोड्यूस करना हर दृष्टि से एक लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड बनाने के लिए हमने कार्य योजना बनाई थी और 2 साल में हमारा वल्नरेबल दिखता हुआ क्षेत्र दुश्मन की बुरी नजर से हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा।
1: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने 2 दिनी जम्मू कश्मीर के दौरे के अंतिम दिन आज श्रीनगर में हैं। वे यहां स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे और लोकभवन श्रीनगर का दौरा भी करेंगे। उन्होंने कहा है कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के प्रबंधन का अध्ययन कर वे मध्यप्रदेश को धार्मिक पर्यटन का मॉडल स्टेट बनाएंगे। सीएम डॉक्टर यादव आज शाम को भोपाल वापस आ जाएंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। सेना प्रमुख पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित कर रहे थे। इस बार रक्षा अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। साथ ही मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी ये डिग्री प्रदान की गई है। छतरपुर में ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए जिला प्रधान न्यायाधीश रविन्द्र सिंह और कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश राजेश देवालिया आज साइकिल से अदालत पहुंचे। न्यायाधीश ने बताया कि अब प्रत्येक शनिवार सभी न्यायिक अधिकारी साइकिल से ही न्यायालय आएंगे ताकि आमजन को ईंधन बचत और स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रेरित किया जा सके। ऐसा करना दरअसल पर्यावरण के लिए अनुकूल है और हम अपने देश हित के लिए भी काम कर सकेंगे। स्वास्थ्य और शिशु कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 जारी कर दिया गया है। इसमें भारत में मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण और वित्तीय सुरक्षा के क्षेत्र में हुई तीव्र प्रगति के आंकड़े दर्शाए गए हैं। मंत्रालय ने यह सर्वेक्षण 2023-24 में संचालित किया था। और अब बात मौसम की करते हैं। मध्य प्रदेश में नौतपा के बीच मौसम का अनोखा रूप देखने को मिल रहा है। प्रदेश का आधा हिस्सा जहां भीषण गर्मी और लू की चपेट में है, वहीं बाकी आधे हिस्से में तेज आंधी और बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि का भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, भिंड और मंदसौर सहित प्रदेश के 9 जिलों में ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 8 जिलों में लू की भी चेतावनी है। हाल ही में हुई बारिश के कारण प्रदेश के ग्वालियर और दतिया जैसे शहरों के तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस तक की भारी गिरावट आई है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। सीहोर जिले में स्कूल चले हम अभियान के तहत शिक्षा पुंज .2 नवाचार जारी है। कलेक्टर के निर्देश पर अक्षर साथी घर घर जाकर ड्रॉप आउट बच्चों को दोबारा शाला से जोड़ रहे हैं। आगरमालवा जिले में माहवारी स्वच्छता दिवस पर ग्राम खेरिया और कानड स्वास्थ्य केंद्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। किशोरियों को इस दौरान स्वच्छता, एनीमिया से बचाव और पौष्टिक आहार की जानकारी दी गई। भोपाल जनजातीय संग्रहालय में कल संभावना कार्यक्रम होगा। इसमें राजगढ़ का मालवी गायन, नर्मदापुरम का कबीर गायन और डिंडोरी का गुदुम बाजा

0: से प्रस्तुत किया जाएगा। और रतलाम जिले में गुलाब चक्कर पर साहित्यिक संगम कविताई शब्दों के शान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें नए रचनाकारों ने देशभक्ति, मातृप्रेम और नारी शक्ति पर मंत्रमुग्ध करने वाली प्रस्तुति दी। इस बुलेटिन में अभी इतना ही, अगला बुलेटिन सुने शाम 7:10 पर। इजाजत दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिन आउंग लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव।
2: बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा, अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करेगा। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
3: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
2: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवक के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
4: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
2: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांगिला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड्स की रक्षा मंत्री डिलेन एसेलगो जिगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यह भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिन आउंग लाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।
5: म्यांमार के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गया जी एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद

0: यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाएंगे विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्टमंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
1: राष्ट्रपति ओमी नाउलाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से भी वो मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति ऊ सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है।
2: आज डीके शिवकुमार राज्यपाल तावर चंद गहलोत से मिले। स्वेयरिंग इन सेरेमनी के दिनांक और जगह के बारे में चर्चा करने वे लोक भवन गए थे। इस बार युवा विधायकों को अवसर मिलने की संभावना है। अगले महीने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने के कारण जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का प्रक्रिया समाप्त करने पर गौर किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: कांग्रेस के 136 विधायकों को विधानसभा बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह गुर्जेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण एसआईआर अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि उसके साझेदार टीसीएस की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की शुरुआत देरी से हुई। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो, परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 बजे से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3 बजे के बजाय 4 बजे से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,46,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि गोवा इस बात का प्रेरणादायी उदाहरण है

0: ये पहचान और प्रगति साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकती हैं? पणजी के कला अकादमी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा ने आधुनिक विकास को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा है। गोवा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक सद्भाव और बुद्धि खुलेपन से निर्मित एक जीवंत सभ्यता है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, स्मारक डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किए, पुरस्कार और नियुक्ति पत्र वितरित किए तथा दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई सहायता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित गोवा आवश्यक है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका की सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमेरिका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे की बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। सिचुएशन रूम में हुई बैठक को स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तटीय कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओले पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
2: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ ये सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1827 को उदंत मार्तंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ, जिसमें श्री शुक्ल ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिनकर दिन अब अंत। समाचार पत्रों से शुरू हुआ सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिंट नाउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं

0: में 7 लोगों की मौत। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आशिक फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं मुकेश की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, संगीत है शंकर जयकिशन का।

प्रस्तुति कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आशिक फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं मुकेश की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अपना बना के देखो ये फिल्म का नाम है। आशा भोंसले और साथियों की आवाजें, SH बिहारी के बोल, संगीत है रवि का।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवानी अपनी, थी धन्य वो उनकी जवानी।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आजाद फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
1: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: बाजे घुंघरू फिल्म का ये गाना आपने सुना, मोहम्मद रफी, सबिता बनर्जी, सीता और साथियों की आवाजों में, शिवराज श्रीवास्तव का लिखा हुआ गाना, धनी राम का संगीत। अगला गाना बात एक रात की, इस फिल्म का गाना हेमंत कुमार और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है एसडी बर्मन का।
1: लगता है कुछ ऐसा

सदाबहार रंग में कार्यक्रम का अगला गाना आपको सुनवाते हैं, बगदाद की रातें। इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, प्रेम धवन के बोल, संगीत है डी दिलीप का।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, बनारसी ठग। इस फिल्म का ये गाना है, लता मंगेशकर की आवाज, प्रेम धवन का लिखा हुआ गाना, संगीत है इकबाल कुरैशी का।

इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। इस कार्यक्रम में हम आपको वो गीत सुनवाते हैं जिसमें हमारे श्रोताओं ने पत्र लिख करके हमें उस गाने को सुनने की फरमाइश भेजी है। तो पहला जो गीत है ये दिल फिल्म का गाना उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में समीर का लिखा हुआ गाना आनंद मिलिंद का संगीत है। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है समसुद्दीन की बाड़ी पूरा बीकानेर राजस्थान से। ये पत्र आया है हमारे पास मन्नत खान, समारा खान, मोहम्मद अनजान, सैफ अली, कमाल खान, मरियम बानो और मोहम्मद अली। आपकी पसंद का ये गाना सुनिए।

मन चाहे गीत कार्यक्रम का अगला जो गीत है ये अपराध फिल्म का गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में इंदिवर के बोल हैं, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है ग्राम हीवरखेड़ तहसील तेलहारा जिला अकोला महाराष्ट्र से विनोद कुमार अड़िया, भारती अड़िया, पारस पायल श्वेता और उर्वी बेन अड़िया ने।

0: जिला अहमदनगर बालम टाकली से नंद कुमार अदवंत, उर्मिला नीलेश मयूरी, कल्पेश और संगीता अदवंत। आपने जिस गाने की फरमाइश की है वो है मर्यादा फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने, धुन बनाई कल्याण जी आनंद जी ने।
1: तू भी आ जा के आ गई रुत मस्त।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला जो गीत है ये खानदान फिल्म का गाना आशा भोंसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में है। राजेंद्र कृष्ण के बोल है, संगीत रवि का। ये गीत सुनना चाहते हैं रामलीला मैदान सचेंडी से बाबा शिवानंद त्रिपाठी, शशि त्रिपाठी, मनु मनी, मीत, शिवांश, अनूप सिंह और अभिजीत सिंह। आपकी पसंद का ये गाना सुनिए।

अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कच्चे धागे फिल्म का गाना। 1999 की फिल्म है ये कच्चे धागे। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजें, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना, नुसरत फतेह अली खान का संगीत है। इस गाने को सुनने के लिए फरमाइश हमारे जिन श्रोताओं ने लिख भेजी है वो है गर्ल्स स्कूल रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता, गोलू, नीलू, विशाल राज और वंशराज। आपकी पसंद का कच्चे धागे फिल्म का ये गाना।

मनचाहे गीत कार्यक्रम में अब जिन श्रोताओं के पसंद पर हम ये गीत सुनवा रहे हैं वो हैं रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा और सोमनाथ कालिया। आप सुनना चाहते हैं धर्मात्मा फिल्म का गाना मुकेश और कंचन की आवाजों में। इंदिवर के बोल हैं संगीत कल्याण जी आनंद जी का। आइए सुनते हैं धर्मात्मा फिल्म का गाना।

प्रस्तुत है नाट्य तरंग। नाट्य तरंग कार्यक्रम में आइए सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का पहला भाग। ये है मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। सुनिए इस नाटक का पहला भाग।

0: हेलो
1: जी,
0: इस तरह टकटकी लगाकर आकाश की ओर क्या देख रही हो?
1: आप मेरी ओर क्यों देख रहे हैं?
0: ऐसे ही।
1: मैं भी बस ऐसे ही बाहर देख रही हूँ।
0: क्या नाम है आपका? मेरा मतलब है, आप कौन हैं?
1: आप कौन हैं?
0: मैं जेल का अध्ययन करने आया हूँ।
1: और मैं जेल में सड़ने आई हूँ।
0: ये तो देखते ही मालूम हो गया था।
1: लेकिन आपको देखकर तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं हुआ। आप कौन हैं?
0: मैं एक नाटककार हूं। मैंने मलयालम भाषा में कई नाटक लिखे। इस बार मैंने जेल की पृष्ठभूमि पर नाटक लिखने का निश्चय किया है। इसी सिलसिले में आपके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं।
1: आप दूसरे कैदियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं?
0: कोशिश कर रहा हूं। हाँ, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं।
1: मेरा नाम डेजी है।
0: डेजी?
1: क्या हुआ?
0: मुझे मुझे कुछ याद आ रहा है।
1: क्या?
0: कुछ महीने पहले मैंने अखबार में पढ़ा था, डेजी नाम की युवती को सेशंस जज ने सजा दी थी। तुम आप वही डेजी है ना?
1: हाँ।
0: आपने हाई कोर्ट में अपील नहीं की?
1: अपील तभी की जाती है जब सजा पाने वाले को कोई शिकायत हो।
0: आपकी बातें बड़ी विचित्र लग रही हैं।
1: मेरी कहानी भी बड़ी विचित्र है।
0: क्या आप इस सब के लिए अपने को दोषी मानती हैं?
1: दोष परिस्थितियों का है या मेरे भाग्य का, जिसने मुझे उन परिस्थितियों में डाल दिया, कह नहीं सकती।
0: आपकी कहानी जानने के लिए बहुत उत्सुक हो उठा हूं। क्या आप?
1: मैं सुनाऊंगी आपको अपनी कहानी। एक साधारण देहात के गरीब घर में मेरा जन्म हुआ। मैं छोटी ही थी कि मेरे पिता चल बसे। खेतों में मजूरी करके और इधर उधर के छोटे मोटे काम करके मेरी माँ ने मुझे पाला पोसा, बड़ किया। हायर सेकेंडरी की परीक्षा मैंने फर्स्ट डिवीजन में पास की। मैं चाहती थी कि पढ़ाई जारी रखूं और कोई डिग्री या डिप्लोमा ले लूं। संयोग से तभी एक वैभव संपन्न युवक बेनी से मेरा परिचय हुआ। उन्होंने मुझसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। बेनी देखने में सुंदर नहीं थे, रंग भी उनका काला था, किंतु मन से वो बहुत सुंदर थे। हम दोनों का विवाह हो गया। बेनी ने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया कि विधाता को जैसे मेरे सौभाग्य से ईर्ष्या होने लगी। एक दिन सहसा उनकी छाती में एक विचित्र ही प्रकार का दर्द उठा और वो बेहोश होकर गिर पड़े। जब उन्हें इस तरह के दो तीन अटैक और हुए तो उन्हें मर्सी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया।
2: ओह, डॉक्टर रामदास। गुड मॉर्निंग डॉक्टर।
3: गुड मॉर्निंग बेनी। गुड मॉर्निंग।
2: कौवी तबीयत कैसी है?
3: बीच बीच में कभी कभी सीने में थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन थकान बहुत है डॉक्टर।

0: चिंता की कोई बात नहीं, अब डॉक्टर लॉरेंस तुम्हें एग्जामिन करेंगे। वो आज छुट्टी से वापस आ रहे हैं।
1: क्या ऑपरेशन होगा डॉक्टर?
0: क्यों, ऑपरेशन से डर लगता है क्या?
1: नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था।
0: क्या करने से तुम्हें आराम होगा ये निर्णय वही लेंगे। उन्होंने विदेश में शिक्षा पाई है और सर्जरी में स्पेशलाइजेशन किया है। अरे ये क्या, गिटार? गुड, कितना मधुर स्वर है इसका। बिनी, इसे बजाना आता है क्या?
1: डॉक्टर, किसी गुरु से तो शिक्षा नहीं ली है, फिर भी थोड़ा बहुत बजा लेता हूं।
0: बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है।
1: एक तरह से इसमें मेरी जान बसती है।
0: अच्छा,
1: अपनी पत्नी के बाद मैं इसी को सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। पत्नी जीवन में प्रेम भर देती है और गिटार मधुरता।
0: तो दोनों ही दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हुए, क्यों?
2: नमस्ते डॉक्टर।
0: ओह नमस्ते,
1: कहाँ गई थी तुम?
2: सुना था कि डॉक्टर छुट्टी के बाद लौट आए हैं।
1: अच्छा, तो तुम जल्दी से उनका पता लगाने गई थी।
0: मेरी पत्नी जो ठहरी, उत्कंठा हो सकती है। डेजी, टॉनिक किसके लिए लाई?
1: हम दोनों के लिए।
2: नहीं डॉक्टर, सिर्फ इनके लिए।
1: इसकी बात पर ध्यान ना दीजिए डॉक्टर, खाएंगे तो हम दोनों एक साथ ही खाएंगे, वरना।
0: अच्छा अच्छा, मैं जरा वार्ड हुआ, फिर मिलेंगे।
1: अच्छा,
2: तुमने डॉक्टर रामदास को ये सब क्यों बताया कि हम एक साथ खाते हैं? हम ऐसे हम वैसे।
1: इसमें हर्ज क्या है, सच तो यही है ना?
2: सच होने पर भी अपनी बातों को दूसरों के सामने इस तरह खुल्लम खुल्ला क्यों कहते हो? मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी।
1: इसमें शर्म का है कि क्या? मुझे ये कहना चाहिए था कि हम दोनों में झगड़ा रहता है। देखो डेजी, सत्य किसी के सामने किसी भी समय कहा जा सकता है।
2: अच्छा जी, तब तो एक काम करें, इस कमरे के बाहर एक बोर्ड लटका दें, इस कमरे में रहने वाले पति पत्नी एक दूसरे के गहरे प्रेम में डूबे हुए हैं।

0: डेजी, कल डॉक्टर रामदास ने हमसे एक सवाल पूछा था, तुम्हें ख्याल है?
1: क्या?
0: हमारे बच्चे हैं या नहीं?
1: हाँ, ख्याल है।
0: मुझे याद है, ये सवाल सुनते ही तुम उदास हो गई थी।
1: नहीं तो?
0: नहीं?
1: हाँ शायद। बेनी, बेनी तुम अच्छे हो जाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। बेनी,
0: तुम्हें लगता है मैं ठीक हो जाऊं?
1: हाँ बेनी, बिल्कुल ठीक हो जाओगे मेरे अच्छे बेनी।
0: इधर आओ ना
1: बेनी, ये अस्पताल है।
0: तो क्या हुआ? आओ ना।
1: बेनी, बेनी, बेनी, बेनी, बेनी, क्या हुआ?
0: कुछ दर्द सा हो रहा है।
1: अरे मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ, ले जाओ बेनी, ले जाओ ना तुम। अरे तुम्हारे तो चेहरे पर पसीना आ रहा है।
0: नहीं नहीं नहीं, नहीं। फिक्र मत करो, जरा सी गिरी न से चिंता की कोई बात नहीं।
1: नहीं नहीं, नहीं। मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ।
0: ठीक जी।
1: बेनी, एक बात बताओ।
0: पूछो।
1: तुम्हें सबसे ज्यादा कौन अच्छा लगता है, गिटार या मैं?
0: बताओ। दोनों।
1: मेरा मतलब है कि तुम्हें तुम्हें सबसे अधिक सुख किसमें मिलता है?
0: तुम्हें निहारते हुए गिटार बजाने में।
2: कलाकार
0: तो नहीं, लेकिन कला प्रेमी रोगी हूँ। आप
1: डॉक्टर लॉरेंस है ना?
2: जी हाँ, मैं डॉक्टर लॉरेंस हूँ। तुम बेनी हो ना?
0: हाँ डॉक्टर, तुम लॉरेंस हो ना?
2: हाँ मैं लॉरेंस हूँ।
0: माय गुडनेस, तुमसे अचानक मिलकर मुझे कितनी खुशी हो रही है बता नहीं सकता।
2: और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है।
0: मैं तो तुम्हें पहचान नहीं सका लॉरेंस।
2: मैं ही तुम्हें कहाँ पहचान पाया बेनी।
0: कुछ भी हो, तुम यहाँ अस्पताल में मेरे डॉक्टर के रूप में, मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता।

0: था, मैंने सुना कि अमेरिका से एक फेमस डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर लॉरेंस, तो सोचा कि जरूर कोई कंपिटेंट डॉक्टर होंगे।
1: तो क्या मैं कंपिटेंट नहीं हूँ?
0: मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे वही पुराने दोस्त लॉरेंस हो। सुनो, हमें एक दूसरे से मिले कितने साल हुए होंगे?
1: यही कोई 14 या 15 साल।
0: और तुम मुझे देखते ही पहचान गए, खास तौर पर इस हालत में। गजब की याददाश्त है तुम्हारी। अरे हाँ, मैंने परिचय तो करवाया ही नहीं। लॉरेंस, मेरी पत्नी डेज़ी।
2: नमस्ते।
1: नमस्ते, नमस्ते। तो मैं देखते ही समझ गया था
2: आप आ गए हैं, तो लगता है जैसे।
1: सब वो बातें रहने दीजिए आप। बेनी, पहले बताओ तुम्हें तकलीफ क्या है?
0: चेस्ट में पेन है, दिल की तरफ भी पेन है।
1: वैसे
0: सांस लेने में अक्सर बड़ा कष्ट होता है।
2: ये ठीक से नहीं बताते, बस यही कह देते इन्हें कोई तकलीफ नहीं, इनकी आदत।
1: हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, स्कूल में हम 3 साल एक साथ पढ़े हैं। डेजी
2: जी,
1: मैं इन्हें ठीक करने में कोई कसर नहीं रखूंगा, जो भी जरूरी होगा जरूर करूंगा।
2: थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, आप इनकी बीमारी के बारे में क्या सोचते हैं?
0: डेजी, मेरे सारे रोगों की लिस्ट तुम ही इन्हें दे दो। लॉरेंस, मैंने अपने को डेजी के सुपुर्द कर दिया है।
1: बेनी, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारा कोई तो है जो तुम्हारी हर बात की तरफ ध्यान देता है।
0: हाँ, हूँ सौभाग्यशाली, लेकिन इस 24 घंटे की देखभाल से मेरा दम घुट रहा है।
1: खुद सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इस पर देखभाल से भी दम घुटने लगे तो। हाँ। खैर, जो भी हो भाई, बेनी तुम्हारा कंप्लीट चेकअप करना होगा। अभी तो मैं वार्ड में जा रहा हूँ, बाद में आऊंगा। सही हो गया ना?
0: बाय।
2: भगवान की बड़ी कृपा है जो डॉक्टर लॉरेंस को यहाँ भेज दिया।
0: ये फ्लास्क क्यों ले रखा है?
2: अरे बाबा, मैं तो पानी गर्म करने को रखाई थी, शायद गर्म हो गया होगा, मैं अभी जाकर ले आती। सो रहे हैं क्या?
0: अरे गिरिजा, तुम?
2: आप यहाँ?
0: हाँ, मैं एक बीमार की हैसियत से आया हूँ, सीने में और दिल में दर्द है।
2: दिल में दर्द? जिसके दिल ही नहीं उसके दिल में दर्द?
0: जरा शिष्टता से बात करो।
2: जो शिष्टता का मतलब ही नहीं समझता वो कह रहा है शिष्टता से बात करो।
0: जरा आहिस्ता बोलो।
2: मुझे पहचान लिया आपने?
0: हाँ, पहचाना ही नहीं, इस दौरान बीच बीच में तुम्हें याद भी किया है।
2: अब भी मन में विष भरा है, दूषित विचारों का विष।
0: तुम ऐसा सोचती हो?
2: सोचती नहीं, बल्कि अनुभव से कहती हूँ। मुझे देख पाएंगे इसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्यों?
0: हाँ, ये कल्पना नहीं की थी कि तुम्हें नर्स की ड्रेस में देखूंगा।
2: हाँ, आपने तो मुझे किसी हीन वेश में देखने की कल्पना की होगी। इस कदर गिर तो नहीं गई हूँ?
0: ये तो बहुत ही अच्छी बात है गिरिजा।
2: मैं किसी का आशीर्वाद नहीं चाहती।
0: क्या?
2: आपके पास खड़ा रहना तक मुझे अच्छा नहीं लग रहा।
0: मैं तुम्हारा पेशेंट हूँ गिरिजा।
2: ये तो आज की बात है, उन दिनों तो आप एक चेहरा थे। चेहरा?
0: मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर बात क्या है?
2: आपको ये कहते हुए शर्म नहीं आती?
0: तमीज से बात करो। मैंने ऐसा किया क्या है जो तुम ये सब कह रही हो?
2: अच्छा, 4 साल पहले उस दिन जो कुछ हुआ था आपको याद नहीं? मेरे पिताजी बीमार पड़े थे, उनके प्राण बचाने का कोई उपाय नहीं था। मैं नौकरी की तलाश में आपकी संस्था में गई तो आपके दुष्ट मैनेजर ने मुझे अपनी वासना का शिकार बनाने की कोशिश की। मैंने बाघिन की तरह उसका सामना किया, मेरे कपड़े फट गए, लेकिन वो भाग गया। उसके बाद कमरे में घुस आए आप, लेकिन मैं आपके चंगुल से भी भाग निकली।
0: देखो, मेरी पत्नी सुन रही होगी, प्लीज प्लीज आज चुप हो जाओ।
2: तो मुझे आपकी पत्नी से डरना होगा?
0: प्लीज प्लीज मुझे माफ करो, इस समय कुछ ना कहो।
2: उस दिन मैंने गिरजा और बेनी की बात सुन ली थी, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। उस रात बेनी कुछ अस्वस्थ रही। दूसरे दिन डॉक्टर लॉरेंस ने बेनी का कंप्लीट चेकअप किया, 2 तरह के एक्सरे लिए, ईसीजी लिए, ब्लड और यूरिन टेस्ट हुए। रिजल्ट आने के बाद ही वो कुछ बता सकेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। उन दिनों जब भी मुझे फुर्सत मिलती मैं पास के चर्च में जाकर बेनी की जल्दी ठीक हो जाने के लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन मैं चर्च से लौटी

0: तो सुना बेनी और गिरजा बातें कर रहे थे।
1: मुझे कुछ नहीं कहना है।
2: लेकिन मुझे तो कहना है। कल जहाँ बात रुक गई थी मैं वहीं से शुरू करता हूँ।
1: मैं कुछ सुनना नहीं चाहता।
2: तुम्हें सुनना पड़ेगा। सुनो, तुम जब आई थी मैं ऑफिस में नहीं था। तुम्हारे साथ जो ज्यादती हुई वो मुझे मालूम है। तुम्हें समझा बुझा कर शांत करने और तुमसे माफी मांगने के लिए ही मैं दौड़ा दौड़ा आया था, लेकिन तुम न जाने क्या समझी और मेरी बात सुने बिना चली गई। मैंने आवाज दी मगर तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं। तुम कौन हो ये मैं तुम्हारी एप्लीकेशन पढ़कर ही जान गया था।
1: आप चाहते हैं मैं इन सब बातों पर विश्वास करूं?
2: नहीं, मेरी ओर से कोई ऐसा आग्रह नहीं है। मैंने तुम्हें सच बता दिया है, बस मेरे लिए इतना ही काफी है।
1: आप इतने ही सज्जन और भले मानस होते तो मुझे बुलाकर नौकरी ही नहीं दिला देते।
2: हाँ, लेकिन उस बीच कुछ ऐसी विचित्र घटनाएं हुई कि मुझे इसका अवसर ही नहीं मिला। उसी दिन मैनेजर को नौकरी से हटा दिया गया। बाद में मैंने वो ऑफिस ही बंद कर दिया। आज ना वो संस्था है ना वो ऑफिस।
1: अच्छा।
2: हाँ अच्छा, ये बताओ तुम्हारे पिता ऑपरेशन के बाद भी कई दिन अस्पताल में रहे थे या नहीं?
1: हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ?
2: कितने रुपए खर्च हुए?
1: करीब 600। लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति पर तरस खाकर अस्पताल वालों ने वो रकम माफ कर दी थी।
2: माफ नहीं की थी गिरिजा, सारी रकम मैंने चुकाई थी। तुम्हें बिना सूचना दिए चेक भेज दिया था। चाहो तो अब भी पता लगा सकते हो। डिस्चार्ज होकर बाहर जाते वक्त तुम्हारे पिता के हाथ रुपए भी मैंने रखवा दिए थे।
1: क्या?
2: हाँ, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था। तुम्हारी वेदना देखकर मेरा मन दुखी हो उठा। मुझे लगा कि तुम्हारी इन मुसीबतों के लिए मैं भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हूं, इसलिए मैंने ये सब किया। फिर एक दिन सुना तुम और तुम्हारे पिता दोनों ही कहीं चले गए। उसके बाद कल तुम्हें देखा।
1: मैं ये सब नहीं जान पाई, गलती हो गई, मुझे माफ करें।
2: माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं गिरिजा। मैंने जो कुछ भी किया वो अपना कर्तव्य समझकर किया। चेहरा कुरूप होने पर भी मेरा मन कुरूप नहीं है।
0: गिरिजा चली गई, लेकिन उनकी बातें सुनकर मेरे मन में बेनी के प्रति कितनी श्रद्धा, कितना आदर, कितना प्यार और उमड़ आया, कह नहीं सकती। दूसरे दिन डॉक्टर लॉरेंस जांच की रिपोर्ट लेकर आए। क्या हुआ डॉक्टर? टेस्ट में क्या निकला? कोई खास बात?
3: वो बेनी कहाँ है?
0: चेरिन के पास गए हैं, अभी आते होंगे। डॉक्टर, सारी रिपोर्ट्स आ गई ना?
3: हाँ डेजी, सारी रिपोर्ट्स आ गई।
0: कोई खास बात बताइए ना डॉक्टर।
3: डेजी, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। बेनी के हार्ट के एक वॉल्व में गड़बड़ है। वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। अगर वॉल्व बंद हो गया तो उसकी सांस रुक जाएगी और ऐसी इमरजेंसी किसी वक्त उठ सकती है। जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना होगा इसी हफ्ते में। हाँ डेजी प्लीज, बेनी से कुछ नहीं कहना। मेजर ऑपरेशन है, लेकिन मैं अपनी पूरी जान लड़ा दूंगा।
0: डॉक्टर, किसी तरह मेरे बेनी को बचा लीजिए डॉक्टर, उनके बिना।
3: अरे भाई, अभी तो ऑपरेशन हुआ भी नहीं और तुमने चिंता करनी शुरू कर दी।
0: मुझे बहुत डर लग रहा है डॉक्टर।
3: डेजी, इस तरह अधीर होने से कैसे काम चलेगा? तुम्हें तो बेनी को आत्मविश्वास और सहारा देना है। अब तुम इस तरह हिम्मत हारोगे तो कैसे होगा? तुम्हें तो मुझे सब बात सच सच बतानी ही थी।
0: नहीं, मुझ में ये सुनने का साहस नहीं है डॉक्टर।
3: डेजी धीरज रखो, डेजी धीरज रखो। बेनी इस समय आ गए तो ये सब देखकर दुखी हो जाएंगे। अरे बेनी आ रहे हैं।
4: आइए आइए, कहाँ पे जाना?
5: ओ डॉक्टर
4: भाई, जब भी डॉक्टर पेशेंट को देखने आता है पेशेंट बेड पर नहीं मिलता। इस पैकेट में क्या है?
5: बता दूंगा, पहले ये बताओ मेरी रिपोर्ट्स देखकर तुमने क्या डायग्नोस किया?
4: मेरी रिपोर्ट सब ठीक है, घबराने कोई बात नहीं है। हाँ, हो सकता है एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़े।
5: कोई गड़बड़ है डॉक्टर?
4: अरे भाई गड़बड़ कैसी, डोंट वरी, मैं तो हूँ।
6: आई विल डू माई बेस्ट।
5: लॉरेंस ये बात इस डेजी से कह दो, इसी को ज्यादा डर लग रहा है। डेजी अब तुम्हारी परेशानी दूर हुई ना?
4: और हाँ बेनी एक बात और, इस तरह कमरा छोड़कर बाहर जाना ठीक नहीं है, आई डोंट लाइक इट। अच्छा तो मैं चलता हूँ, सी यू अगेन, बाय।
0: तुम तो चेरियन से मिलने गए थे बेनी, ये पैकेट कहाँ से उठा लाए?
5: तुम्हारे लिए एक चीज है।
0: अच्छा देखो तो।
5: लो देख लो।
0: साड़ी ये अब काहे को, और यहाँ
5: मेरी ओर से प्रेजेंट।
0: प्रेजेंट?
5: हाँ तुम्हें याद है आज तुम्हारा जन्मदिन है, भूल गई? लो मेरी डेजी के लिए जन्मदिन का प्रेजेंट है। ए? तुम उदास नजरों से मुझे घूर क्यों रही हो? लो ये रख लो।
0: इतना स्नेह जताकर तुम क्यों मेरा दम घोट रहे हो बेनी? हमें एक दूसरे के लिए इतना अधीर नहीं होना चाहिए।
5: हाँ ऐसा मुझे भी लग रहा है, तुम्हारे साथ मेरा विवाह नहीं होना चाहिए था, तुम्हें इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए था। खैर साड़ी पसंद आई?
0: तुम्हें अस्पताल में साड़ी नहीं लानी चाहिए थी।
5: अब अगर मैं और मौका ना पाऊं तो? तुम तो बड़ी ना समझ हो, तुम अगर ऐसी ही रही ना तो फिर चल गया काम। प्रेजेंट देखकर रोने लगी? नहीं नहीं नहीं रो मत। देखो अब अगर और ज्यादा रोगी तो मैं रूठ जाऊंगा। बोलो रूठ जाऊं? नहीं नहीं ना। अच्छा तो फिर हंस दो। देखो ये ऐसे ऐसे
0: क्या क्या हुआ आपको? ले जाइए ले जाइए ना बेनी। बेनी बेनी कुछ ही मिनटों के अंदर डॉक्टर लॉरेंस दौड़ कर आ गए। दूसरे ही दिन बेनी का मेजर ऑपरेशन हुआ। भगवान की कृपा से ऑपरेशन सफल रहा। गिरजा की निष्ठापूर्ण सेवा ने मुझे अचरज में डाल दिया। जब ब्लड का स्टॉक खत्म हो गया तो उस नाजुक परिस्थिति में गिरजा ने अपना खून दिया। बेनी धीरे धीरे बोलने चालने लगा तो मेरा मन खुशी से खिल उठा, लेकिन मेरा सुख क्षण भंगुर था। सहसा सब खत्म हो गया। चौथे दिन मेरा बेनी स्वर्ग से धर गया।
7: ओह नो।
0: सदा के लिए मुझसे छुड़ गया।
7: आखिर ये हुआ कैसे?
0: ऑपरेशन के बाद एक दिन बेनी के हृदय में दर्द उठा, सांस लेने में बड़ा कष्ट होने लगा। फौरन डॉक्टर के पास आदमी दौड़ाया, लेकिन दुर्भाग्य से डॉक्टर लॉरेंस घर पर नहीं मिले। डॉक्टर आशीष दौड़े आए, लेकिन उस वक्त तक बेनी के प्राण फकीर उड़ चुके थे। टूटे हुए पेड़ की तरह मैं जमीन पर गिर पड़ी, और फिर मुझे किसी बात की सुध नहीं रही। पांव बाद मुझे होश आया, मैं बीमार पड़ गई। जिस कमरे को मेरे पति खाली कर गए थे मैं उसी में भर्ती हो गई। 2 महीने बीत गए। एक दिन नर्स गिरजा मेरे पास आई।
1: डेजी, ये सब क्या है? छोटे बच्चों की तरह?
6: ये दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता गिरिजा।
1: दुख तो मुझे भी है डेजी, मैं भी उनको नहीं भूल सकती। उन्होंने मुझ पर बहुत उपकार किया था।
6: मैं अब क्यों जीवित हूँ गिरिजा? चिराग बुझ गया, रोशनी खत्म हो गई, मेरे सामने अब अंधेरा ही अंधेरा है।
1: ना डेजी, इस अंधेरे से तुम्हें बाहर निकलना ही होगा। उठो, हाथ मुंह धो लो, हमेशा रोना धोना अच्छा नहीं। चलो देखो देखो, इससे पेड़ी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी।
6: गिरिजा
1: डेजी, अच्छा अब मैं चलती हूँ, ड्यूटी खत्म होने पर आऊंगी, तब हम देर तक बैठ कर बातें करेंगे।
0: इस तरह कुछ महीने और बीत गए। डॉक्टर लॉरेंस मेरी कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहते थे। बेनी के प्रति वे बहुत स्नेह प्रदर्शित करते थे। और एक दिन सब लोगों को आश्चर्य में डालकर हम, मैं और लॉरेंस, विवाह सूत्र में बंध गए।
7: अच्छा?
0: लेकिन इस सब के बावजूद भी बेनी मेरे अंदर जीवित रहे। उनका प्रिय गिटार मैंने संभाल कर रख लिया था। एक दिन की बात है,
8: आप सुन रहे थे नाटक अग्निचक्र का पहला भाग। ये था मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। ये थी केंद्रीय नाटक एकांश की प्रस्तुति। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में।
9: 2 जून, सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
10: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
9: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
11: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
9: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
11: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
9: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
12: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
13: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
12: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
14: थी धन्य जवानी।

0: लाइट्स साउंड कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं अभिनेत्री साधना सिंह, यानी नदिया के पार की गुंजा।
2: योगी जी प्रेम
1: से बातचीत कर रही है विधि जैन।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा हमेशा आपके लिए कोई ऐसे व्यक्तित्व को लेकर आती है जो आपसे बहुत पहले से जुड़ा हुआ है, हमारे श्रोता जिन्हें बहुत पसंद करते हैं। और आज एक ऐसी अभिनेत्री हमारे समक्ष हैं जिनको देखकर न जाने कितने दिलों ने ये सोचा होगा कि काश हम भी ऐसे ही होते, या हमारे परिवार की बेटियां बहुएं सभी ऐसी ही होती। हर कोई ये विचार कर रहा था, वो मिट्टी की खुशबू, वो जिंदगी, वो किरदार, वो अभिनेत्री जो उस समय भी उतनी ही खूबसूरत थी और आज भी वही रूप, वही रंग और वही यौवन हमें दिखाई दे रहा है। आज हमारे सामने है, अच्छा श्रोताओ चलो एक प्रश्न पूछती हूँ। एक डायलॉग बड़ा खूबसूरत सा था, चंदन काहे कहा अच्छी लड़की नहीं है, ये किस फिल्म का डायलॉग था जरा विचार कीजिए। हाँ वही फिल्म जिसमें हमने होली की धुन पर भी नाचा है और गांव की एक प्यारी सी लड़की की चुहलबाजी, मस्ती और बहुत सारी शैतानी को भी देखा है। और वही मस्तीखोर बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी अभिनेत्री हमारे बीच में है और नाम है साधना सिंह जी। मैं मंच से इस प्यारे से विविध भारती से आपका इतने प्यार से स्वागत करती हूँ।
1: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आज पूरा विविध भारती परिवार इतना प्रसन्नचित है आपको पाकर क्योंकि उन्हें उनकी गुंजा सुनने को मिल रही है।
1: हाँ बिल्कुल,
0: मैंने जब जिक्र गुंजा का कर दिया है तो गुंजा से ही शुरू करते हैं। गुंजा जो है वो बहुत बदमाश भी है और कहीं मिर्ची पीस के खिला देती है कहीं पानी गिरा के चली जाती है। हाँ। कभी बाबा की डांट भी खाती है तो माँ के सामने झिझक के निकल भी जाती है। और वही गुंजा जो है वो एक समय पे आके उदास भी हो जाती है अपने परिवार के लिए, बहन के लिए, अपने खुद के लिए। तो आप उन दोनों में से, हालांकि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप पहली वाली गुंजा होनी चाहिए, पर फिर भी मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि मेरे सामने जो गुंजा बैठी है वो कौन सी वाली गुंजा है।
1: एक्चुअली तो फर्स्ट हाफ में जो दिखाया चुलबुली, बदमाश
0: जी,
1: प्रैंक करने वाली हूँ मैं वही, लेकिन उसके साथ ही ये आता है साथ में जो सेंसिटिविटी है, जो उसका अलग भाव, जो
0: समझदारी,
1: सैडनेस है या किसी के लिए फील करना है।
0: हाँ।
1: वो अपने आप इसके साथ बायो प्रोडक्ट की तरह आता है।
0: हाँ।
1: तो मैं एक्चुअली देखा जाए तो जो गुंजा है वही मैं हूँ,
0: दिल की सच्ची अच्छी बच्ची।
1: हाँ, जो भी है, बदमाशी भी करती हूँ और आज तक करती हूँ। पहले मेरे बच्चे थोड़ा एम्बेरस्ड हो जाते थे, क्या मम्मा रुको, अब वो भी इंजॉय करते हैं क्योंकि उनको पता ही है औरत रुकने वाली है नहीं। तो मैं आज भी वैसे ही मस्ती करती हूँ, घर में भी।
0: हाँ।
1: बाहर भी, फ्रेंड्स के साथ भी। और जब बोलते हैं गुंजा, गुंजा के कैरेक्टर में इतनी ढल गई मैं कि मुझे पता ही नहीं चला ये मेरे अस्तित्व में कैसे शामिल हो गई।
0: अच्छा।
1: और कुछ चीजें थी जो मेरी थी
0: जी,
1: और मेरे दादा जो ये थे डायरेक्टर गोविंद मुनीस जी, वो मुझसे सुनते थे, अच्छा बताओ तुमने और क्या बदमाशी की, तो वो सब बताती थी। जैसे कलर लगाया उसको सचिन को लगाया ना, वो मेरा एक्चुअली रियल इंसिडेंट था जहाँ पे मैंने अपनी फ्रेंड के भाई को, सोया हुआ था और सुबह उठ नहीं रहा था होली में, तो उसको पूरा लगाया था ऐसे मैंने, तो दादा ने डाल दिया वो

0: और जो बिट्स खिलाई अभी भी करती हूँ मैं वैसे काम।
1: यानी इस साधना जी जो है वो ये बदमाशियां कर चुकी थी और अभी भी कर रही हैं,
0: कर रही हैं
1: और गुंजा
0: करती रहूंगी।
1: सच बात है, वो गुंजा का जो किरदार रहा है आपका, जो आपने किया है उस समय, बहुत सारी अच्छी फिल्में आ रही थी, यानी ऐसी ही फिल्में आ रही थी जो बहुत सेंसिटिव थी, लोगों के दिलों को छू रही थी, और उन फिल्मों के बीच में सन 1982 में नदिया के पार अपना एक अलग मुकाम बनाया। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि नदिया के पार करते समय या उसके पहले क्या आपने उसके बारे में पढ़ा था, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी थी, या बस नेचुरली उतर गई थी मैदान में?
0: हाँ नहीं, उतर ही गई थी, क्योंकि कहीं मैंने वो एक्टिंग सीखी नहीं।
1: अच्छा।
0: और कोई स्पेशल कोर्स नहीं कराया दादा ने मेरे साथ
1: जी।
0: उन्होंने बस एक ही चीज बोली, तुम जैसी हो वैसी रहना, ठीक है। और लेकिन बावजूद उसके मुझे लगता था कि नहीं, एक्टिंग कर रही हूँ मैं, कहाँ करूँ एक्टिंग, कहाँ करूँ, मुझे समझ नहीं आया शुरू में। तो जब शूटिंग खत्म हो गई, मैं कहा दादा एक्टिंग ही नहीं कराई।
1: अच्छा।
0: आपने तो बोलते बस तुम देखना पर्दे पे, इसी को एक्टिंग बोलते हैं। तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं था, क्योंकि दिमाग में था ही नहीं कि एक्ट्रेस बनना है
1: जी।
0: लेकिन चलिए जो बने। लेकिन उन्होंने देखा मुझे 14-15 दिन ऑब्जर्व किया
1: जी,
0: तब जाके उनको लगा यही मेरी गुंजा है।
1: अरे वाह।
0: हाँ,
1: तो साधना में उन्होंने गुंजा ढूंढ ली। जब आप छोटी थी तो आप क्या चाहती थी, आप अभिनेत्री? आपने भी बोला कि आपको पता नहीं था कि
0: हाँ,
1: आप अभिनेत्री बनेंगी।
0: हाँ,
1: तो साधना जी क्या बनना चाहती थी?
0: मुझे पैशन तो सिंगिंग का ही था।
1: अच्छा।
0: तो लोग भी मुझे एज ए सिंगर ही जानते थे, कानपुर में मैं थी
1: जी।
0: तो उनके हिसाब से मैं सिंगर ही थी। और टीचर्स भी बहुत प्यार करती थी, क्योंकि जैसे ही उनका ब्रेक होता है ना, लंच ब्रेक वगैरह, तो बोलती थी बुलाओ साधना को। और सब खा रही और मुझे बोल रही वो वाला गाना सुनाओ, अभी वो वाला सुनाओ, फरमाइशी चलता था गीत। तो इस वजह से मेरी बड़ी गलतियां माफ कर दी जाती थी स्कूल में भी, कि ठीक है जो भी है गाना तो गाती है ना। तो या कुछ क्योस होता था तो बोलते साधना को बोलो माइक पे आए जल्दी।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो ये था, रुतबा था मेरा अपना।
1: तो अच्छी बात है, लेकिन आपने एक जिक्र किया कि आपके सामने माइक रखा जाता था और कहा जाता था कि साधना गाओ, लेकिन अभी आप अपनी पसंद का कोई गीत बता दीजिए जो हम हमारे श्रोताओं को सुना दें। कौन सा ऐसा गीत है जो पहला गीत आप सुनना चाहती हैं आपके साक्षात्कार के साथ?
0: देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं 3 साल की थी, 3-3.5 साल की, जब मैंने अचानक एक गाना गाया। उस समय तो रेडियो होते थे और मेरी मम्मी ने पूरे मोहल्ले को बुला लिया, मेरी बेटी देखो गाना गा रही है, मेरी बेटी गाना गा रही है। वो गाना था तोरा मन दर्पण कहलाए,
1: क्या
0: है ना। तो शुरुआत मेरी उससे हुई और फिर बस गाने लगी, और मतलब एज ए सिंगर छाने लगी। उससे आवाज अलग थी मेरी, मतलब आप 50,000 लोग खड़े कर दीजिए उन तक पहुंच सकती थी,
1: उतनी बुलंद आवाज।
0: हाँ, बुलंद आवाज थी
1: जी। तो आपका जब पसंदीदा गीत है और 3 साल की उम्र में जब छोटी सी साधना ने पहला गीत गाया है, तो वो गीत हम आपको विविध भारती परिवार की तरफ से उपहार स्वरूप देना चाहते
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: बिल्कुल, थैंक यू।

0: अब साधना जी, आपने बताया कि 3 साल की उम्र में आप गा रही थी, आप हालांकि आप आज भी बहुत खूबसूरत हैं, तब तो भला की खूबसूरत रही होंगी, तो लोगों का प्यार करना बनता है, उसमें कोई दो मत नहीं है। और मैं शायद गलत नहीं हूं कि आपने मंच में नृत्य, अभिनय, बहुत सारे काम स्कूल में जो होते हैं वो भी शायद किए
1: हाँ,
0: होंगे।
1: मैंने नृत्य कभी नहीं किया,
0: अच्छा
1: वो मेरी बहन करती थी, तो
0: अच्छा
1: मेरे माइंड में आ गया कि वो डांस कर रही है तो मैं गाने में ठीक हूँ,
0: अच्छा
1: लेकिन वो कहीं ना कहीं अटक गया मेरी बॉडी में या कुछ, तो वो कथक करती थी बहुत जबरदस्त, बिरजू महाराज जी की बहुत फेवरेट ये थी डिसाइपल, और बिजली की तरह नाचती थी वो, तो कहीं ना कहीं कथक मेरे अंदर कुछ ना कुछ भाव उसके रह गए। अब अफसोस की बात यह कि उनको अर्थराइटिस हो गया, तो फिर एक डांसर के लिए अर्थराइटिस हो जाना,
0: बहुत दुखद घटना है जी।
1: तो मतलब टीचर्स भी बोलती थी तुम तो स्कूल में गाना गाती थी, और हम लोग का एनुअल फंक्शन में हमेशा मना कर देती थी कि मैं डांस नहीं करूंगी, लेकिन वो था तो है अंदर।
0: नहीं, आप बहुत अच्छा नृत्यकी हैं, उस जोगीरा में और हमने देखा
1: जोगीरा
0: बड़ा
1: में
0: मजा
1: मार खा के की हूं।
0: अच्छा, वो किस्सा भी जरा बता
1: नहीं,
0: दें
1: वो ये था, बद्री जी थे
0: जी।
1: हमारे डांस डायरेक्टर,
0: जी
1: तो गाना तो बड़े मजेदार था। हाँ,
0: हाँ
1: और शीला जो है वो पूरी ट्रेन डांसर थी, तो
0: अच्छा
1: मैं तो
0: हाँ
1: नहीं थी, तो उसमें एक स्टेप है ना, थोड़ा मुश्किल स्टेप है, ऐसे करके ताली एकदम,
0: जी
1: और घूम के आना था,
0: जी
1: मुझसे हो नहीं रहा था कि माइंड अटक गया था, मैंने कहा मैं नहीं करूंगी ये, तो बद्री जी से मैं कहती थी कुछ चेंज नहीं कर सकते इसमें, कुछ चेंज नहीं कर सकते, तो बोलते हैं 3-4 दिन उन्होंने देखा ये ऐसे बदतमीजी करती जा रही है, तो एक बार आएगा, आज तुमको डांस आएगा देखना, लेकिन डंडा मारा पैर में एकदम ठीक कर दिया मैंने
0: अच्छा, एक
1: आपको
0: डंडे में डांस हो
1: तो कई लोग ऐसे भी होते ना कि लातों के भूत, क्या कहते
0: गया लाठी के भूत
1: लाठी के भूत, मारा पैर में बड़ी जोरों से लगी, मैंने कहा मैं कर लूंगी
0: बद्री जी को धन्यवाद कि उन्होंने इतना खूबसूरत स्टेप हम तक
1: और
0: पहुंचाया।
1: क्योंकि शीला बहुत अच्छा कर रही थी,
0: हाँ
1: तो मैं देखती रहती थी, बड़ा मटक कटक के डांस किया उसने, फिर मैंने कोशिश की तो हो गया।
0: बहुत खूब किरदार को निभाया और बहुत खूब नृत्य किया आपने। मैं नहीं पता था कि आपको उसमें डंडा पड़ा है, पर मैं उस डंडे को भी प्रणाम करती हूँ जिस डंडे ने इतना खूबसूरत नृत्य करवाया। अभी नदिया के पार फिल्म में आप आई और बहुत सारी जगह बहुत सारे अलग अलग भाव आपने दिखाए हैं। कहीं आप उसके प्रेम में भी हैं और अगले ही पल आप चंदन को परेशान भी कर रही हैं। तो ये जो भाव बदलने की जो क्रिया थी, आपने अभिनय सीखा नहीं, आप किसी रंगमंच की अभिनेत्री नहीं है, वो सब कैसे इतना छोटा छोटा अंतर, हम जब नदिया के पार देखते हैं तो मैं वो अंतर दिखाई देता है कि पल में शोला पल में माशा वाला, कि आप 1 सेकंड पहले उसी चंदन को देख के आपके अंदर से प्रेम के भाव आ रहे हैं और अगले ही क्षण वो प्रेम के भाव बदल गए। वो
1: हाँ,
0: किरदार किया कैसे आप?
1: वो इसीलिए हो पाया कि मैंने कोई मेथड एक्टिंग नहीं सीखी थी, अगर वो सीखी होती

0: वो नहीं, जर्म्स अंदर होने चाहिए, तो वो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे ज्यादा हो गया, कम हो गया, पर जो चीज है ही नहीं आपके अंदर, और सिर्फ शक्ल के उससे कि नहीं मैं बहुत सुंदर लग रही हूं या सुंदर लग रहा हूं, चले आते हैं एकदम, मतलब पोटली उठा के माँ बाप का पैसा लेके, तो मुझे नहीं लगता कि वो पहले खुद को जज करें, समझें अपने आप को। हो सकता है बहुत अच्छे एक्टर हो जाएं, लेकिन ये सोच के आना कि नहीं मैं अब जा रहा हूँ हीरो बनने या हीरोइन बनने, वो गलत, बहुत गलत है। और माँ बाप साथ में नहीं होते हैं, फिर आप गलत राहों पे चलने लगते हैं।
1: जी, तो थोड़ा सा खुद को परख के आए, ऐसा आपका कहना है। और सुंदरता बस जरूरी नहीं है अभिनय के क्षेत्र में,
0: बिल्कुल
1: अभिनय भी जरूरी है। ये तो बहुत अच्छी बात हमें आपसे पता पड़ी। इसके साथ ही एक और बड़ी खूबसूरत सी अदायगी मुझे ये लगी कि आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं फिल्मों में काम कर रही हूँ, मैं टीवी सीरियल्स में काम कर रही हूँ, तो मैं फिल्मों में कर रही हूँ तो मैं टीवी में क्यों करूँ।
0: हाँ, ऐसा
1: एक
0: तो
1: ये
0: कुछ नहीं
1: ईगो
0: है।
1: भी सामान्य है लोगों में
0: हाँ,
1: होता है
0: होता
1: कि
0: है।
1: हमने किया है,
0: हाँ,
1: तो इसके लिए आपने अपने मन को तैयार किया या
0: नहीं कुछ तैयार
1: नेचुरली?
0: नहीं किया, मुझे पता था मीडिया है ना,
1: हाँ
0: वो भी एक्टिंग ही चाहता
1: जी
0: है ना, हमको वहां भी लाइनें याद करनी होंगी,
1: जी
0: लेकिन वो पीयर प्रेशर एक होता है, वो कौन ले पाता है कौन नहीं ले पाता। नहीं तो एक्टिंग तो कहीं, हम अगर सड़क पे खड़े होके प्ले करते हैं तो थोड़ा लाउड करते हैं, क्योंकि हमको पता है वो अपनी समझ
1: जी
0: है ना, कि यहाँ पे बहुत सेंसिटिव कुछ आवाज नहीं आ रही, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलने लगूं,
1: जी
0: तो अल्टीमेटली मैंने पाया कि एक्टिंग नहीं करना ही एक्टिंग है,
1: अच्छा, एक्टिंग नहीं
0: नहीं
1: करना ही
0: करना है।
1: एक्टिंग है।
0: हाँ, तो मैं तो इतनी बड़ी अपने आप को समझती नहीं हूं कि मैं किसी को बोल पाऊं, ये आपने पूछा तो मैं बता रही हूं
1: हाँ
0: कि
1: जी, हमारे समक्ष बैठी हैं साधना सिंह जी, और अभी हम इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं। तो साधना जी, हम तो रेडियो वाले हैं, हम गाना सुनाते हैं, तो
0: हाँ
1: मौका है, दस्तूर भी है कि आपकी
0: सुनाइए।
1: पसंद सुन ली जाए
0: अच्छा, ऐसा।
1: जी। तो कोई गीत बता दीजिए जो।
0: मोस्टली मुझे रोमांटिक और ब्रीजी सॉन्ग या स्लो सॉन्ग्स अच्छे लगते
1: जी
0: हैं, तो कुछ दिल ने कहा, ऐसी भी बातें होती हैं,
1: वो उसका संगीत कितना खूबसूरत लगा
0: खूबसूरत
1: है।
0: और
1: जी जी
0: बहुत
1: जी
0: मीठा संगीत है।
1: तो हमारे श्रोताओं को सुनाते हैं ये खूबसूरत सा नगमा।
2: कुछ दिल ने सुना।

0: गीत के पार वापस हम सब प्रस्तुत हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन में। ये खूबसूरत सा कार्यक्रम चल रहा है और इसमें हम बात कर रहे हैं एक बेहतरीन प्यारी सी अभिनेत्री के साथ में, वो अभिनेत्री जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए हैं और जो भी जीवन में आया है उसे मुस्कुराते हुए सब करती गई हैं, मस्ती के साथ सब करती गई हैं और उसी उसी में आगे बढ़ते बढ़ते इनके पास में कई और सारी फिल्में आई हैं जिनमें एक आज के यूथ की पसंदीदा फिल्मों में से एक बड़ी प्यारी सी फिल्म है सुपर 30, ये आपने की और इसमें भी आपका किरदार रहा। तो हम चाहते हैं कि अगर इसके बारे में आप कुछ किरदार के बारे में बताएं तो।
1: ये समय ना बहुत टफ था मेरे लिए, क्योंकि कमिटमेंट हो चुकी थी और उसी वक्त मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब थी, तो हॉस्पिटलाइज थे। तो मैं जब भी आती थी बॉम्बे तो सीधा हॉस्पिटल जाती थी,
0: जी
1: तो बड़ा गंदा सा पैच था।
0: अच्छा
1: उस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी, लेकिन ये है कि आप जब कैरेक्टर आर्टिस्ट बन जाते हो तो आपके कई सीन्स जब कटने होते हैं ना, तो साइड जो एक्टर है उनके ही कटते हैं, हीरो हीरोइन के नहीं कटेंगे। तो बहरहाल जैसा भी था, तो आई वॉज सेटिस्फाइड जो थी। और अब चीजें चेंज हो चुकी हैं तो
0: हाँ
1: ह्यूमन टच नहीं रह गया है,
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: वो मैंने मिस किया उस फिल्म में। और बाकी तो छोटा सा अच्छा सा रोल था। और मैं जानती हूं कि एडिटिंग होती है
0: जी
1: और एडिटिंग से ही फिल्म बनती है,
0: जी
1: तो इसलिए मैंने कभी उनपे क्वेश्चन नहीं किया कि मेरा ये सीन क्यों काटा, वो सीन क्यों काटा।
0: जी
1: लेकिन हाँ, अच्छा लगा। प्रोडक्शन के जो लोग हैं, अभी लड़कियां आ गई हैं बहुत
0: नहीं
1: प्रोडक्शन में,
0: जी जी
1: तो उनके बीच में घिर के मस्ती करते हुए ठीक है, बट बाकी जो स्टार हैं वो तो अपने अपने वैंस में चले जाते हैं आजकल। हमारे टाइम पे हम लोग को बिठाया जाता था कि दूसरा क्या कर रहा है उसको भी देखो।
0: तो उस समय आप लोग दोनों उसमें बैठे रहते थे, यानी अपना करने के बाद फिर आप वहीं होते थे, सेट पे ही रहते थे।
1: सेट पे ही रहती थी, मतलब पहले ऐसे ही होता था,
0: अच्छा
1: बैठ के साथ में खा रहे हैं, साथ में गप भी कर रहे हैं, कुछ सीन की बात भी कर रहे हैं,
0: जी
1: या अभी कुछ सीन हो रहा है तो इसके बाद मेरा है तो मुझे क्या सुर पकड़ना है क्या नहीं, बहुत सी चीजें। लेकिन आजकल शॉट देते ही लोग वैनिटी, मेरी वैनिटी तो खाली रहती थी क्योंकि सेट पे ही आदत है
0: आदतन
1: बैठने।
0: अनुसार आप लड़कियों से घिरी रहती
1: हाँ, तो
0: थी
1: टाइम निकल जाता है, बट रोल अच्छा था, फिल्म अच्छी थी।
0: जी
1: तो एक लाइन बोलती हूँ ना, हमें नहीं चाहिए शॉल, हम बहुत हॉट है, तो वो एक छोटा सा था जो कि लोगों को बहुत पसंद आया वहां पे।
0: नहीं,
1: हाँ
0: वैसे आप बहुत हॉट हैं, शॉल की जरूरत
1: हाँ
0: आपने तो अभी उसके बाद आपने एक चंदा किरदार को भी निभाया ससुराल फिल्म में, उसके बाद बहुत सारे किरदार किए आपने नदिया के पार के
1: हाँ
0: बाद। जी
1: नदिया के बाद बहुत ज्यादा काम नहीं किया मैंने,
0: जी
1: काफी कुछ घर की भी प्रॉब्लम्स हो गई थी और यहाँ मैं सिस्टर के पास रह रही थी, बहुत सारी चीजें हुई हैं उस दौरान। लेकिन ये है कि एक शंकरावर्णम फिल्म आई थी,
0: जी
1: विश्वनाथ जी साउथ के थे, उन्होंने ये फिल्म बनाई थी, उसका नाम था शंकरावर्णम। तो जब मैं थिएटर में काम कर रही थी तो इप्टा में,
0: जी
1: तो वहां के जो सबसे बड़े जो कर्ता धर्ता थे, आबिद रिजवी, मुझे
0: जी
1: बिल्कुल बेटी की
0: आबिद
1: तरह,
0: रिजवी जी
1: हाँ,
0: जी
1: तो उन्होंने क्या किया कि मुझे बोले चलो तुमको एक तमिल फिल्म दिखाते हैं। मैंने कहा मैं क्यों जाऊं, तमिल मुझे समझ नहीं, वो वही पढ़ती रह जाऊंगी मैं सब टाइटल।
0: नीचे का जी
1: लेकिन वो ले गए
0: जी
1: और वो फर्स्ट फ्रेम शुरू हुआ फिल्म का और मैं ऐसे देखती रह गई। मतलब जब फिल्म खत्म हुई तो मैं इतनी भरी हुई थी, ओवरवेल्म्ड एकदम, मैं कहा ऐसी भी फिल्में होती हैं क्या, काश इस तरह की कोई फिल्म मैं कर पाती। तो विद इन 2 मंथ्स मुझे फोन आता है कि ऐसा ऐसा हम लोग हिंदी वर्जन बनाना चाह रहे हैं, तो
0: वही सेम
1: उसमें
0: फिल्म।
1: हाँ सेम फिल्म
0: ओह
1: लेकिन आपको जो गुरु है उनकी बेटी का रोल। मैंने कहा कोई भी रोल है मैं करूंगी, जुड़ना ऐसी फिल्म
0: जी
1: से।
0: जी
1: तो विश्वनाथ जी तो बहुत उनको पूजा जाता है वहां पे
0: जी बिल्कुल
1: साउथ में, सरगम ये सब उन्होंने बनाई, तो उनके साथ काम करके मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने बोला तुम्हारी आंखें अच्छी हैं बहुत, लेकिन
0: बोलती
1: हाँ,
0: आंखें
1: तो इनको इनहेंस कैसे कर सकते हो एक्टिंग के लिए,
0: जी
1: कि एक बार पलक झपकाओ तो उसका क्या मीनिंग होता है, 2 बार झपकाओ तो मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो वो सारी चीजें वो बताते थे ना, तो ही जस्ट अभी पास्ड अवे, उनका मंदिर वगैरह बनाया, तो तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा. नदिया के पार के बाद ससुराल थी ना शायद.
0: हाँ जी जी उसके बाद ही.
1: हाँ तो मस्ती में की बस. और वहीं पे मेरे हस्बैंड मिल गए मुझे. हस्बैंड जो आज हैं
0: जी
1: उनकी फिल्म थी जो मैं नहीं करना चाह रही थी.
0: अच्छा.
1: लेकिन मेरे डायरेक्टर हैं
0: जी.
1: मुझे लगा उनको काम मिलना चाहिए तो उस वजह से मैंने कहा कि अगर दादा कर रहे हैं तो मैं कर रही हूँ. तो वो फिल्म की उसके बाद ना इतना सिनेरियो इतना गंदा हो गया था और कोई अच्छी फिल्में नहीं बन रही थी. तो सिर्फ बुआ बन के दादी बन के चाची बन के खड़े रहना. मैंने कहा मैं नहीं करूंगी.
0: हाँ.
1: तो वो टाइम मैंने अपनी शादी फिर बच्चों को देखना ये सब
0: जी जी.
1: और फिर उसके बाद मुझे जब मैं फिल्म में आई तो ये पिछले 5 सालों की जुगनी.
0: जी जुगनी.
1: जुगनी बहुत अच्छी फिल्म
0: बहुत
1: देखे
0: अच्छी
1: हैं.
0: फिल्म जी.
1: तो ये नए नए लोगों के साथ मैंने काम करना शुरू किया जब.
0: हाँ.
1: तो बहुत एनर्जी और बहुत प्यार और बहुत रिस्पेक्ट है. तो मैंने कहा नहीं ये तो सिनेरियो ठीक है अभी. तो उसमें अच्छा रोल दिया उसने मुझे लड़की ने और उसका नाम है शेफाली भूषण.
0: जी.
1: अभी भी उनकी मराठी एक फिल्म बहुत हिट हुई है स्थल.
0: अच्छा.
1: हाँ तो उनके साथ काम करके ना मुझे बहुत अच्छा लगा. बच्चों के साथ काम करके दे वेरी ड्रिवन. सब लोग शीशा दिखा रहे हैं आपको मेकअप मैन की जरूरत नहीं है ना. सब मिलके काम कर रहे हैं.
0: मिलके काम कर रहे हैं पारिवारिक तरीके से काम कर रहे हैं.
1: फिर मैंने अनुराग कश्यप वो मुझे ढूंढ रहा था कब से. तो उसको लगा कि शायद मैं अमेरिका चली गई हूँ शादी आदि करके. तो कुछ देख रहा था उसने कहा रुको रुको साधना जी कहाँ है आजकल. तो उन्होंने बताया यही है. तो उन्होंने मुझे बुलाया आपको काम करना पड़ेगा मेरे साथ. तो वो फिल्म की फिर उसमें मजा आया मुझे बहुत.
0: अनुराग कश्यप जी के साथ में आपको एज ए डायरेक्टर वो जब साथ में है तो आपको क्या अलग लगा पहले का?
1: मुझे ये लगा कि वो कंफर्ट मैंने फील किया जो नदिया के पार में था.
0: अच्छा.
1: हाँ क्योंकि ये भी बोलते हाँ ऐसा जैसा आपको ठीक लगे. अच्छा. ये बहुत अच्छा लग रहा है. मतलब ये नहीं जकड़े हुए नहीं थे.
0: हाँ.
1: कि ऐसा ही करना है. और कई कई जगह तो आए पैर वैर छुए बोले हम नहीं सोचते थे कि आप इस तरह की लैंग्वेज बोलेंगी.
0: जी. हम लड़कियों को बचपन से कहा जाता है कि एक राजकुमार आएगा सफेद घोड़े पे आपको लेके जाएगा.
1: पति का नाम राजकुमार
0: ही नहीं राजकुमार आ गए. वो सफेद घोड़े पे आए थे या एम्बेसडर में आए थे?
1: अरे वो उन्होंने बदला लिया मुझसे शादी करके.
0: अच्छा. मैं हम जानना चाहते हैं वो किस्सा.
1: वो किस्सा मैंने बताया. मैं किस्सा यही था कि मुझे अंदर से ये नहीं था कि मुझे फिल्म करनी है. तो मैंने कहा नहीं करूंगी. तो ये बिहार बिहार छोड़ के आए थे कि फादर ने बोला इस लड़की को लेके ही फिल्म बनानी है. तो फादर ने बोला तो आए उन्होंने सब जमाया सब काम.
0: हाँ.
1: और मिलने आए तो उनको लगा मैं बहुत अकड़ू टाइप की हूँ. और मुझे मालूम नहीं क्या ऐसा किया होगा मैंने.
0: जी.
1: तो एक बार मिले उसके बाद दूसरी बार मिले मैं पहचानने से इनकार कर दिया मैंने. इनकार मतलब जानबूझ के नहीं मेरी दाढ़ी रखी होगी शायद उसलिए. फिर तीसरी बार मिले जब साइन करा चुके थे. चौथी बार मिले अरुण गोयल के दोस्त थे तो अरुण ने कहा ये राजू वो देखे जा रहे हैं मेरी तरफ. तो मैंने कहा कि अच्छा. तो बोले अरे साइनिंग अमाउंट लेके भी नहीं पहचान रही हो. मैंने कहा ओ गॉड क्योंकि आप कभी चश्मा पहन के आ जाते हैं कभी दाढ़ी रख के आ जाते हैं. इनको इतना गुस्सा है. बोले शादी करके बताता हूँ इसको कैसे नाम नहीं याद रहेगा.
0: नाम याद कराने के लिए शादी कर ली.
1: शादी कर ली बताइए अब. हालांकि बहुत दंगे फसाद

0: हुए, 5 साल तक हम लोग की चल रहा था अफेयर,
1: हाँ
0: और मेरे फादर इन लॉ बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे। फिर
1: अच्छा, वही
0: मेरी,
1: लड़की हीरोइन चाहिए थी लेकिन
0: हाँ
1: उसके साथ शादी नहीं करानी। हाँ
0: होता ना दिमाग में, शादी फिल्म लाइन की लड़की है, ऊपर से तुम उसको घर ले आओगे तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। लेकिन 5 साल के बाद जब वो माने तो बहुत अच्छे से माने। फिर
1: मैं जानना चाहती हूँ एक कोई गीत जो आप अपने सफेद घोड़े पे आए हुए चश्मे वाले दाढ़ी वाले हैंडसम से राजकुमार के लिए दें।
0: ये रात भीगी भीगी,

0: अब हम लोग उत्तर प्रदेश की फिल्म में जो आपने किए हैं यूपी की भोजपुरी फिल्म है उनके बारे में चर्चा करेंगे।
1: भोजपुरी फिल्म तो एक ही शायद मैंने की
0: वो
1: है,
0: वाली की है ना, गंगा मैया तो है।
1: ये तो मेरे फादर इन लॉ की फिल्म थी, पायनियर थे वो
0: जी
1: और ये फिल्म उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी के कहने पे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, सब इनकी एक दोस्ती थी, बोला भोजपुरी बड़ी खूबसूरत लगती है सुनने में, क्यों ना एक फिल्म बनाई जाए।
0: हाँ।
1: तो ये चले आए मेरे फादर इन लॉ बक्सा उठा के, और वहीं जहाँ दादर उतरे सामने ही वहाँ पे एक होटल है जहाँ पे सब स्टार वगैरह आते थे, वहाँ वो मिले नासिर साहब से, नासिर हुसैन जो
0: जी
1: जिन्होंने फिल्म, और उन्होंने स्टोरी सुनाई और उनको साइन भी कर लिया। कुमकुम जी मदर इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट में फंसी हुई थी, उनको संभाल के निकाला और फिल्म बनाई गंगा मैया तो ही पियरी चढ़ाई वो,
0: जी
1: जो कि ब्लॉकबस्टर
0: जी
1: आज
0: जी
1: भी ब्लॉकबस्टर है।
0: जी जी
1: तो उसको मेरे फादर इन लॉ को ट्रिब्यूट देने के लिए एक और फिल्म बनाई मेरे हस्बैंड ने, जबकि वो चले गए इस दुनिया से,
0: जी
1: गंगा जैसन पावन पिरितिया हमार। तो
0: अच्छा
1: उसमें मैंने काम किया
0: जी
1: क्योंकि उस वक्त शायद कोई और रेडी नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा घर में बैठी है चलो इसको
0: इतना लाइटली तो नहीं
1: बहुत
0: लिया होगा।
1: बहुत अच्छी फिल्म बनी
0: जी जी
1: लेकिन
0: बहुत प्यारी है,
1: हाँ वो
0: बहुत अच्छी फिल्म
1: हाँ
0: जी। एक प्रश्न और मन में आ रहा है, पंजाबी सिकड़ी लड़की सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की भाषा बोलने लगती है, मतलब सीधे ओ चंदन लाइक जो वहां की भाषा है उस भाषा में आ जाती, ये जो भाषा का बदलाव है इसको करने में तो तकलीफ हुई होगी
1: बिल्कुल
0: सीखने
1: भी नहीं। मैं बनारस में की पैदाइश हूँ, हमें अपनी जो बाइयाँ आती थी उन सबसे तो
0: मतलब आप वो चाट और लस्सी
1: वो
0: खाते
1: खाते
0: पीते
1: पीते
0: बड़ी
1: हाँ,
0: हुई जी।
1: क्योंकि आज तक हम लोग बहन भाई हिंदी में बात करते हैं, सिर्फ
0: अच्छा
1: मम्मी डैडी से पंजाबी सीखी मैंने
0: अच्छा
1: कि मुझे आनी चाहिए, क्योंकि बनारस में ये मतलब आपस में मेरे भाई लोग दोनों पगड़ी बांध के और भोजपुरी में बात करते थे, तो वो विजुअली बड़ा अजीब सा लगता था कि अरे
0: सरदार
1: हाँ,
0: खड़े हैं और
1: तो हमारा
0: भोजपुरी बोल
1: पंजाबी एक्सेंट है ही नहीं।
0: अच्छा
1: हाँ हम लोग जो बनारसी भाषा है और इलाहाबादी
0: जी
1: हाँ ये काफी फर्क है।
0: जी
1: तो हमने सिर्फ जैसे उनको बोलिए अगर राजबाबू तो बहुत गुस्सा हो जाते थे कि ये भोजपुरी फिल्म नहीं है, अगर लगान दिखा रहे हो आप, बैकड्रॉप है आपका गांव वाला, मतलब कि भोजपुरी फिल्म हो गई क्या,
0: अच्छा।
1: ऐसा था।
0: आपने जैसे बहुत सारी फिल्मों में काम किया और अभी हमें टीवी सीरियल्स के बारे में ही बात करनी है, तो उसके पहले मैं चाहती हूँ जो फिल्मों की हम बात कर रहे थे उसमें नदिया के पार बड़ी खूबसूरत सी फिल्म है, और उसका जो सबसे ज्यादा पसंदीदा गीत साधना जी को मुंजा को कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है वो गीत हम सुनाना चाहेंगे
1: देखिए कौन दिशा में तो सब गाते हैं,
0: जी।
1: बट मेरे सामने पहली रिकॉर्डिंग हुई थी गुंजारे चंदन चंदन, तो एक वो इतनी रोमांटिक थी ना धुन उसकी,
0: जी
1: और दोनों का जो एक

0: प्यार था उस फिल्म में कैसे दिखाया गया था और थोड़ा अलग था, चंदन चंदन ऐसा,
1: बहुत
0: तो मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है।
1: रिकॉर्डिंग के समय आप थे क्या इसकी?
0: हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग में थे मैं।
1: रविंद्र जैन वहाँ पे उसका डायरेक्शन कर रहे होंगे, गाया जा रहा होगा। कैसा कैसा एम्बियंस था, कैसा लग रहा था सुनते
0: बहुत समय? अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि वो गाना है ही अच्छा। अगर आप
1: जी, बहुत खूबसूरत गीत है
0: और मैं करने वाली हूँ तो वो भी एक्साइटमेंट था। और हर रिकॉर्डिंग में थी मैं, लेकिन ये कुछ अलग इसने असर किया मुझे
1: जी।
0: और आज तक मैं बहुत बहुत ज्यादा इसको पसंद करती हूँ।
1: तो जब आप इसे पसंद करती हैं तो ये गीत आपके लिए हम सब की तरफ से बहुत प्यार से।

0: आपकी पसंद का गीत तो हमने सुना दिया, लेकिन जब सुनाया है तो हमारे यहाँ कहते हैं ना रिटर्न गिफ्ट मिलती है, तो एक रिटर्न गिफ्ट लेना चाहेंगे कि ये गीत जब रिकॉर्ड हो रहा था तो उस समय आपको कैसा लग रहा था, यानी क्या देखा आपने उस समय जब आप पहली बार स्टूडियो गई होंगी शायद?
1: बस माहौल देखा, माहौल कमाल का होता है क्योंकि, और लगता है सुनते ही रहो आप, चलते रहे ये म्यूजिक, क्योंकि कैसे बैठ के डिस्कस करना, और हेमलता जी थी
0: जी,
1: और कैसे वो लाइव गाना देखना, और सारे इंस्ट्रूमेंट होते थे साथ में,
0: एक साथ
1: एक साथ
0: बहुत बड़े कमरे में।
1: बहुत बड़ा कमरा तो नहीं था, फेमस में हुआ था,
0: अच्छा फेमस स्टूडियो,
1: बट जितना था सब भरा हुआ था, और उसकी जो ऊर्जा होती है ना वो आपको अलग महसूस कराती है, एकदम लग रहा था मैं हवा में उड़ रही हूँ, अब ये गाना मेरे ऊपर पिक्चराइज होगा। तो ये बड़ी कमाल की चीज है।
0: वहाँ पे रविंद्र जैन जी भी संगीतकार की तरह विराजमान होंगे
1: भैया, मैं तो प्रणाम करती हूँ, ऐसा आदमी मैं सच्ची में सोच नहीं सकती हूँ कि दादा को एक गाना नहीं पसंद आ रहा था, उन्होंने ऑन द स्पॉट 30 गाने सुना है,
0: 30 गाने,
1: 30 गाने में, और सुना रही थी पसंद है नहीं है, अच्छा और ये, और वर्ड्स उसी टाइम लगा रहे थे, ये नहीं कि लिखे हुए गाने पढ़ रहे थे, वो बनाते थे उसी टाइम स्पॉट पे, अच्छा ये वाला ठीक लग रहा है, अच्छा छोड़िए छोड़िए नहीं लग रहा ना, ये अच्छा लग रहा है, साधना तुमको भी, मुझे भी उतनी इम्पोर्टेंस दी जाती थी, यू नो
0: जी,
1: तो मुझे तो लगता था ये आदमी इतना गुणी, इतना गुणी, माई गॉड, उसका म्यूजिक भी बना लेते थे, शब्द भी लिख लेते थे, एक सेकंड में
0: 30 गाने एक समय पे,
1: 32 होंगे 30 होंगे मुझे इतना याद नहीं, लेकिन चलते जा रहा था इन लोग का
0: लगातार,
1: दादा कह रहे हैं नहीं अब एक और सुना दीजिए, तो अच्छा अच्छा ये वर्ड्स इधर डाल शुरू कर दिया, तो उनसे
0: और कहीं लिखा नहीं जा रहा क्योंकि देख नहीं सकते तो लिखते नहीं है।
1: उसके बाद फिर हम लोग के बहुत सारे टूर हुए जिसमें राज बाबू, राजकुमार बड़जात्या जी, उनकी वाइफ सुधा भाभी, और रविंद्र जैन जी और उनकी वाइफ, और मैं, और सचिन, हम लोगों ने बहुत शोज किए, तब उन्होंने बोला कि तुम बिल्कुल गायब हो यहाँ से, तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम गाना गाती हो, मैं तुमसे गवाता,
0: ये रविंद्र जी ने
1: क्योंकि उनके साथ जितने टूर होते थे सबको लगता था मैंने ही गाया फिल्म में, तो बहुत प्यार देते थे, और बहुत बहुत बहुत इज्जत और बहुत प्यार
0: जी। और जब टूर करने जाते थे तब क्या एक्सपीरियंस होता था स्टेज पे, जो उनके लाइव शोज होते होंगे वो आनंद ही अलग आता होगा।
1: वो तो शेरनी थी मैं तब बस चलो कहाँ चलना है, बोलना है क्या बोलना है,
0: अच्छा
1: तो आई थिंक वो अखड़पन में सब कुछ सीख गई, अल्लड़पन कहते ना,
0: ये कह सकते हैं आपके माता पिता की परवरिश का असर था कि आपको उतनी स्वतंत्रता दी गई, मानसिक स्वतंत्रता दी गई बचपन से।
1: ये बात है, मेरे दोनों मेरे पेरेंट्स बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत उनको ये था कि जो भी करना है करो, बस उसके बाद का जो जो भी रिजल्ट है वो भी तैयार रहो, उसके लिए भी तैयार रहो।
0: अच्छा, खेलो कूदो, चोट लगे तो तैयार रहना, लगेगी तो संभाल लेना। बहुत बढ़िया बात है, इतना आनंद आ रहा है आपसे बात करते हुए, इतना नहीं रोचक जानकारियां मिल रही हैं, और उसके साथ में एक बात और, जो आपने सीरियल्स में काम किया है, जो टीवी के पर्दे पर काम किया है, उस तक पहुंचने का कुछ ऐसा जरिया था या आप चले गए ऐसे घूमते?
1: नहीं नहीं, बस एक दिन फोन आ गया मुझे, तो मैंने अपने ससुर को बोला, क्योंकि ऐसा सुनने में आया था कि शायद वो परमिशन नहीं देंगे अब, क्योंकि इतने बड़े खानदान में लड़की आ गई, अभी शूटिंग भी करेगी, तो ये चारों तरफ से ना मुझे बता दिया गया था,
0: अच्छा
1: नॉट फ्रॉम माय हस्बैंड, वो इंडल्ज ही नहीं किए इसमें, लेकिन जब ऐसा हुआ और मुझे लगा कॉमेडी मिल रहा है मुझे, तो मुझे करना है, तो मैंने फोन कर लिया डायरेक्ट अपने फादर इन लॉ को, और बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो गए थे, तो मैंने कहा कि बाबा ऐसा ऐसा मुझे रोल आ रहा है, मैं कर लूं, तो उन्होंने बोला कि हाँ कर लो अगर अच्छा है तो,
0: अरे वाह,
1: लेकिन अच्छे अच्छे रोल करना जो भी, तो इन लोग को किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि बाबा ने बोल दिया, बाबा ने
0: एक
1: बोल,
0: बार दिया। बोल दिया
1: तो मैंने कहा ऐसे हवा मत बना के रखो,
0: यानी आपको मायका भी सुंदर मिला, ससुराल भी अच्छा मिला, दोनों
1: सास ससुर

0: बहुत अच्छे थे,
1: जी
0: तो यहाँ भी हैं, बस खुश रहे।
1: जी बिल्कुल। साधना जी, थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रही थी आपके बेटे का, जो आपकी बदमाशियों से परेशान है, पर हम उसे कहना चाहेंगे कि भाई परेशान मत हो, यही बदमाशियों ने हमारे हम जाने कितने करोड़ों के चेहरों में कितनी बार मुस्कुराहट लाई है। तो आपके दो बच्चे हैं अगर मैं गलत नहीं हूं, तो दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं? वो भी अभिनय के जगत में है
0: नहीं
1: या?
0: नहीं मेरे बेटा तो बहुत दूर है,
1: अच्छा
0: उसको फेमस नहीं होना है, वो बिल्कुल ही अलग सोचता है।
1: जी
0: और मेरी बेटी ने की है फिल्में, तमिल में की है,
1: जी
0: उसको लॉन्च किया था सतीश कौशिक ने,
1: जी
0: अनुपम जी ने,
1: बहुत बढ़िया।
0: लेकिन बस वो तकदीर नहीं थी कि
1: हाँ
0: जब रिलीज हुई पिक्चर जिस थिएटर में लगी, स्वाइन फ्लू की वजह से सारे थिएटर बंद हो गए, तो वो पिक्चर भी ऐसे ही ढह गई।
1: हाँ उस
0: तो
1: समय वो चल
0: फिर
1: नहीं
0: वो
1: पाई।
0: उसको मिला उधर काम, फिर एक टाइम के बाद चीजें हो जाती है ना कि उतना अच्छा किरदार नहीं मिल रहा है, आपने हीरोइन किया है, तो वो अपनी लाइफ में अपना देख रही है, शोज करती है या टीवी वगैरह जो भी है, ऑडिशन वगैरह वो वैसे ही देती है जैसे और लोग देते हैं।
1: मतलब
0: तो
1: उसमें साधना जी का हस्तक्षेप नहीं होता,
0: नहीं मैं करती भी नहीं, क्योंकि
1: मेहनत
0: जब
1: करो अपनी,
0: हाँ अपनी मेहनत करो।
1: ये बहुत अच्छी बात है, उनको
0: क्योंकि मैंने
1: अपने से
0: अपने
1: नहीं।
0: लिए कभी किसी को बोला नहीं, तो बच्चे के लिए क्या बोलूंगी।
1: जी, लेकिन आप जो चुलबुला किरदार है आपका, और जैसी आप हैं, और मैं इतने समझ से आपको जान रही हूं, तो मैं समझ रही हूं कि आपके साथ बैठ के अगर 2 घंटे बैठ के बातें की जाए तो शायद मेरे ठहाके रुकेंगे नहीं। तो वो जो किरदार है, तो एक बार अगर आपको ऐसा सोचने का मौका मिले कि कुछ ऐसी फिल्म करनी है, तो क्या आप करेंगी?
0: बिल्कुल करूंगी, मुझे कॉमेडी करना है, मेरा वो साइड अब एक्सप्लोर हुआ ही नहीं।
1: अच्छा,
0: हाँ तो साजिद के साथ फिल्म की मैंने ना ये सुपर 30,
1: जी
0: तो उसको मैंने एक मैसेज भेजा है कि मुझे ना रोने धोने वाली माँ के लिए बुलाना नहीं तुम लोग मुझे जब बुलाना कॉमेडी कोई, अच्छा तो बोले 100%। अब देखते हैं क्या होता
1: जी बिल्कुल होगा,
0: है
1: आपने कह दिया, सोच लिया, और
0: हाँ
1: विविध भारती के परिसर में कई चीजें जो सोच ली जाती हैं वो पूरी हो जाती हैं, ऐसा
0: हाँ ऐसा
1: हम मान
0: है,
1: के चलते हैं।
0: चलिए
1: बिल्कुल, ये
0: ठीक
1: जगह
0: है।
1: बड़ी
0: हाँ
1: बड़े पवित्र लोग यहाँ पर
0: हाँ
1: आए हैं।
0: हाँ
1: आप जानते हैं कि यहाँ पर
0: हाँ
1: अभी आप तस्वीरें देखते हुए आ
0: हाँ
1: रहे थे, तो बड़े बड़े किरदार आए हैं, तो ऊर्जा बड़ी अद्भुत है
0: अच्छी
1: यहाँ
0: अच्छी
1: की।
0: है। हाँ लेकिन एक चीज बता रही हूँ मैं
1: जी
0: कि ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ सिर्फ मतलब बेड ऑफ रोजेस बोलते ना, बहुत बहुत तकलीफें आई और बहुत ऊंच नीच भी हुई और ट्रॉमाज हुए लाइफ के, बहुत सारी चीजें हुई हैं। बस मुझे भगवान ने ऐसा बनाया कि मैं थोड़े टाइम के बाद अपने आप हैप्पीनेस की तरफ चली जाती हूँ।
1: ऊर्जा सकारात्मक
0: हाँ वो मैं नहीं रख सकती इतना, क्योंकि मुझे लगता है क्राइम है खुद को दुख देना, दे के रहना या अपने पे तरस खा के रहना, क्योंकि आप सबको सब होता है मुझे और औरतों की तरह, ऐसा नहीं है।
1: हाँ।
0: लेकिन मैं सबको बताती भी नहीं हूँ जो उस दौर में हैं, या मुझे फोन करके अपना दुखड़ा नहीं सुनाना है। मुझे लगता है कि एक ऐसा फेज भी आया लाइफ में कि मुझे लगा मैं जीऊं या मर जाऊं।
1: अरे
0: हाँ मतलब इतनी सीवियरिटी वाली चीजें हुई कि मुझे
1: समस्या
0: ऐसा
1: उठने
0: लगा कि
1: लगी।
0: मुझे जीना मतलब नहीं है इस टाइम, नेक्स्ट स्टेप ये होगा बेटर कि मेरी सांस ही ना आए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या मुझे लोग ऐसा देखेंगे, क्या मुझे जानते हैं मेरी हंसी के लिए मेरी खुशी के लिए, तो मैं कुछ तो अच्छा करके जाऊं। और
1: क्या
0: फिर मैं बाउंस बैक मैंने किया था,
1: बात है,
0: और तो फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा ये तरीका अच्छा है कि मैं खुश रहूं, खुश दिखूं, खुश बोलूं और एटमोस्फियर अपने आप ठीक होगा, तो होगा नहीं होना होगा तो नहीं होगा।
1: बहुत अच्छी बातें हमको सुनने मिल रही हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है साधना जी। और इस
0: थैंक
1: अच्छाई के बीच में अगर वो शुरुआत वाली अच्छाई आप पूरी कर दें, हमारा एक गाना जो है, तो
0: यू
1: क्योंकि रविंद्र जैन जी जब कह गए कि तुमसे ही गवा लेते, तो हम भी चाहते हैं विविध भारती में आई हैं तो कुछ गाने हम भी
0: मैं
1: सुन
0: एक
1: लें।
0: कोशिश करती हूँ। चलिए मैं आपको आज ये भी बताती हूँ कि मैं रफी साहब की बहुत बड़ी फैन हूँ, वो मतलब मेरे लिए भगवान भी हैं, सब कुछ है।
1: जी
0: मुझे लगता है मैंने रोमांस दर्द दुख जो भी है उनकी आवाज से सीखा है,
1: जी
0: उनका ही गाना गा देती हूँ।
1: जी

पुकारता चला हूँ मैं गली गली पहाड़ की, बस एक इच्छा जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं गली गली पहाड़ की, बस एक इच्छा जुल्फ की, बस एक निगाह।

0: और अब इतनी देर से हम बात कर रहे हैं और शायद मुझे लगता है कि अभी अगर 2 घंटे और बात की जाए तो साधना जी की कहानी पूरी नहीं होगी, पर हम चाहते हैं कि आप हमारे श्रोताओं के लिए और हमारे जो नए नए बच्चे अभिनय के क्षेत्र में आ रहे हैं और बाकी हम जो महिलाएं, इन सब के लिए कोई संदेश अगर आप देना चाहें तो।
1: तो बच्चे तो आजकल के बच्चे हैं कि क्या बच्चे, आई डोंट नो कि उनके लिए कुछ नहीं बोलना चाहूंगी मैं।
0: जी
1: जो बोलना चाह रहे हैं वो रोज आता है कि अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए। और मुझे लगता है कि जिंदगी में जैसे हेल्थ हेल्थ ऐसी चीज है जिसपे औरतों का बहुत कम
0: ध्यान
1: ये
0: होता
1: ख्याल
0: है।
1: होता है, क्योंकि उसको लगता है बेटे को भी बादाम खिला दूं, उसको भी खिला दूं, उसको भी खिला, बचेगा तो देखती हूँ अपने लिए,
0: और बचता कभी नहीं।
1: बचता भी नहीं है और कभी क्रेप भी नहीं करती माए।
0: जी
1: लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए तो ही आप सबको समेट पाएंगी, ऐसी सिचुएशन को फेस कर पाएंगी जो आती है कभी कभी। वो कर्मा है ना, वो तो छोड़ेगा नहीं। और अपनी सेहत पे ध्यान दें। 50 में औरतें सोचती हैं हम लोग तो जिंदगी खत्म हो गई,
0: जी
1: तो वो जिंदगी शुरू होती है उस वक्त, क्योंकि आप
0: हाँ
1: सारी जिम्मेदारियों से थोड़ा मुक्त हो जाते हैं। और उस उम्र में औरत सुंदर भी सबसे ज्यादा लगती है,
0: हाँ
1: लेकिन उसको एहसास नहीं है। तो अपने आप को देखें, अच्छी चीजें देखें, पहने पहनने से मुझे याद आया मैंने ब्रांड भी शुरू किया है,
0: अच्छा
1: हाँ, एक कच्चे धागे करके।
0: अच्छा
1: और साड़ियां वीव्स वगैरह, मैं चाहती हूँ सब खुश अच्छे से सज धज के रहें। औरतों का काम है, ये
0: जी
1: ड्यूटी है उनका, मतलब राइट बनता है कि सिर्फ खाना ही नहीं बनाए, अपने आप को भी बनाए। और अच्छी फिल्में देखें तो हम लोग अच्छी फिल्में करेंगे। मेरी एक फिल्म आ रही है कैसी है पहेली,
0: जी
1: वो जरूर आप लोग देखिएगा। उसमें माँ बेटे का है स्टोरी, माँ बेटे की, बहुत
0: अच्छा
1: सारे उन फेस्टिवल में जा चुकी है
0: अरे वाह
1: और न्यूयॉर्क में तो स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। तो
0: क्या बात
1: मैं
0: है।
1: चाहती हूँ कि ये सब देखें,
0: फिल्म है कैसी है पहेली,
1: कैसी है पहेली।
0: जरूर से हम
1: हाँ
0: सभी विविध भारती परिवार जरूर इस फिल्म को देखेंगे, इतना हमें विश्वास है।
1: हाँ
0: और आगे आपके पास में बहुत सारी

0: फिल्में आए, आप वो चुलबुली वाली साधना सिंह हम जरूर देखना चाहते हैं, हमारा बड़ा मन है, क्योंकि हम हमारी उस वाली गुंजा को बड़ा मिस कर रहे हैं जो बड़ी बदमाशियां करती थी.
1: हाँ
0: सो हम वो देखना चाहते हैं उस किरदार में आपको. आप विविध भारती तक आई साधना जी, इतना सारा समय दिया, इतने प्रेम से समय दिया,
1: अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगता है, विविध भारती से कहीं ना कहीं आत्मा जुड़ी हुई है।
0: तो हमारे साथ आप बने रहिए, हमारा साथ देते रहिए. नए नए किस्से जब कभी आए तो हमारे पास तक जरूर आते रहिए साधना जी. अच्छा लगता है
1: लगा
0: विविध भारती में जब आप
1: बिल्कुल,
0: आते हैं, आप लोगों की ऊर्जा आती है. तो आप यहाँ तक आए उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद. प्रणाम.
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बॉबी टॉकीज कार्यक्रम में अभी आपने सुनी अभिनेत्री साधना सिंह से विधि जैन की ये बातचीत, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान.

0: सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से सफर छाया गीत का कुछ ही पलों के इंतजार के बाद

छाया गीत के सफर में आज बातें अफसानों की। ये वो मोहब्बत के अफसाने हैं जिनमें कभी सुकून मिलता है तो कभी मिलती है तड़प, कभी मिलन है तो कभी जुदाई। कभी ये अफसाने खुशी के गीत बनकर झूमने लगते हैं तो कभी देते हैं दर्द की पुकार। पर जो भी है, हर दिल का एक अफसाना होता है, या यूं कहें कि हर दिल एक अफसाना लिखता है अपनी मोहब्बत का, अपनी चाहत का, जिसे कभी दिल खुद तो कभी पूरी की पूरी दुनिया गुनगुनाती है।

हम चल रहे थे राह जिंदगी पर अकेले और खामोश। तुम क्या मिले राह बनकर कि जिंदगी को एक नया अफसाना मिल गया। इस अफसाने में है दीवानगी, इसमें है दरिया की रवानगी। कोरे कागज जैसी जिंदगी पर जो अफसाना तूने लिख डाला, अब उसे ही तो ताउम्र पढ़ते जाना है हमें।

हमारे सामने आते ही शब्द खो से जाते हैं, जुबान रुक सी जाते हैं कहीं। जब तुम ही बसे हो इन निगाहों में, तो क्यों ना इन नजरों से ही मोहब्बत का अफसाना लिखा जाए। चाहत की ये दास्तां आखिर क्यों सुने कोई और, ये राज़े मोहब्बत तो बस दो दिलों के दरमियां ही महफूज रहे।

जिंदगी की राहों पर साथ चलते हुए बढ़ता जाता है मोहब्बत का अफसाना। इस अफसाने में कभी मौसम और कभी महकती रातों की बातें, तो कभी बिखरी जुल्फों और काली घटाओं की बातें होती है। यही अफसाना कभी कलियों का दिल बनकर धड़कता है, तो कभी क्षमा पर परवाने की प्रीत झूमने लगती है, गाने लगती है।

0: ना लाया है दिल नजराना, जर सुनो सुनो जी।
1: छाया गीत में ही अफसाना जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद भी।

मोहब्बत के अफसाने में बस प्यार की ही बातें हो, ऐसा तो नहीं होता। इन अफसानों में तो झगड़े भी होते ही रहते हैं, और ये भी जरूरी नहीं कि हर बार नायिका ही रूठे और नायक उसे मनाए। कई अफसाने तो ऐसे भी बने हैं जिसमें नायिका ही अपने नायक को मनाने में लगी है। पर जो भी हो, हर अफसाने के अंजाम में सारी शिकायतें दूर हो ही जाती है, और तब तब दिल गा उठता है कोई प्यार भरा गीत।

ये अफसाना आज का नहीं है दोस्तों, ये अफसाना बहुत पुराना है। इस अफसाने में है बचपन की शरारतें।

इसमें है बचपन की दोस्ती, जिस पर आगे चलकर मोहब्बत का रंग चढ़ा, बिना बात के वो रोटना, वो मनाना, वो साथ साथ कविताएं पढ़ना, सावन की वो झूले, गर्मी की वो रातें, और हम अपनी छत से करते थे एक दूसरे को इशारे। इन हसीन यादों से ही तो बनता है हमारा ये छोटा सा प्यार भरा अफसाना।

दिल लिखता तो चला जाता है जिंदगी के अफसाने, पर ये काम इतना आसान कहाँ। अफसाने के किरदार ही इसे रातों को जगाते हैं। इन तमाम अफसानों में एक है मोहब्बत का अफसाना, जिसके होते हुए जमाने का कोई भी अफसाना भला कौन पढ़ना चाहेगा। और इन किरदारों में है एक ऐसा चेहरा जो हम सफर है इस अफसाने का। जब साथ हो इसका तो भला दुनिया से क्यों डरा जाए। जिंदगी की टेढ़ी मेढ़ी राहों से गुजर कर अपनी मंजिल पा ही लेता है मोहब्बत का ये प्यारा सा अफसाना, जो धड़कता है हर दिल में।

अफसानों की ये बातें आप सुन रहे थे छाया गीत के सफर में, अपनी हम सफर ज्योति के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

देव 103.1 MHz पर यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है युवाओं का अपना पसंदीदा और लोकप्रिय कार्यक्रम युवाणी।

जितना देख सकते हो उतना बड़ा सपना देखो, जितना सोच सकते हो उतना अच्छा सोचो। जितनी अच्छी आदतों को अपना सकते हो जरूर अपनाओ, जितना लगन से मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो। फिर एक दिन उतनी ही बड़ी कामयाबी की मिलेगी जितनी आपने सोच रखी थी। नमस्कार, शुभ संध्या। युववाणी की सुनहरी शाम में मैं हूं आपका रेडियो होस्ट मोहन मदान, जिसके पास है युवाओं के करियर की हर समस्याओं का समाधान। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और मस्त हैं। दोस्तों, आज के सैटरडे स्पेशल प्रोग्राम में आपसे होगी कुछ जरूरी बातें। मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज, जिसमें हमारी आज की बात का विषय होगा पढ़ने लिखने की आदत बनाए रखना क्यों है जरूरी। इस तब सेहत मंत्र में बताएंगे

अच्छी नींद है, अच्छी सेहत का राज। गाने होंगे धमाकेदार और जानेंगे इस हफ्ते के कुछ रोजगार अवसरों के बारे में। तो अब चलते हैं हमारी आज की बात की ओर। दोस्तों, बदलती टेक्निक और इंटरनेट पर डिपेंड रहने के कारण हमारी पढ़ने लिखने की आदत कुछ छूट सी गई है। अब स्थिति यह है कि जब भी हम कुछ लिखने के लिए पेन उठाते हैं तो हाथ कांपते हैं और हमारी राइटिंग ही कुछ ऐसी बनती है जिसे खुद पढ़ने में ही दिक्कत जाती है। जब मैं अच्छी आदतों की बात कर रहा हूँ तो उसमें रोज लिखने और पढ़ने की आदत शामिल होना भी लाजमी है। अगर आप इस आदत को छोड़ चुके हो तो एक नई शुरुआत के साथ इसे जरूर अपनाएं। कोई भी नई चीज को अपनाने या दोबारा शुरू करने के लिए प्रयास थोड़ा छोटा रहना चाहिए। एक साथ दो तीन पेज लिखने से बेहतर है कि शुरुआत एक पैराग्राफ से करें, फिर धीरे धीरे से बढ़ाएं। लेकिन अगर सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लिख रहे हैं तो एक पैराग्राफ ही काफी है।

हाथ कांपते हैं और हमारी राइटिंग की कुछ ऐसी बनती है जिसे खुद पढ़ने में ही दिक्कत जाती है। जब मैं अच्छी आदतों की बात कर रहा हूँ तो उसमें रोज लिखने और पढ़ने की आदत शामिल होना भी लाजमी है। अगर आप इस आदत को छोड़ चुके हो तो एक नई शुरुआत के साथ इसे जरूर अपनाएं। कोई भी नई चीज को अपनाने या दोबारा शुरू करने के लिए प्रयास थोड़ा छोटा रहना चाहिए। एक साथ दो तीन पेज लिखने से बेहतर है कि शुरुआत एक पैराग्राफ से करें, फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। लेकिन अगर सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लिख रहे हैं तो एक पैराग्राफ ही काफी है। बस कुछ इसी तरह पढ़ने के लिए किसी भी बुक के एक पार से शुरू करें और उसे रोज पढ़ें। धैर्य के साथ पढ़ने लिखने से धीरे धीरे आपकी क्षमता बढ़ेगी और फिर बाद में आदत बनती जाएगी। अब तो हर घर में मोबाइल और लैपटॉप्स आ गए हैं जिसके कारण हम छोटी छोटी चीजें इसमें लिखने लगे हैं। बेहतर होगा कि हम इन्हें पॉकेट डायरी में नोट डाउन करें। कोई खास रेसिपी या कोट्स कलेक्ट करने की आदत है तो कंप्यूटर में फोल्डर बनाने की बजाय इसे भी डायरी में ही लिखें। अब बात आती है हर घर में आने वाले न्यूज़पेपर की। आप इसे रोज सुबह पढ़कर हर दिन एक नई शुरुआत कर सकते हैं। इससे न केवल पढ़ने की आदत बनेगी बल्कि आपका जनरल नॉलेज भी मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, आज के डिजिटल वर्ल्ड में जहां जानकारी के अनगिनत साधन हैं, वहीं पढ़ने की नियमित आदत कमजोर होती जा रही है। मोबाइल और इंटरनेट के इस दौर में बच्चों और युवाओं का ध्यान पढ़ने लिखने से लगातार हटता ही जा रहा है, जबकि सही ज्ञान, गहरी समझ और व्यक्तित्व का निर्माण रोज पढ़ने से ही होता है। निरंतर पढ़ने का अनुशासन हमें एकाग्रता, चिंतन क्षमता और आत्मविश्वास से भर देता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम रोज पढ़ने को अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाएं। लगातार ऐसा करने से आपको इसकी आदत हो जाएगी। हाँ, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें कि इसे खुद तक सीमित नहीं रखना है, इसे घर और स्कूल के माहौल में भी बढ़ावा देना है। दोस्तों, पढ़ना मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करता है और उम्र बढ़ने पर भी माइंड पावर को सेफ रखता है। ऐसे कई सफल शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी उपलब्धियों का श्रेय लगातार पढ़ने को ही दिया है। किताबें ज्ञान का सबसे बड़ा पावर हाउस मानी जाती है और साथ ही लाइफ को बैलेंस करने में भी मदद करती है। आज के टाइम में गूगल, यूट्यूब और एआई के जरिए कोई भी जानकारी तुरंत निकालना ये जेंजी के लिए बहुत आसान काम हो सकता है। लेकिन क्या आपने इसके पीछे छिपी हुई हिस्ट्री को सोचा है? नहीं, बस असल बात तो ये है कि ये फैसिलिटी धीरे धीरे उनकी सोचने और निर्णय लेने की कैपेसिटी को कमजोर करती जा रही है। जब हमें इन प्लेटफॉर्म्स पर एक खाने की थाली जैसे सब मटेरियल तैयार मिल रहा है, तब सीधी सी बात है कि लोग अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाएंगे ही नहीं। लेकिन इसका खामियाजा हमारी आने वाली पीढ़ी पर स्पष्ट दिखाई देगा। ऐसे समय में परिवार और स्कूल दोनों की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि वे बच्चों में नियमित अध्ययन की आदत डालें। सभी बच्चों और युवाओं को ये समझना जरूरी है कि वास्तविक ज्ञान अभ्यास से आता है। नई टेक्निक्स का इस्तेमाल हर फील्ड में जरूरी है, लेकिन एक हद तक। नियमित पढ़ाई से हमारा देखने का नजरिया बहुत बड़ा होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और जिम्मेदारी की नई भावना विकसित होती है। तो साथियों, ये थी पढ़ने लिखने की आदत बनाए रखने के लिए कुछ खास बातें। अब चलते हैं सुरों की दुनिया में और सुनते हैं मोहम्मद इरफान की आवाज में ये फिल्मी सॉन्ग।

इस गाने के बाद वापस कमबैक करते हैं हमारे अगले क्रम अवसर की ओर, जहां हम आपके लिए लाए हैं एक से एक रोजगार अवसर, जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। हो सकता है इसमें से कोई ना कोई रोजगार अवसर आपके करियर की सफलता तय करे। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ रोजगार अवसरों के बारे में, जहां बैंक की तैयारी कर रहे युवा साथियों के लिए सरकारी नौकरी का शानदार अवसर आया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अप्रेंटिस के 5000 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली है। शैक्षणिक योग्यता में किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा 20 से 28 साल होगी।

इसकी फीस जनरल के 800 रूपए और SC ST के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आवेदन की अंतिम तिथि 8 जून है। सिलेक्शन ऑनलाइन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लोकल लैंग्वेज टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट bankofbaroda.in पर जा सकते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं रेलवे सेक्टर की ओर। यहाँ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 1080 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली है। शैक्षणिक योग्यता में 10th पास के साथ ITI की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा 15 से 24 साल है। इसकी फीस निशुल्क है। आवेदन की अंतिम तिथि 18 जून है। इसमें सिलेक्शन मेरिट बेस और सेंट्रल अप्रेंटिसशिप रूल के हिसाब से किया जाएगा। इसके उम्मीदवार अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल www.apprenticeshipindia.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। इसी क्रम में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC CGL ने 12,256 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली है। शैक्षणिक योग्यता में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा 18 से 32 साल है। इसकी फीस है 100 रूपए। आवेदन की अंतिम तिथि है 18 जून। इसमें सिलेक्शन टीयर 1, टीयर 2 एग्जाम, फिजिकल और मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर 22 जून तक आवेदन कर सकते हैं। अगले क्रम में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के 899 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली है। शैक्षणिक योग्यता में पोस्ट के हिसाब से अलग अलग डिग्रियां मांगी गई है। आयु सीमा 18 से 27 साल है। आवेदन की अंतिम तिथि 4 जुलाई 2026 है। इसमें सिलेक्शन रिटर्न एग्जाम, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट bro.gov.in पर अधिक जानकारी आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस के 7,150 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली है। शैक्षणिक योग्यता में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा 20 से 28 साल है। फीस है 300 रूपए। आवेदन की अंतिम तिथि 8 जून 2026 है। इसमें सिलेक्शन ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम, लोकल लैंग्वेज टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के आधार पर किया जाएगा। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो अब चलते हैं इस हफ्ते की आखिरी वैकेंसी की ओर, जहां UPSC ने केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में ग्रुप ए और ग्रुप बी के 194 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली है। आयु सीमा 30 से 48 साल है। आवेदन की अंतिम तिथि 12 जून है। फीस है इसकी 25 रूपए। सिलेक्शन रिटर्न एग्जाम, इंटरव्यू और मेडिकल एग्जाम के आधार पर होगा। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी इस हफ्ते के कुछ महत्वपूर्ण रोजगार अवसर। ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी डिग्री के हिसाब से किस फील्ड की किस पोस्ट पर फिट बैठते हैं। समय रहते हुए इन रोजगार अवसरों को पहचाने, क्योंकि याद रखें ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। तो अब आज की इस शाम को बनाते हैं कुछ खास और एक बार फिर चलते हैं अपने म्यूजिकल सफर की ओर, जहां आप सुनेंगे सुल्तान फिल्म का ये सॉन्ग।

आपके एंटरटेनमेंट के साथ आपकी सेहत का ध्यान रखना हमारा फर्ज है और इस फर्ज को निभाते हुए इस सफर को ले चलते हैं स्तंभ सेहत मंत्र की ओर। दोस्तों, अगर सवाल किया जाए कि इस दुनिया का सबसे अनमोल सुख क्या है तो सबके जवाब अलग अलग हो सकते हैं। कोई खाना कहेगा तो कोई अच्छी कोल्ड ड्रिंक बताएगा या फिर कोई नींद कहेगा। सभी चीजों पर ध्यान से गौर किया जाए तो असल में अच्छी नींद से आनंददायक कुछ है ही नहीं। बड़ी बात यह है कि हमारी नींद सिर्फ आनंद तक सीमित नहीं है, अच्छी नींद अच्छी सेहत का भी राज होती है। लेकिन भारत के लोगों को एक अच्छी और पूरी नींद मिल ही नहीं पा रही है। सेहत के सफर में जानेंगे कि हेल्दी और कंप्लीट नींद क्यों है इतनी जरूरी, अच्छी नींद का असल मतलब और क्या होंगे इसके फायदे, नींद पूरी नहीं होने पर क्या होंगे नुकसान। आपने लोगों को अक्सर कहते सुना होगा कि जब हम सोते हैं तो कहीं दूसरी दुनिया में खो जाते हैं। असल में सोते समय हम अचेतन अवस्था में चले जाते हैं, अपने आसपास की दुनिया से एकदम बेसुध। इस समय हमारे शरीर और दिमाग के काम करने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। पूरा शरीर फटाफट अपनी खामियों की लिस्ट बनाता है और उनकी मरम्मत शुरू कर देता है। इस दौरान जो कुछ भी बिगड़ा हुआ होता है

से सुधार लिया जाता है। आजकल भागदौड़ वाली जिंदगी में हमने सबसे ज्यादा समझौता अपनी नींद के साथ ही किया है। इसका कोई समय ही नहीं है, पूरा टाइम टेबल बिगड़ा हुआ है। पहले नींद नहीं आना ये बड़ी उम्र के लोगों की समस्या थी, पर अब यंग जनरेशन में ये समस्या एक आम बात हो गई है। दोस्तों, प्रकृति ने हमें नींद के रूप में बहुत बड़ा वरदान दिया है। ये हमारे मन को अगले दिन आने वाली चुनौतियों से लड़ने और जिंदगी का भरपूर आनंद लेने के लिए तैयार करती है। हमारे यहाँ ज्यादातर लोग नींद से जाने अनजाने में समझौता कर लेते हैं। इससे काम के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा वक्त मिल तो जाता है, लेकिन बदले में ढेर सारी लंबी चौड़ी बीमारियों के बुलावे की एक लंबी लिस्ट पहले से ही तैयार रहती है। भरपूर नींद नहीं लेने का सीधा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है, जिसके कारण हम गुस्सैल और चिड़चिड़े से हो जाते हैं। ये धीरे धीरे दिमाग को नुकसान पहुंचाता है और अल्जाइमर जैसी बड़ी बीमारी की वजह बनता है। दोस्तों, बात आती है किस उम्र में कितने घंटे की नींद जरूरी है। इसे कुछ यूं समझते हैं, जन्म से लेकर 3 महीने के बच्चों के लिए 14 से 17 घंटे की, 4 से 12 महीनों के बच्चों के लिए 12 से 16 घंटे की, 1 से 2 साल के लिए 11 से 14 घंटे, 3 से 5 साल के लिए 10 से 13 घंटे, 6 से 12 साल के लिए 9 से 12 घंटे, 13 से 18 साल के लिए 8 से 10 घंटे और 19 से 60 साल के लोगों के लिए 7 घंटे से ज्यादा, और 61 साल या उससे ज्यादा के लिए 7 से 9 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। दोस्तों, अच्छी नींद के लिए अपनी दिनचर्या में बदलाव करना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें अपने सोने और जागने का एक निर्धारित समय रखना होगा, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ समय कम बिताना है। सुबह शाम खुली हवा में घूमना, दोस्तों से बातचीत करना, हल्की फुल्की मॉडरेट एक्सरसाइज करना, शराब सिगरेट को दूर से ही नमस्ते करना, 1 घंटे पहले सोने से 1 घंटे पहले शॉवर लेना, चाय कॉफी ज्यादा नहीं पीना, रात का खाना सोने के कम 3 से 4 घंटे पहले खाना, और सबसे जरूरी बात ये कि सोने के आधे से 1 घंटे पहले बेडरूम को मोबाइल फ्री जोन में कन्वर्ट कर देना। दोस्तों, ये कुछ ऐसी आदतें हैं जिन्हें फॉलो करना कुछ लोगों के लिए मुश्किल सा हो जाता है, लेकिन अगर हम ठान ले तो हम क्या नहीं कर सकते। आज का सेहत मंत्र यही कहता है कि नींद हमारी दिनचर्या में बहुत जरूरी रोल निभाती है। ये सिर्फ बॉडी को ही नहीं बल्कि ब्रेन को भी आराम देती है, जिससे हम पूरे दिन कुछ एनर्जेटिक फील कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि अच्छी नींद ही अच्छी सेहत का राज होती है। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अच्छी नींद के बारे में, अब सुनते हैं ये फिल्मी सॉन्ग।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवाओं का अपना पसंदीदा और लोकप्रिय कार्यक्रम युवाणी। एफएम वेव 103.1 MHz पर यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। श्रोताओं, आइए हम आपको बता दें, हमारी आज की प्रसारण सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। इसके अलावा हमारी जो कल की जो सभा है उसमें जो कार्यक्रम हम आप तक पहुंचाएंगे उनकी भी संक्षिप्त जानकारी हम आपको अभी बताएंगे। श्रोताओं, सबसे पहले हमारे आज के शेष जो कार्यक्रम है उनकी संक्षिप्त जानकारी जानिए। अब से कुछ ही देर बाद यानी शाम 6:05 पर हमारे स्टूडियो से आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम, जिसमें आपको लोकगीत सुनवाएंगे सुखदेव गुजरे। और साथ ही 6:30 पर हमारे स्टूडियो सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। 6:50 पर आप सुन सकेंगे सबरस में गजल भजन कव्वाली और गैर फिल्मी गीत। आज शाम 7:10 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से मन प्रसारित करेंगे प्रादेशिक समाचार। श्रोताओं, आज शाम 7:20 पर हमारे स्टूडियो सुनिए किसान भाइयों का अपना पसंदीदा और लोकप्रिय कार्यक्रम किसान वाणी, जिसमें आज की बात में आकाशवाणी गांव में कार्यक्रम की विशेष श्रृंखला आप तक पहुंचाई जाएगी। साथ में आपको सुनवाए जाएंगे लोकगीत। श्रोताओं, रात्रि 8 हमारे स्टूडियो सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बातें नई गीत नए। 8:30 पर सुन सकेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम युगल गीत। रात्रि 8:45 पर आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से मनप्रसारित करेंगे समाचार संध्या। रात्रि 9 से 10 तक विद भारती मुंबई से मनप्रसारित करेंगे विद भारती सेवा के कार्यक्रम। और रात्रि 10 हमारे स्टूडियो सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भवन। रात्रि 10:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुनिए राजेश्वरी चौधरी के गाए हुए गीत। श्रोताओं, रात्रि 11 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से मन प्रसारित करेंगे हिंदी में समाचार। 11:05 पर सुनिए अंग्रेजी में समाचार। आज रात्रि 11:10 पर हमारी आज की प्रसारण सभा की समापन की उद्घोषणा होगी। तो ये तो थे हमारी आज की प्रसारण सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। अब हमारे कल की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित वाले कार्यक्रम हम आप तक पहुंचाते हैं उनकी संक्षिप्त जानकारी। तो हमारी कल की सभा शुरू होगी सुबह 5:55 पर। कल सुबह 6:05 पर हमारे स्टूडियो सुनिए भक्ति संगीत के कार्यक्रम भक्ति धारा में हरिहरन, रॉबिन चटर्जी, नितिन मुकेश और सुरेश वाटकर की आवाज में गाए हुए भक्ति गीत। कल सुबह 6:35 पर सुनिए श्री राम चरित मानस गान अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाटकर के स्वर में। कल सुबह 6:45 पर हमारे स्टूडियो सुन सकेंगे लोकगीतों के कार्यक्रम लोक रंजनी में मदन मोहन शुक्ल और साथियों से गाए हुए गोंडी लोकगीत। श्रोताओं, कल सुबह 7:20 पर हमारे स्टूडियो सुनिए पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोके से। 7:50 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे में कुछ जनउपयोगी जानकारियां और सूचनाएं। कल सुबह 8:30 पर हमारे स्टूडियो सुनिए नन्हे मन्ने बच्चों का कार्यक्रम फुलवारी, जिसमें विषय होगा कबाड़ से कमाल का इनोवेशन और साथ ही सुनिए फिल्म संगीत। श्रोताओं, कल सुबह 9 से 10 तक विद भारती मुंबई से मनप्रसारित करेंगे विद भारती सेवा के कार्यक्रम। 10 आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से मन प्रसारित करेंगे कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। कल सुबह 10:05 पर हमारे स्टूडियो सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो एफएम बैतूल। और कल सुबह 11 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से मन प्रसारित करेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम मन की बात, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से मन की बात का ये संस्करण आपको 11 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम सुनवाएंगे, इसे सुनना ना भूलें। श्रोताओं, कल दोपहर 12 से दोपहर 2:10 तक विविध भारती मुंबई से मनप्रसारित करेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। श्रोताओं, कल शाम 5:30 पर हमारे स्टूडियो सुनिए युवाओं का अपना पसंदीदा और लोकप्रिय कार्यक्रम युवाणी, जिसमें आज की बात का विषय होगा तंबाकू मुक्त समाज के निर्माण में युवाओं की भागीदारी। श्रृंखला एक फनकार में जानिए राजकुमार राव के साधारण से असाधारण बनने की कहानी।
साथ ही स्तंभ सक्सेस टेस्ट में मोबाइल और सोशल मीडिया के संतुलित उपयोग को के संबंध में हम आपसे चर्चा करेंगे और साथ ही आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। श्रोताओं कल शाम 6:05 पर हमारे स्टूडियो सुनिए कार्यक्रम माटी के स्वर, जिसमें छावल सिंह उइके और उनके साथियों से आप सुनेंगे लोकगीत। कल शाम 6:30 पर सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम और 6:50 पर कार्यक्रम सबरस। कल शाम 7:20 पर हमारे स्टूडियो से आप सुनिए किसान भाइयों का अपना पसंदीदा कार्यक्रम। कल का कार्यक्रम रहेगा ग्राम सभा, जिसमें आज की बात का विषय होगा विशेष तंबाकू निषेध दिवस और चर्चा करेंगे तंबाकू के नुकसान पर। सामयिक कृषि चर्चा में जानिए तोरई एक सब्जी फसल और उसके उत्पादन में कैसे बढ़ोतरी करें या उसका उत्पादन कैसे प्राप्त करें। साथ ही श्रृंखला बातें खेती किसानी की और जानिए मौसम व बाजार भाव। कल रात 8 बजे हमारी स्टूडियो सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम शीर्षक गीत। इस कार्यक्रम में हम आपको किसी एक शीर्षक पर उससे जुड़े हुए गीत सुनवाते हैं। कल रात 8:15 पर आकाशवाणी के भोपाल के इनसे मन प्रसारित करेंगे समन्वित कार्यक्रम डगर विकास की। श्रोताओं कल शाम 8:30 पर हमारे स्टूडियो सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम साज और आवाज। श्रोताओं इस कार्यक्रम में हम आपको सुनाते हैं किसी एक गीत की धुन और उसी धुन पर आधारित वो गीत भी हम आप तक पहुंचवाते हैं। कल रात्रि 10 बजे हमारे स्टूडियो सुन सकेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में हम आपको किसी एक फिल्म के सभी गीत सुनवाते हैं। कल रात 10:30 पर हमारे स्टूडियो सुनिए सुगम संगीत के कार्यक्रम में जगजीत सिंह की गाई हुई गजलें। रात्रि 11 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से मन प्रसारित करेंगे हिंदी में समाचार। 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार और कल रात्रि 11

11:10 पर हमारे कल की सभा की समापन की उद्घोषणा होगी। तो श्रोताओं, ये थे कार्यक्रम विवरण में हमारी आज की प्रसारण सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की हमने आपको संक्षिप्त जानकारी बताई। इसके अलावा हमारी कल की सभा में जो हमारे कार्यक्रम प्रसारित और अनुप्रसारित रहेंगे उसकी भी संक्षिप्त जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम और आप सुनेंगे सुखदेव गुजरे और साथियों से लोकगीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से आप सुन रहे हैं लोक गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत, और हम आपको सुनवा रहे हैं सुखदेव गुजरे और साथियों की आवाज में उनके गाए हुए लोकगीत।

0: आकाशवाणी बैतूल पर दे विज्ञापन और पाए अपने उत्पाद या सेवाओं का अभिवादन।
1: जन्मदिन, रिटायरमेंट, शादी की सालगिरह या हो कोई शैक्षिक उपलब्धि या किसी दिन विशेष की देना हो बधाई, तो आकाशवाणी बैतूल है ना भाई।
0: ये बात न जाना भूल कि विज्ञापनों के लिए आना आकाशवाणी।

0: प्राणी बैतूल।
1: अपने विज्ञापन, प्रायोजन या प्रचार प्रसार के लिए हमसे संपर्क करें और पाए विज्ञापनों की डायरेक्ट बुकिंग पर आकर्षक छूट और बोनस विज्ञापन।

0: बहुत ही कम और प्रचार भी ऑन बैतूल FM।
1: तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें कार्यक्रम अनुभाग आकाशवाणी बैतूल कॉलेज रोड पर।

0: हमारे संपर्क क्रमांक है 07141234722 और मोबाइल नंबर है 9755553676।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से आप सुन रहे हैं सुखदेव गुजरे और साथियों की आवाज में लोकगीत कार्यक्रम लोक संगीत में। तो आइए सुनते हैं सुखदेव गुजरे और साथियों से ये लोकगीत।

श्रोताओं, लोक संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है।

एफएम वेव 103.1 MHz पर ही आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। दीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम और आइए सबसे पहले सुनते हैं फिल्म है हम सब चोर हैं, आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की, संगीतकार बप्पी लहरी। तो आइए सुनते हैं फिल्म हम सब चोर हैं का ये गाना।

श्रोताओं, आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आइए सुनते हैं फिल्म डुप्लीकेट का ये गीत कुमार सानू की आवाज में, गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार अनु मलिक।

श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनिए। फिल्म है सलामेश। आवाजें हैं इसमें सोनू निगम, श्रेया घोषाल, कुणाल गांजावाला, साधना सरगम, शंकर महादेवन, और गीतकार हैं समीर, संगीतकार शंकर एहसान लॉय।

श्रोताओं, फिल्म सलामे इश्क के इस गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस। श्रोताओं, जैसा आप जानते हैं, कार्यक्रम सबरस में हम आपको सुनाते हैं भजन, गजल, कव्वाली और गैर फिल्मी गीत, यानी जो म्यूजिक है, संगीत है, उसके लगभग सभी आयामों को आप तक पहुंचाते हैं। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं ये भजन।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस। और कार्यक्रम सबरस में आप सभी जानते हैं, हम आपको सुनवाते हैं गजल, गीत, भजन और कव्वाली। तो आइए सुनते हैं तनवर आजाद की स्वर में ये कव्वाली।
1: तुम्हारी शान बयां

हसरत धाए।

श्रोताओं, आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस, और हमने आपने आपको इस कार्यक्रम में सुनाई गजल, भजन, कव्वाली और गैर फिल्मी गीत। एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है।

एफएम वेव 103.1 MHz पर यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से मनु प्रसारित करेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। खेत बचाओ अभियान युद्ध स्तर पर किया जाएगा संचालित, कहा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है सेना। और मानसून ने पकड़ी रफ्तार, इधर प्रदेश के मौसम ने बदली करवट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण किया जाएगा। खेत बचाओ अभियान का मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और उचित उपयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की सक्रिय भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ये बातें केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में खेत बचाओ अभियान की तैयारियों के संबंध में आयोजित बैठक के दौरान कही।
3: खेत बचाओ अभियान में गांव गांव तक पहुंचने का हमारा प्रयास होगा। राज्य सरकार, केंद्र सरकार के अधिकारी, हमारे वैज्ञानिक, कृषि विभाग का एक सेंसर का अमला, हमारे प्रगतिशील किसान, हमारे केवीके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के साथी, ये सब के सब जुटेंगे। और इसी दौरान एक तरफ हम बेहतर और संतुलित खेती पर चर्चा करेंगे, वहीं कई योजनाओं का लाभ भी, किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है तो हम बना के वहां देने का प्रयास करेंगे, मैकेनाइजेशन के यंत्र बटना है तो उसमें

0: सकते हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड अगर देना है तो उसमें दिए जा सकते हैं। तो जितनी चीजें व्यवहारिक रूप से हो सकती है उसमें देने का प्रयास करेंगे। ये खेत बचाओ अभियान 1 से लेकर 30 जून तक व्यापक पैमाने पर चलेगा।
1: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आज नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि गोमती नदी के नाम पर बने INS गोमती युद्धपोत के कारण लखनऊ का नौसेना से पुराना नाता रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर और ब्रह्मोस निर्माण के जरिए देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना रहा है।
2: 2014 तक भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वह बहुत कम हुआ करता था। हम केवल 1,000 करोड़ रुपए से भी कम के हथियार और साजो सामान दुनिया को बेच पाते थे, लेकिन आज वही बढ़कर हम लगभग 40,000 करोड़ रुपए के सामान दुनिया के दूसरे देशों को दे रहे हैं। इस तरह के अनेक उपलब्धियां रक्षा क्षेत्र में हम लोगों ने हासिल की है। डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से उत्तर प्रदेश भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है और यहां लखनऊ में ब्रह्मोस का भी निर्माण हो रहा है।
1: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित G7 और G13 सीमा चौकियों का उद्घाटन किया। इस दौरान श्री शाह ने घोषणा की कि BSF की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह बदला जा रहा है। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनते ही सीमा पर फेंसिंग के लिए जमीन का गतिरोध 1 हफ्ते में दूर कर लिया गया है। समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, फिलहाल संघर्ष विराम जैसी स्थिति है। जरूरत पड़ी तो तीनों सेनाएं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने एक मानक तय कर दिया है जो कि भारत किसी भी उकसावे पर कैसे जवाब देता है ये जाहिर कराता है। ये बातें सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने आज पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें बैच की पासिंग आउट परेड के दौरान कही। इस वर्ष रक्षा अकादमी ने कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, साथ ही मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। राज्यपाल नंदीबाई पटेल ने कहा है कि हमारे युवा देश की आशा और सामर्थ्य हैं, उनके विचार और चरित्र ही देश का भविष्य तय करेंगे। जरूरी है कि हमारे युवा जो भी काम करें उसमें वे उत्कृष्टता और संवेदना पर विशेष बल दें। राज्यपाल आज रविन्द्र भवन के हंस ध्वनि सभागार में आयोजित सिस्टिक गौरी समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जीवन में संवेदना का भाव ही सबसे महत्वपूर्ण हुआ करता है। ममता और करुणा का मोल पैसों से कहीं ज्यादा हुआ करता है, इसलिए भावी जीवन में सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ते हुए कभी भी उन लोगों को नहीं भूलें जिन्होंने आपका सहयोग किया है। स्वास्थ्य और शिशु कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 में उत्साहजनक बातें सामने आई हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत में मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण और वित्तीय सुरक्षा के क्षेत्र में तीव्र प्रगति के आंकड़े बताए गए हैं। ये सर्वेक्षण वर्ष 2023-24 के दौरान किया गया जिसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवार शामिल हुए। सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार भारत में संस्थागत प्रसव वर्ष 2019 से वर्ष 2021 में 88.6% से बढ़कर 2023-24 में 90.6% हो गए हैं। बात मौसम की करते हैं, बारिश की आशा लगाए नागरिकों के लिए अच्छी खबर है। मानसून ने एक बार फिर से गति पकड़ ली है। अगले 4 से 5 दिन के भीतर केरलम और तमिलनाडु में मानसून के पहुंचने के लिए वातावरण की परिस्थितियां तेजी से अनुकूल हो रही हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तथा लक्षद्वीप और कन्याकुमारी क्षेत्र के कुछ इलाकों में मानसून आगे बढ़ रहा है। इधर नौतपा के बीच मध्य प्रदेश के मौसम ने अचानक करवट बदली है। पिछले 24 घंटों में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है, जबकि शेष इलाकों में खासी गर्मी पड़ रही है। प्रदेश के छिंदवाड़ा और सिवनी जिलों में तो रातें भी बहुत गर्म रही है। इस दौरान नरसिंहपुर का अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसी क्रम में राजगढ़ में 42

खरगोन में 41.6, भोपाल में 40 और इंदौर में 38.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इधर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, दतिया, भिंड, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा आधे से अधिक प्रदेश में आंधी तूफान की परिस्थिति भी निर्मित हो सकती है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। मंडला जिले में आज वन्य जीव संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्य जीव अनुश्रवण कार्य को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कान्हा टाइगर रिजर्व में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। विधायक बैतूल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने आज नगर पालिका बैतूल अंतर्गत विभिन्न विकास परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। शहडोल जिले में इस साल समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी लक्ष्य से अधिक हुई है। 25,000 मीट्रिक गेहूं खरीदी का लक्ष्य रखा गया था, जबकि इस साल 29,244 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। सीहोर जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत अब तक 2,555 चेक डैम निर्माण, 10 तालाब निर्माण, 17 सोसर निर्माण और 4 तालाब गहरीकरण जैसे कार्य लक्ष्य के अनुरूप पूर्ण किए गए हैं। नीमच जिला चिकित्सालय के रेडक्रॉस सभागार में वृद्धजनों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। झाबुआ के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ बीएस बघेल ने आज जिला अस्पताल झाबुआ के ब्लड स्टोरेज सेंटर का निरीक्षण किया और आमजन को रक्तदान के महत्व की जानकारी दी। छिंदवाड़ा जिले में स्कूल छोड़ चुके या नियमित रूप से स्कूल नहीं जा रहे बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिलाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा विशेष प्रयास किए जाएंगे। खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड खंडवा द्वारा वर्ष 2026-27 में कौशल विकास कार्यक्रम अंतर्गत जिले के बेरोजगार युवक और युवतियों को विभिन्न व्यवसायों में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। और हार्निया रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा समय पर उपचार के लिए नौर में 2 दिवसीय निःशुल्क हार्निया जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। खेत बचाओ अभियान युद्ध स्तर पर किया जाएगा संचालित, कहा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है सेना और मानसून ने पकड़ी है रफ्तार। इधर प्रदेश के मौसम ने बदली करवट। इस बुलेटिन में इतना है, अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। अभी दीजिए आगे, नमस्कार।

0: एफएम बैंड 103.1 MHz पर ही आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी। आज की हमारी श्रृंखला आज की बात आकाशवाणी गांव में ग्राम बज्जरवाड़ा एवं ग्राम चेचलढारा में आयोजित कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
1: किसान वाणी

जय राम जी की किसान भाइयों, मैं हूँ आपका दोस्त आपका साथी राकेश मौर्य और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से। ये कार्यक्रम आप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन रहे हैं दुनिया के किसी भी कोने से। हमारे सभी किसान भाइयों बहनों का, माताओं बहनों का हम दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं आज शनिवार का दिन है और महीने के आखिरी शनिवार को हम बात करते हैं हमारे गांव की, यानी

0: किसान वाणी गांव में किसानों के मध्य। वैसे तो आकाशवाणी का माइक्रोफोन इस खास दिन के प्रसारण के लिए किसी एक गांव में पहुंचता है, लेकिन आज के अंक में हम आपको दो गांवों की सैर कराएंगे, यानी दो गांवों के ग्रामीणों से हम रूबरू होंगे। चलिए बताते हैं पहला गांव कौन सा है। भाइयों, बैतूल से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बज्जरवाड़ा गांव, ये वही गांव है भाइयों। जब हम बैतूल से इटारसी की तरफ जाते हैं, पाढ़र के पहले मुख्य सड़क से सीधे हाथ की तरफ करीब 2.5 से 3 किलोमीटर अंदर की तरफ पड़ता है, प्रधानमंत्री सड़क से इस गांव तक पहुंचना पड़ता है। अब बताते हैं दूसरा गांव। बैतूल से परतवाड़ा मार्ग पर 18 किलोमीटर की दूरी पर है खेड़ी सावलीगढ़। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो पुण्य सलिला माता ताप्ती के दर्शन होते हैं। गांव पड़ता है ताप्ती, लेकिन ताप्ती पुल के पहले बाएं हाथ पर एक रास्ता जाता है ग्राम सराड़ की तरफ, और सराड़ ग्राम पंचायत है। ये गांव अपनी खेती और मेहनती किसानों के लिए जाना जाता है। लेकिन भाइयों, आज हम तीसरे गांव की बात करेंगे, ग्राम चिचढाना की। सराड़ ग्राम पंचायत का एक गांव है चिचढाना, जो सराड़ गांव को क्रॉस करते हैं। सराड़ गांव को जब हम पार करते हैं तो हम आगे पहुंचते हैं। पिछले गुरुवार को यहां पर कृषि चौपाल लगी थी, और क्या नजारा था भाइयों। वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विजय वर्मा ने खुद खेत में उतरकर किसानों को बताया कि मिट्टी का सही सैंपल कैसे लेते हैं।
1: जैसा उस दिन की बैठक में हम लोगों की चर्चा हुई थी कि मिट्टी का नमूना तैयार कैसे करते हैं, तो उस दिन हम लोगों ने जो वहाँ बैठ के चर्चा की थी कि एक खेत में कम से कम 5 या 6 स्थान से हमको मिट्टी एकत्रित करना चाहिए। उसके लिए वी आकार का ऐसा एक गड्ढा बनाने की बात हम लोगों ने की थी, और उसकी दोनों दीवार से उसकी बीच की जितनी भी मिट्टी है वो हम अलग कर देंगे। जो हम गड्ढा बनाएंगे तो उसके बीच की जो भी मिट्टी निकलेगी वो हम अलग कर देंगे। फिर एक दो दीवार हमारी तैयार होती है, एक इधर से एक इधर से, उसको हम खुरच के मिट्टी को जमा करेंगे। तो उस दिन हमने केवल बातों में आपसे बात की थी। आज अपन जो कार्य कर रहे हैं उसको प्रायोगिक रूप में कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने ये जैसे इस खेत में यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये पहले स्थल का हमने चयन किया है। उसमें ऊपर से जो भी कचरा वगैरह था, जो फसल के अवशेष थे, वो हमने यहाँ से हटा दिए हैं, और अब हम यहाँ पर वी आकार का एक गड्ढा तैयार करेंगे। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो किसान भाई यहाँ एकत्रित हैं वे स्वयं आकर यहाँ पर वी आकार का गड्ढा बनाए। कोई भी दो लोग आप आइए और वी आकार का गड्ढा यहाँ पर बनाइए।
2: तो मदद करेंगे कैसे अपने को गड्ढा करना है, सर बताते जाएंगे कैसे आप करते
1: जाएंगे। बनाइए आप लोग इसको,
2: बैठ जाओ आराम से,
1: आराम से बैठ के एक कोई और आ जाओ भाई, मट्टी निकाल लेना।
2: चौड़ाई वगैरह कुछ रहती है सर क्या?
1: नहीं, वो बस अपने को मिट्टी खुरचना है उसके हिसाब से।
2: गहराई वगैरह का कुछ?
1: 9 इंच का है।
2: 9 इंच की गहराई रहती
1: है? 9 इंच की गहराई अपन रखेंगे जी। ये 9 इंच की गहराई रखने के पीछे एक कारण है कि 9 इंच गहराई तक, ये जो 9 इंच का अपन गहराई लेते हैं, ये कौन फसलों के लिए लेते हैं? गेहूँ, चना, मक्का, जो भी हम फसल लगाते हैं। और जब हम कोई बगीचा लगाते हैं, बगीचा मतलब आम का, अमरूद का, नींबू का, चीकू का, कटहल का, जो कोई बगीचा लगाते हैं, तो उसमें 60 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदा जाता है, क्योंकि उसकी जड़ें क्या है, अंदर तक जाती हैं। और हमारी फसलों की जो जड़ें हैं वो मैक्सिमम 9 इंच की गहराई तक जाती है। तो हमको 9 इंच तक हमारी मिट्टी में किस प्रकार के पोषक तत्व तो उपलब्ध है, ये जानकारी ज्ञात करना है। और अभी हम लोग मिट्टी का नमूना लेने का जो काम करते हैं, तो क्या करते हैं, खेत में जाते हैं, किसी भी जगह की मिट्टी को इकट्ठी कर लेते हैं और एक पॉलिथीन में भर के दे देते हैं। तो आपका जो रिपोर्ट आता है वो सही नहीं आता है, और जब तक हमको हमारी जमीन की रिपोर्ट सही नहीं मिलेगी तो आप कैसे उसमें उर्वरक का प्रबंधन करेंगे या फसल का चयन करेंगे। इसलिए इसको सबसे महत्वपूर्ण है मिट्टी का नमूना कैसे लें। अगर आपने मिट्टी का नमूना सही ले लिया तो आपको आपकी जमीन की तासीर का सही पता चलेगा। तो उसी के संबंध में आज अपन ये काम कर रहे हैं और आप लोग ध्यान से इसको देखें। ज्यादा से ज्यादा एक खेत की मिट्टी का नमूना तैयार करने में हमको एक घंटा लगेगा, एक घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। पर केवल वो एक घंटे की जो काम करने की हमारी इच्छा नहीं होती है उसके कारण हम ना तो सही नमूना तैयार कर पाते हैं ना हम सही तरीके से अपनी जमीन के बारे में जान पाते हैं। तो आज हमारा उद्देश्य मात्र ये है कि आप लोगों के बीच में इसको प्रायोगिक रूप में करा के आपको प्रेरित करना है कि आप अपनी मिट्टी का नमूना स्वयं बनाएं। किसी के भरोसे ना रहें कि वो बाबूजी आएंगे वो नमूना ले जाएंगे और हमको रिपोर्ट ला देंगे, वो नहीं करें। क्योंकि ये जमीन हमारी है और इस जमीन की तासीर को जानना हमारा काम है। नहीं तो इसमें हमारे जमीन का पीएच मान क्या है, कि हमारी जमीन की विद्युत चालकता क्या है, हमारी जमीन में आर्गेनिक कार्बन कितना उपलब्ध है, कितना नाइट्रोजन, कितना फास्फोरस, कितना पोटास उपलब्ध है, ये जानकारी हमको होना चाहिए। उसी के तहत आज हम लोग ये कार्यक्रम यहाँ पर रख रहे हैं और आप सभी से हमारा निवेदन है, जितने भी लोग यहाँ एकत्रित हैं उनसे भी और जो यहाँ नहीं आ पाए हैं उनसे भी, कि सभी लोग अपने अपने खेत का मिट्टी का नमूना अपने हाथ से तैयार करें और उसको जांच के लिए दें, ताकि आपको सही तरीके से पता चल सके कि हमारी जमीन में क्या क्या उपलब्ध है। अभी हम दो बोरी यूरिया डालते हैं, हो सकता है मिट्टी की जांच करा लें तो आपको आधी बोरी यूरिया डालने की जरूरत हो, या हो सकता है तीन बोरी यूरिया डालने की जरूरत हो। तो थोड़ी सी गलती से हम लोगों का पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है और जो भी अधिक रसायन का आप लोग उपयोग कर रहे हैं उससे हमारी जमीन के स्वास्थ्य में बिगाड़ हो रहा है।
2: अच्छा सर, ये मिट्टी परीक्षण के फायदे भी आपको पता है, किसकी क्या फायदा है मिट्टी परीक्षण का, बोलिए जोर से।
1: बस हो गया,
2: फायदे भी आपको बताएंगे अभी।
1: ये आपका हो गया बेटा, हो गया आप, हो गया।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: अब हमको क्या करना है वो निकालने के लिए, लाओ कोई लकड़ी आपके पास, अंदर की मिट्टी आपने सब फेंक दी। अब हमको ये जो हमारे पास है इसमें हम किसी धातु का उपयोग नहीं करेंगे, कोई भी धातु, मतलब सब्बल या गैची उसकी वो नहीं। अब आप ये लकड़ी से इस तरह से इसकी मिट्टी को ऐसे ऊपर से लेके नीचे तक यूं ऐसे गिराते जाएंगे, ऐसी है ना, ये जा रही है मिट्टी, ऐसी जा रही है। ये मिट्टी को आप इधर से भी ऐसे गिराएंगे और इधर से भी गिराएंगे, है ना, ऐसे ऐसे आप गिराइए और फिर उस मिट्टी को जमा कीजिए ऊपर से नीचे तक ऐसी।
7: ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है,
6: ये सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इसको ऐसे करिए आप। अब वो दीवार, ये दीवार, वो दीवार नहीं, वो नहीं, बस इधर वो दीवार और ये दीवार, आमने सामने वाली दीवार जो है, इनकी मिट्टी ऊपर से नीचे तक, ऊपर से आराम से बैठ के निकाल लो, ऊपर से नीचे तक ये मिट्टी जाएगी, नीचे तक खुरच के। अब इस साइड

0: फिर उस साइड की, फिर इस साइड की, इस प्रकार की प्रक्रिया आप करिए। हो गया। अब इस मिट्टी को भैया जमा करो तसले में।
1: अब ये गमेले में इसको जमा करो।
0: अब इसको गमेले में जमा करो। फिर से एक बार और खुदत लो थोड़ी थोड़ी।
1: इसमें से लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है क्या बरसते समय? पूरा
0: बरसते समय क्या होता है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट टेस्ट भी होते हैं उसमें आयरन का भी टेस्ट होता है।
1: अच्छा,
0: है ना। अब ध्यान रखने के लिए ये जरूरी है।
1: लोहा,
0: आयरन यानी लोहा। लोहा भी हमारे फसलों के लिए एक पोषक तत्व तो है
1: जी।
0: है ना। तो जब हम उसका टेस्ट करते हैं तो इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की धातु का प्रयोग नहीं।

0: उसमें आयरन का भी टेस्ट होता है।
1: अच्छा,
0: है ना। अब ध्यान रखने के लिए ये जरूरी,
1: आयरन यानी
0: लोहा, आयरन यानी लोहा, लोहा भी हमारे फसलों के लिए एक पोषक तत्व है, है ना। तो जब हम उसका टेस्ट करते हैं तो इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की धातु का प्रयोग नहीं करते हैं।
1: ये बात आप लोग समझ लीजिए,
0: है ना। और इसके बाद अब इस मिट्टी को हमने ये तसले में जमा कर दिया, ये हमारे पास एक स्थान की मिट्टी होगी भैया, ये एक ही स्थान की हुई ना, ये लगभग 1.5 किलो मिट्टी होगी। तो अब ऐसे आप 4 या 5 जगह से जब इकट्ठा करोगे तो कितनी मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी, 8 से 10 किलो। अब हमको सैंपल बनाने के लिए जो करना पड़ता है वो अपन खैर आगामी उसमें करेंगे, पर ये जो मिट्टी इकट्ठी हुई है अब इसमें आपको, अभी हम मान लेते हैं कि ये 5-6 स्थान की ली गई है,
1: ये इसी को,
0: इसको हमने मान लिया है। अब इस मिट्टी में हमको क्या करना है, अगर कंकड़ पत्थर हैं, अगर कंकड़ पत्थर हैं तो उसको अलग कर देंगे, समझ गए बात। कोई कंकड़ पत्थर अगर होगा तो हम उसको अलग कर देंगे, कचरा होगा उसको अलग कर देंगे। अगर ये कभी कुछ गीली है, थोड़ी नमी है उसमें, तो इसको हल्की धूप में फैला देंगे। और उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है कि इस मिट्टी के फिर हम 4-4 हिस्से बनाते जाते हैं और 3 हिस्से फेंकते जाते हैं, और ऐसा तब तक करते हैं जब केवल 0.5 किलो मिट्टी हमारे पास, एक अंदाज होता है 0.5 किलो का आप लोगों को सबको वो होगा, तो 0.5 किलो के करीब मिट्टी हमारी हम सैंपल बना लेते हैं। तो जब एक स्थान से लिया, दूसरे स्थान से लिया, तीसरे स्थान से लिया, चौथे स्थान से लिया, पांचवे स्थान से लिया, ऐसा 4 या 5 स्थान से हमने मिट्टी ले, हैं हाँ, ऐसे 4 हिस्से किए, अब एक हिस्सा हम रख लेंगे और बाकी के फेंकते जाएंगे। ऐसा कब तक करेंगे, जब 0.5 किलो मिट्टी बचेगी। फिर क्या करना है 0.5 किलो मिट्टी के बाद, उसको देख लेना है कि उसमें कोई कंकड़ पत्थर नहीं है, कोई कचरा तो नहीं है, गीली है तो उसको सुखा लेंगे। अब ये खेत में हमने 5 स्थान से लिया, ले लिया ये खेत का, उस समय हमको केवल इन बातों का ध्यान रखना, जैसे ये पेड़ है सामने, इसके नीचे का नमूना नहीं लेना, जहाँ से आपका पानी का डांड जाता है ना, पानी का डांड क्या समझते हो, वो डांड जहाँ से पानी का जाता है वहां का नमूना नहीं लेना, और उस स्थान का भी नमूना नहीं लेना है जहाँ पर हम लोग गोबर का वो बनाते हैं ना, घूरा बनाते हैं, या आपका घूरे गड्ढा हो, उस स्थान की भी मिट्टी का नमूना नहीं लेना है। अगर उस स्थान की भी मिट्टी का आप नमूना लेंगे तो आपके जो रिजल्ट है उसमें परिवर्तन आ जाएगा और सही जानकारी हमको नहीं मिलेगी। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। अब इसका जो सही समय है वो अभी ही है, फसल कटाई आपकी हो गई, 15 जून को आप दूसरी फसल बोने चले जाओगे, जब दूसरी फसल बोगे तो आप उसमें फिर कुछ ना कुछ उर्वरक का प्रयोग करोगे, यूरिया डीएपी फलाना ढिकाना कुछ भी डालोगे, और उसके बाद अगर नमूना लोगे तो फिर सही रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो ये 15 जून तक का जो समय होता है, मतलब हमारी फसल कटती है लगभग 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल से 15 जून के बीच का जो समय है वो मिट्टी के नमूना को लेने का सबसे उपयुक्त समय है। तो एक एक खेत का, अब जैसे ये नमूना बन गया, 0.5 किलो मिट्टी तैयार हो गई, तो फिर हमको या तो वो कृषि विभाग से थैलियां मिलेंगी, अगर वो थैलियां आपके पास उपलब्ध ना हो तो आप जो पॉलीथीन होती है ना, अच्छी साफ पॉलीथीन, ऐसा नहीं कि वो नमकीन की पॉलीथीन में भर दिया या बिस्किट की पॉलीथीन में भर दिया, साफ पॉलीथीन ले लीजिए, उसमें उस 0.5 किलो मिट्टी को भर के और ऊपर से बांध दीजिए, और उसमें एक पर्ची तैयार कीजिए। जैसे ये खेत होगा तो इसका कोई नाम होगा आपका, आप रखते होंगे ना कि वो बड़ वाला, बरगद वाला, आम वाला, ऐसे नाम रहते हैं किसान के खेत में, रहते हैं ना नाम, कोई कुछ अपने अपने हिसाब से नाम रख लेता, वो रख दीजिए। फिर आपके पास उस खेत का खसरा नंबर होगा, सभी किसान के पास रहता है खसरा नंबर डाल दीजिए, किसान का नाम डाल दीजिए, गांव का नाम डाल दीजिए, और उस पर्ची को उस नमूने में रख दीजिए, और उस नमूने को फिर या तो स्वयं जाके लैब में डालिए, जो लैब है

0: आजकल हर विकास खंड में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है। और अगर आपको ये बैतूल विकास खंड है, बैतूल विकास खंड के लिए जो हमारा बैतूल बाजार है, बैतूल बाजार में इसकी प्रयोगशाला है, वहां अगर आप स्वयं पहुंचा के आएंगे तो उसका एक फायदा क्या होगा कि जब किसान स्वयं जाके नमूना देता है तो वो लैब वाला उसको 8 दिन के भीतर टेस्ट करके रिपोर्ट आपको उपलब्ध करा देता है। और जब वो बहुत सारे मात्रा में जाते हैं, बहुत सारे मात्रा में, तो आप जब एक बोरी में 200 सैंपल रखोगे तो क्या होगा, वो पॉलिथीन या थैली फट गई तो आपका नमूना गड़बड़ हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा। जैसे इतने सारे लोगों का हम खून का नमूना लें और खून का नमूना कहीं एक जगह रख के और उसको कहीं पहुंचाएं, तो हो सकता है उसमें गलती हो जाए कि ये भैया का नमूना ये भैया के उसमें चला गया और ये वाले भैया का ये वाले में चला गया, तो रिपोर्ट गड़बड़ हो जाएगी। उसी प्रकार से 100-200 नमूने जब हम कहीं भिजवाते हैं
1: तो कपड़े की थैली देखिए सर,
0: हाँ कपड़े की थैली भी फट सकती है, फट सकती है ना।
2: कपड़े की थैली अभी वो देंगे आपको,
0: हाँ अगर वो देते हैं अच्छी बात है, अच्छी थैली हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर क्या होता है उस समय में भी जो हुआ होगा, तो क्या हुआ, आप गए कहीं से भी मिट्टी निकाली और भर के दे दी होगी। तो नमूना लेना सबसे इम्पोर्टेंट है। नमूना लेते वक्त अगर आप सावधानी रख के और सही तरीके से नमूना लेके लैब में पहुंचाएंगे तो आपकी खेत की सही जानकारी आपको मिलेगी।
3: कल सुबह 9 बजे आने वाली है,
0: हाँ तो ठीक है, आप मैडम के साथ भी ये सब चर्चा कर लीजिए और मैडम के माध्यम से इन नमूनों को आप वहाँ पहुंचा दीजिए, तो निश्चित रूप से आपको सही रिपोर्ट, 8 दिन 10 दिन लगते हैं, ये 8-10 दिन 10 दिन में अगर आपको मिल जाएगा तो आने वाला जो सीजन है ना, अभी हमारा खरीफ का सीजन आ रहा है, उसमें फिर अपने को प्लान करने में बड़ा आराम हो जाएगा। अपने समझ में आ जाएगा कि इस गांव में वास्तविकता में किस प्रकार से उर्वरक प्रबंधन

0: आप फिर जो भी काम है वो हम लोग आपके साथ बैठ के अपन उसकी चर्चा करेंगे, पर इसमें वही अभी टाइम लिमिट है कि हमको 15 जून के पहले पहले यानी बरसात आने के पहले पहले अपने खेत का नमूना लेना आवश्यक है। तो ये काम आपको करना है, आप लोगों को मिल के करना है। तो ये काम आप लोग अगर कर देंगे तो अपनी आगे की जो योजना है वो समय पे तैयार अपन कर लेंगे, और अगर उसमें लेट हो जाएंगे तो फिर एक वर्ष पीछे अपन चले जाएंगे। तो अभी आपके गांव में हम लोगों ने जो प्रयास किया है और ये जो हमारी दिशा दृष्टि फाउंडेशन के माध्यम से आप लोगों को उसका लाभ मिले, आप लोगों की आर्थिक उन्नति हो, इसके तहत इन लोगों ने प्रयास किया है। और प्राकृतिक रूप से आपका जो गांव है वो भरपूर है, यहाँ सब कुछ उपलब्ध है, पानी की उपलब्धता है, प्रकृति ने जो भी यहाँ उपलब्ध कराया है वो आप लोगों के लिए बहुत काम का है। पर केवल जमीन के तासीर को नहीं जानने के कारण और अज्ञानता में जो गलती हमसे होती है उसका नुकसान जो हमारी फसलों को और हम लोगों को होता है उसको दूर करने का एक प्रयास है, और उसी के लिए सबसे पहला काम हमारा जो होगा वो मिट्टी का नमूना लेकर मिट्टी की जांच कराने का काम होगा। और दूसरा काम, जब हम मिट्टी की जांच करा लेंगे उसके बारे में समझ लेंगे कि वास्तव में उसमें कमी क्या है, बीमारी क्या है, तो वो जब जांच लेंगे तो अपन उसका इलाज करेंगे तो हमारी मिट्टी स्वस्थ होगी। तो आप लोगों से निवेदन कि अभी भी हमारे पास, आज हम 27 मई है और अभी भी हमारे पास 17-18 दिन का समय है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक किसान को अपने खेत का नमूना लेने में मात्र 1 घंटा खर्च करना होगा। अगर वो खर्च कर लेता है तो आप, जैसी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है कि यहाँ पे 101 किसान होंगे या 100-150 खेत होंगे, तो हम 100-150 घंटे अगर सब लोग मिलकर खर्च करेंगे तो पूरे गांव का मिट्टी का नमूना हमारा जमा हो जाएगा। तो एक बार फिर आप लोगों से निवेदन है कि इस काम में आप लोग रुचि लीजिए, और आप किसी और के लिए नहीं, अपनी ये जो भूमि है, ये जो धरती माता है, इसका स्वास्थ्य कैसे सुधारें इसमें आप लोग योगदान दीजिए। भूमि सुपोषण अभियान, आज देश में अगर कृषि को आगे ले जाना है तो सबसे पहला काम है भूमि को सुपोषित करना। तो भूमि को सुपोषित करने का काम हम लोगों का ही है, जिसकी भूमि है, जिसके कब्जे में वो भूमि है, उसका दायित्व है कि वो उसको सुपोषित करने में अपना योगदान दे। और उसी कार्यक्रम के तहत आज हम लोगों ने यहाँ पर एकत्रित होकर आप लोगों के बीच में ये मिट्टी का नमूना कैसे लेना है इसकी जानकारी दी।
1: समझ गए हैं सब साहब ने, क्या बताइए हमको कैसे मिट्टी का नमूना लेना है? किसी का कोई प्रश्न है क्या?
2: नहीं सर, वो पहले क्या होता था, पहले क्या होता था, जैसे अपन किसान उनको बोले कि जाओ मिट्टी लाओ तो वो अपने कोई भी कोने से उठा के लाते थे।
1: अच्छा,
2: वो उठा के लाने के बाद में अपन ने जो भी पॉलिथीन में देते थे उसमें उनका जो सैंपल लेने का रिजल्ट लोगों को मिला नहीं।
1: हाँ, सही रिजल्ट नहीं आया,
2: सही रिजल्ट मिला नहीं, ना पता भी नहीं चला उनको। अब जब ये अपन ने अभी आप सर ने बताया कि इतना इंच गड्ढा खोदने से ऐसे मटेरियल निकाले तो अपने को मतलब रिजल्ट मिलेगा
1: और समझ में आया कि कैसे लेना है, सही
2: कैसे लेना है।
1: चलिए, तो आप ऐसे ही सैंपल लेना है ना, आगे
2: सब लोगों को ऐसे ही सैंपल लेना है सर।
1: बिल्कुल,
3: डॉक्टर साहब ने बताया यहाँ पर कि 9 इंच गहरा वी आकार का गड्ढा खोदो भाइयों, दीवार से मिट्टी खोर्चो, लेकिन खबरदार पेड़ की छांव में गोबर वाली जगह जहाँ पानी थमता हो वहां से सैंपल मत लेना, वो मिट्टी झूठ बोलेगी। 5-6 जगह से मिट्टी लेकर मिलाओ, 4 हिस्से करो, 1 रखो, आधा किलो बचने तक यही करो, फिर थैली पर नाम, आधार, खसरा नंबर लिखकर जांच के लिए भेज दो। किसान भाइयों ने उसी दिन संकल्प लिया यहाँ के गांव के कि अब जांच कराए बिना हम खाद नहीं डालेंगे और प्राकृतिक खेती करेंगे। चलिए, चिचढाना गांव से निकलकर अब चलते हैं ग्राम बज्जरवाड़ा। यहाँ के ग्रामीण भी बेसब्री से हमारा इंतजार कर रहे थे। हम जैसे ही पहुँचे हमने हमारी बातचीत शुरू कर दी।
1: तो भैया
4: भैया सब लोगों को जय राम जी की।
5: जय राम जी।
4: तो भैया जयराम जी की हो गई है, अब कैसे क्या गांव के हालचाल आप लोगों के? सब बढ़िया
5: बढ़िया।
4: चलिए तो अब सबसे पहले तो चौपाल पर हम आप सभी का नाम जानना चाहेंगे, बारी बारी से आप अपना नाम को नाम बताते जाइएगा। आपका क्या नाम है भैया?
6: जी परसराम उइके।
4: जी आपका?
7: सरवन उइके।
4: आपका क्या?
7: बबलू मर्स कोले।
4: आपका?
8: गोरेलाल ध्रुवे।
9: राधे लाल कुमरे।
10: सूरज उइके।
4: चलिए अपन ने गाँव के सभी लोगों से परिचय प्राप्त किया, चलिए अब हम शुरू करते हैं बातचीत। तो सबका परिचय हो गया है तो आपसे शुरू करते हैं बातचीत। ग्राम बज्जरवाड़ा में हैं हम, तो एक बार हम आपका परिचय जानना चाहेंगे।
6: जी परसराम उइके।
4: उइके जी आप इसी गांव के निवासी?
6: जी जी।
4: अच्छा, मुख्यतः आप यहां पर क्या काम करते हैं?
6: सर खेती,
4: खेती बाड़ी करते हैं। कहीं शिक्षा आपका कहाँ तक क्या
6: सर? टेंथ।
4: टेंथ तक है जी। कितने वर्षों से आप कृषि कर रहे हैं?
6: सर हो गया 20 साल।
4: 20 साल का काफी लंबा अनुभव। अच्छा आपकी एज कितनी है, उम्र कितनी?
6: सर 38।
4: यानी आप काफी बचपन से खेती में?
6: हाँ, बचपन।
4: क्या अनुभव है आपका खेती का, कैसी लगती है आपको?
6: नहीं बढ़िया बिल्कुल, तो शुरू से खेती करते हैं तो।
4: अच्छा अच्छा, क्या क्या लगाते हैं आपके खेतों में?
6: सर गेहूँ और बारिश में मक्के वक्के और थोड़ा बहुत रोपा धान वाली।
4: अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए अगले हमारे जो भाई हैं ग्रामीण भाई हैं, आपका परिचय?
11: सरवन उइके।
4: सरवन भैया आप बताइए आप क्या करते हैं?
11: खेती करते हैं।
4: आप भी खेती करते हैं, कितने वर्षों से आप कर रहे हैं खेती?
11: सर 10-12 से।
4: 10-12 सालों से खेती कर रहे हैं ना। अच्छा आपका परिचय बताइए?
7: बबलू मर्स कोले।
4: अच्छा बबलू भैया कितने साल से आप कर रहे हैं खेती?
7: अभी तो खेती में 10-1 साल से कर रहा हूँ, वर्तमान में अभी 5-1 साल हुआ, मैं मिस्त्री काम करता हूँ अभी।
4: राजमिस्त्री?
7: हाँ राजमिस्त्री का काम।
4: राजमिस्त्री का? चलिए तो ये भी एक कला है। हाँ। राजमिस्त्री का जो काम है ये भी एक कला है। आपका परिचय हम जानना चाहेंगे।
12: गोरेलाल ध्रुवे हैं।
4: अच्छा गोरेलाल भैया आप क्या काम करते हैं?
12: भैया मैं मेहनत मजदूरी पे करता हूँ।
4: अच्छा अच्छा, खेती किसानी मजदूरी दोनों करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम आपका परिचय भी जानना चाहेंगे।
9: जी मेरा नाम राधेलाल कुमरे है।
4: अच्छा राधेलाल भैया क्या आपका कैसा क्या काम धंधा है?
9: मैं भी खेती बाड़ी पर ही निर्भर हूँ।
4: अच्छा अच्छा अच्छा।
9: और अभी अभी नया इसके हमने चालू किया होम स्टे।
4: अच्छा यहाँ पर?
9: हाँ, तो उसमें भी मैं थोड़ा इंटरेस्ट ले रहा हूँ।
4: अरे वाह बहुत अच्छा। होम स्टे यानी ये जो मध्य प्रदेश का पर्यटन विभाग है जो होम स्टे को संचालित करता है और गांव-गांव में होम स्टे बनाए जा रहे हैं, तो ताकि शहर से लोग आए और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दें।
9: हाँ हाँ, हमारे ग्रामीण कल्चर उनको दिखाएंगे हम लोग। हाँ। कि हमारे गांव में किस प्रकार की व्यंजन और खेती करते हैं। अच्छा। इसके बारे में हम हमारे गांव के बारे में उनको बताएंगे।
4: काका जी जयराम जी के, आपका नाम परिचय जानना चाहिए?
13: सूरज उइके, हम खेती करते हैं।
4: अरे वाह, कितने वर्षों से आप कर रहे हैं खेती?
13: खेती तो अपन बचपन से ही खेती समझ,
4: बचपन से कर रहे हैं ना। चलिए बहुत अच्छा, तो एक तरीके से आप सबसे हमने भाई परिचय भी ले लिया है श्रोताओं, और सबने बता दिया कि सब लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। और हमारे एक जो भैया हैं वो राजमिस्त्री का भी काम करते हैं, बहुत अच्छा, करीब 4-5 साल से कर रहे हैं। तो हम बात शुरू करेंगे अपने होम स्टे वाले प्रोजेक्ट से जो अभी अभी यहाँ पे शुरू हुआ है, तो बताइएगा होम स्टे के विषय में।
9: होम स्टे में हम ये चाह रहे कि गांव में सबका सपोर्ट रहे और हम होम स्टे के माध्यम से सबको रोजगार दें।
4: अच्छा, कैसा तैयारी हुई आपके गांव में होम स्टे की?
9: ये हमारे को एक बैक टू विलेज के माध्यम से मिला है हमको, तो उसके माध्यम से हमको यहाँ पे 7 होम स्टे बनाए। 7 में अभी 5 कंप्लीट हो चुके हैं, 2 के अभी काम चालू है।
4: 7 होम स्टे में से 5 आपके बन गए हैं, तो अभी इसका जो उद्घाटन है शुभारंभ है कब हुआ है आपको, इसमें कौन कौन अतिथि आए थे आपके?
9: ये अभी 17 मई को हुआ है, इसमें हमारे विधायक मैडम जी थी और राज्य मंत्री अपने दुर्गादास उइके जी थे, मंगल सिंह ध्रुवे जी थे और भी मंत्री लोग थे।
4: जी जी, जन अभियान परिषद से?
9: हाँ, जन अभियान परिषद से हमारे श्री नागर जी भी थे, मोहन नागर जी।
4: जी जी जी।
9: ये भी आए थे।

0: अच्छा, एक आपने इसका शुभारंभ तो कर दिया है, अभी कोई आपके यहाँ अतिथि मेहमान वगैरह आया इसमें?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं आया, अभी तो अभी जस्ट 17 मई को तो चालू हुई, उद्घाटन हुआ है
0: 17 मई को। हाँ मतलब आज तो 22-23 तारीख की बात कर रहे हैं, अभी एक हफ्ता हुआ है इसको।
1: हाँ एक हफ्ता हुआ है।
0: क्या लगता है आपको, आपके गाँव में इससे क्या फर्क आएगा?
1: लग तो रहा है कि कुछ काफी बाहर से जो लोग आएंगे
0: जी,
1: तो हमारे गांव को भी काफी प्रभाव पड़ेगा।
0: अच्छा अच्छा,
1: नए नए लोगों से मुलाकात होगी।
0: अच्छा, क्या क्या दिखाने के लिए है आपको गांव में, उनको जो बाहर से लोग आएंगे उनको किस प्रकार से आप तैयारी है आपकी?
1: हमारी तैयारी ये है कि हमारे गांव में किस प्रकार के नाच गाने होते, खेती परंपरागत तरीके से किस प्रकार से करते हैं, इसके बारे में बताएंगे हम उनको, और हमारे गांव का भ्रमण करके बताएंगे हमारे कि यहाँ क्या क्या चीजें हैं।
0: जी, तो अच्छा, लोक नृत्य वगैरह वो आपके गांव में होते हैं, लोकगीत कला मंडली है क्या?
1: हाँ हाँ है, हमारे गांव में डंडार मंडली है और लेडीजों के नृत्य भी है।
0: अच्छा अच्छा, तो अच्छा भोजन वगैरह किस प्रकार का परोसा जाएगा यहाँ पे?
1: भोजन अपना यही देसी तरीके से
0: जी,
1: देसी जो
0: क्या क्या आप खिलाएंगे लोगों को?
1: इसमें हम खिलाएंगे मोटे अनाज से, मक्का की रोटी है, कुटकी की चावल है
0: जी,
1: और ऐसे अपने गांव के।
0: अच्छा, जो भी गांव में आपके यहाँ खेती से उत्पादित होता है वो
1: खेती
0: है ना?
1: से उत्पादित होती है।
0: अच्छा, बहुत अच्छा। तो यहाँ मुझे बताइए, कोई आप जैसे खेती करते हैं तो प्राकृतिक खेती या जैविक खेती या रासायनिक खेती, तीन रासायनिक उर्वरकों का उपयोग भी होता है, तो कोई प्राकृतिक खेती करता है यहाँ?
1: हाँ करते हैं कुछ लोग।
0: हाँ अच्छा, चलिए अब हम बात करेंगे, हमारे बीच में और भैया हैं, जयराम जी।
2: जयराम जी की,
0: आपका नाम एक बार और बता दीजिए हमारे श्रोताओं को।
2: सूरज उइका हूँ, बजरवाड़ का रहने वाला हूँ।
0: सूरज भैया, यहाँ गांव में आप खेती करते हैं, क्या क्या लगाते हैं खेतों में आप?
2: गेहूं है, मक्का है, मूंगफली है।
0: तो कैसे करते हैं खेती, थोड़ा सा बताइए। मूंगफली की खेती कैसे करते हैं, उसके बारे में बता दीजिए।
2: वो हल से बोते हैं जोत के।
0: कैसे उसकी कैसी जमीन तैयार होती है, क्या
2: वो ट्रैक्टर से जोते हैं, हल से जोते हैं, वो हल से बोना पड़ता है उसको, मूंगफली को।
0: अच्छा अच्छा, ट्रैक्टर से नहीं होता?
2: नहीं, ट्रैक्टर से क्या, वो बीजे छिलका निकल जाता है उसका।
0: अच्छा
2: हाँ,
0: तो हल चलाना ही पड़ेगा।
2: हाँ, हल से ही बोते हैं, वही होता भी है। वो गहरे में जाता है, कल्टीवेटर से बोते ऊपर गिर जाता है।
0: अच्छा, तो बीज वगैरह कहाँ से लाते हैं?
2: अपने घर के रखते हैं,
0: अपने घर का बीज रहता है। और इसको कब लगाते हैं?
2: वो भी पानी गिरने में,
0: बारिश के टाइम लगता है।
2: इस साल तो बोया नहीं, तो मैं तो गर्मी में बोता था।
0: अच्छा, गर्मी में भी हो जाता है?
2: गर्मी में हो जाता है।
0: वाह, बहुत अच्छी बात है। तो कितना उत्पादन निकल जाता है, कैसे बताएंगे आप हमारे?
2: जैसे अपन एक कुड़ो बोएंगे तो 3-4 क्विंटल निकल जाता है, एक कुड़ो बीजे में 3-4 क्विंटल निकल जाता है।
0: अब इसको बेचने के लिए कहाँ जाते हैं?
2: बैतूल
0: मंडी में बिक जाता है।
2: मंडी में नहीं, ऐसे खुले बाजार में
0: बेच देते हैं, तो भाव ज्यादा मिलता है ना वहाँ, भाव ज्यादा मिलता है।
2: गीले में निकाल के बेच देते हैं, गीले में कम रेट में जाए तो इतना सा चढ़ता है। सूखे में
0: हाँ, गीले का वजन भी आता है लेकिन उसका भाव कम मिलता होगा ना।
1: स्वाद में भी
0: रहता
1: है।
0: अच्छा, ये तो मूंगफली की बात हो गई। अच्छा, गेहूं और मक्का हो गया, और सोयाबीन वगैरह?
2: नहीं, सोयाबीन नहीं बोते।
0: अब सोयाबीन बंद कर दिया? क्यों बंद किया सोयाबीन?
2: वो सोयाबीन होता ही नहीं है, इसलिए बंद कर दिया, एवरेज नहीं देता।
0: अच्छा अच्छा, तो चलो अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, अभी खेत में क्या लगा है कुछ?
2: अभी कुछ नहीं है, मूंग था काट लिए।
0: मूंग कट गया, कितना निकाले मूंग?
2: अभी तो निकाले भी नहीं, काट के रखे वहीं से।
0: अच्छा रखे हैं, चलो। अच्छा, गांव के बारे में कुछ बताइए, कैसा गांव है आपका?
2: गांव का तो सब खेती वाले है सब
0: यहाँ पे। अच्छा अच्छा, चलिए भैया, अब अगले हमारे जो भैया बैठे हैं उनसे हम बात करेंगे। आपका नाम बता दीजिए एक बार और।
3: बबलू मर्सकोले।
0: बबलू भैया, बजरवाड़ा गाँव में आप खेती भी करते हैं और राजमिस्त्री काम से भी जुड़े हुए हैं, तो पहले अपन बात खेती से शुरू करेंगे। खेती में क्या क्या लगाया है आप?
3: खेती में वर्तमान में गेहूं था, अभी तो कुछ नहीं है।
0: अच्छा, तो पानी की क्या साधन है?
3: पानी का साधन वैसे कुएं से सिंचाई करते हैं कम मात्रा में।
0: अच्छा, तो मिल जाता है कुएं?
3: हाँ, गेहूं के लायक संपन्न हो जाता है
0: जी। अच्छा एक बात है, कुआ है आपके यहाँ पे, तो कुएं में पानी रहता है साल भर?
3: हाँ साल भर कम मात्रा में रह जाता है, जैसे पर्याप्त हो जाता है।
1: गेहूँ तो बल जाता है?
3: हाँ गेहूँ हो जाता
1: है, ये थोड़ा गर्मी में ही थोड़ा सा। अच्छा दिक्कत आता है
0: तो पानी जैसे
4: पाल लेता है।
3: हाँ लेकिन कम मात्रा में रहते हैं इसलिए गेहूँ।
0: अच्छा एक चीज बताइए ना, जैसे कुएं में पानी कम हो जाता है, बारिश में जब बारिश का पानी आता है तो उसका रिचार्ज वगैरह करने की कोई व्यवस्था है आपके पास?
3: वैसे तो नहीं है, स्टोर करने की कोई ये नहीं है प्रावधान, जितना वो ऊपर वाले के जो देन उस क्षमता से
0: मतलब होते हैं। अच्छा और कौन कौन सी फसलें आप लगाते हैं?
3: बस गेहूँ मक्का, इसके अदरवाइज तो कुछ बोते नहीं है ऐसा।
0: और कुछ पेड़ वगैरह लगाने का, फल उद्यान वगैरह का?
3: फल उद्यान लगाने का तो कोई चैंबर पे ये
0: चाहते हैं। अरे वाह तो अच्छी बात है, फल उद्यान की बात करेंगे अब इनसे। आइए सबसे पहले आपका हम परिचय जाना। परसराम उइके जी, आप खेती बाड़ी करते हैं तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की खेती में आपकी रुचि रहती है?
5: सर जैसे अभी रवि की फसल है, बारिश की फसल है, दोनों।
0: अच्छा
5: यानी हाँ, और उसी के साथ साथ बगीचे भी अपना आम का नंदन फल उद्यान के द्वारा लगाए थे 2009 में, बढ़िया है अभी आम लगे हैं।
0: नंदन फल उद्यान योजना के तहत 2009 में आपने अपने खेत में फल उद्यान लगाया जी। अभी 2009 में लगा था मेरे का, अभी कितने बहुत सारे साल हो गए, 18 साल हो चुके हैं उसको, है ना? तो 18 साल हो गए हैं, कैसा रिस्पांस आया उसका?
5: सर बढ़िया है
0: ऐसा। कितने पेड़ लगाए हैं आपने?
5: सर वो 80 पेड़ आम के थे और आंवले के 76 थे।
0: आंवला और आम मिलाकर आपने लगाया?
5: हाँ।
0: तो अच्छा उत्पादन होता है?
5: नहीं सर आंवले में नहीं उतना प्रॉफिट, आम में है।
0: आंवले में क्यों कम हो गया
5: वो पता नहीं सर, वो
0: नहीं जो भी कारण है बताइए थोड़ा सा, हमारे जो श्रोताओं को भी पता चले कि क्या अनुभव आपका रहा।
5: नहीं उसमें एवरेज कम है, मतलब फल कम लगता है।
0: अच्छा कौन सी वैरायटी, हाइब्रिड थी कि देसी थी?
5: मोटी वाली
0: हाँ। ना तो आंवले का सीजन तो काफी अच्छा जाता है, आंवले की डिमांड भी अच्छी होती
5: है, पता नहीं सर।
0: तो कोई जमीन अमीन में कोई परेशानी थी? अच्छा मिट्टी परीक्षण आप करवाए खेतों का अपने?
5: करवाए सर लेकिन रिजल्ट नहीं आया
0: नहीं अभी उसका, वो सॉइल हेल्थ कार्ड आपको मिला नहीं है?
5: ना वो नहीं मिला।
0: कितने दिन पहले आपने सैंपल दिया
5: था? सर एक साल हो गया।
0: नहीं मिल जाता है जल्दी, आपने शायद उसके लिए प्रयास नहीं किया होगा या कार्यालय में आपने संपर्क नहीं किया होगा। आज आप सभी लोगों ने मैं हमारे साथ बैठकर जो बातचीत की है इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी मिलकर आप जय राम जी की करेंगे, आप सभी को जय राम जी की।
6: तो भाई वो चिचढ़ाना हो या बज्जरवाड़ा हो, बात एक ही है, अपनी मिट्टी को जानो तभी खेती में फायदा है। तो चलिए आपने किसान वाणी गांव में कार्यक्रम सुन लिया। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें आप चिट्ठी लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम किसान वाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बैतूल 400001। तो चलिए अब अगले कार्यक्रम में आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए अपने दोस्त राकेश मौर्य को अनुमति दीजिए। दोनों हाथ जोड़कर करते हैं आपको जय राम जी की, जय जवान जय किसान।
7: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
8: उतला बोल रहे
7: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
8: मतलब
7: देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता चलती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा,
8: पर हम तो सब नहीं डाले हैं।
7: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
8: सच है?
7: रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहा है, धूप में बाल समेत नहीं किए हैं।
8: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
9: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
10: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
11: किसान वाणी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का अपना पसंदीदा और लोकप्रिय कार्यक्रम किसान वाणी, और हम आपको सुना रहे थे किसान वाणी कार्यक्रम के अंतर्गत आकाशवाणी गांव में, जिसमें ग्राम बजरवाड़ एवं ग्राम चिजढाना में आयोजित कार्यक्रम की आप तक हमने रिकॉर्डिंग पहुंचाई। एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। यह प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम बातें नई गीत नए। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम नए गीत तो आपको सुनाते ही हैं, साथ में कुछ ऐसी नई बातें आप तक पहुंचाते हैं जो किसी इनोवेशन या किसी दुनिया भर में मानव विकास से संबंधित कोई बात या भारत कैसे आगे बढ़ रहा है, ऐसी कई नई बातें, कई चीजें जो आपके और हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, उस पर भी चर्चा करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे भारत का इंफॉर्मेशन 2026। दोस्तों, हम कई खोजों की बात करते हैं, कई नए इनोवेशंस की बात करते हैं, पर हमारे देश की आर्थिक स्थिति या किसी देश की उन्नति में उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा योगदान रहता है। तो भारत 2026 में ऐसा क्या करने जा रहा है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, या कर चुका है 2026 में, जिससे इस देश की अर्थव्यवस्था ही बदल जाएगी, आम जीवन सरल होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं हम भारत में भी देखेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं। साल 2026 भारत के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों से शुरू हुई विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अब हकीकत में बदलने लगे हैं, चाहे वो दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हो या समुद्र को चीरता हुआ पुल। भारत की रफ्तार अब दुनिया देख रही है। इंफ्राजंक्शन के समय में कई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था और हमारे यात्रा करने के तरीकों को पूरी तरह से बदलने जा रहा है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की। इसकी लंबाई करीब 1,346 किलोमीटर है और इसकी लागत है 1,00,000 करोड़। और ये एक्सप्रेसवे गुजरता है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से। इसका वर्तमान स्टेटस है कि अधिकांश हिस्से चालू हैं, पूरा कॉरिडोर 2026 के अंत तक चालू किए जाने का लक्ष्य है। इस एक्सप्रेसवे की खासियत रहेगी कि दिल्ली से मुंबई की यात्रा 24 घंटे से घटकर 12 से 13 घंटे रह जाएगी। तो ये नया इनोवेशन, नया इंफ्रा भारत के लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी और हमारे लिए एक नया अवसर लेकर आ रहा है। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं फिल्म दीवानियत का ये गाना।

दोस्तों, अब भारत के इंफ्रा जंक्शन की दूसरी बात हम करते हैं, जो दूसरा इंफ्रा जंक्शन है जिसे हमें वेटेज देना चाहिए या हमें खुश होना चाहिए, वो है वेस्टर्न व ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी डीएफसी। इसकी लंबाई करीब 3,300 किलोमीटर है। इसकी लागत लगभग 1.24 लाख करोड़ है। इसमें राज्य शामिल होंगे हो रहे हैं पंजाब से पश्चिम बंगाल यानी ईडीएफसी और दादरी से मुंबई यानी डब्ल्यूडीएफसी। ये कॉरिडोर के नाम हैं। वर्तमान स्टेटस यह है कि ईडीएफसी यानी पंजाब से पश्चिम बंगाल पूरी तरह से चालू है और डब्ल्यूडीएफसी यानी दादरी से मुंबई लगभग अंतिम चरण में है और चालू होने की स्थिति में है। इसकी खासियत क्या है, ये क्यों महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए? खासियत यह है कि माल गाड़ियों के लिए अलग से ये ट्रैक तैयार हुआ है जिसमें लॉजिस्टिक लागत में भारी कमी आएगी, जिससे आने वाले समय में महंगाई पर भी कंट्रोल होगा। माल प्रोडक्शन हाउस से लेकर दुकानदारों तक बहुत आसानी से और जल्दी पहुंचेगा एक राज्य से दूसरे राज्य तक सस्ते में, और तेजी से पहुंचने के कारण लागत घटेगी जिससे देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और महंगाई भी कम होगी। और पूरे भारत में यदि किसी छोटे से गांव छोटे से कोने में भी यदि कोई प्रोडक्शन करने वाली कंपनियां हैं तो वो एक कोने से दूसरे कोने तक देश भर में अपना माल पहुंचा सकेंगी और विदेशों में भी निर्यात करने में आसानी होगी। तो इस डीएफसी इंफ्रा का बहुत बड़ा महत्व है और 2026 में भारत इसमें क्रांतिकारी अचीवमेंट ला रहा है रेलवे के क्षेत्र में। तो चलिए अब हम आपको सुनाते हैं फिल्म सिकंदर का ये गाना।

श्रोताओं, वैसे तो हम कई ऐसे इंफ्रा इनोवेशन के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, या हमारे इंफ्रा जंक्शन में भारत में हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर परिवर्तन की चर्चा कर सकते हैं। समय कम है, तब भी कुछ खास बातें हम जानते हैं। जैसे अमृतसर जामनगर इकोनॉमी कॉरिडोर, इसकी लंबाई 1,257 किलोमीटर है और इसकी लागत करीब 80,000 करोड़ रुपए है। इसमें शामिल होने वाले राज्य हैं जो जिनको लाभ मिलेगा वो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। इसका वर्तमान स्टेटस ये है कि राजस्थान का हिस्सा यानी हनुमानगढ़ से जालौर तक का चालू हो चुका है। पूरा कॉरिडोर 2027 तक तैयार हो जाएगा। इसकी खासियत यह है कि उत्तर भारत की रिफाइनरियां जो हैं उनको गुजरात के बंदरगाहों से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो फेज 4 का काम चालू है जो इस वर्ष तक लगभग पूरा हो जाएगा, जिससे एनसीआर के दूरदराज इलाकों को जोड़ने में विस्तार मिलेगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है अटल सेतु एमटीएचएल एवं उसका विस्तार। इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर समुद्री पुल की है। इसकी लागत करीब 18,000 करोड़ से 21,000 करोड़ के मध्य है। जिस राज्य में काम चल रहा है वो है महाराष्ट्र, मुंबई से नवी मुंबई। इसका वर्तमान स्टेटस ये है कि मुख्य पुल चालू है। नवी मुंबई एयरपोर्ट और कोस्टल रोड से जुड़ने वाले लिंक 2026 में लगभग पूरे हो चुके हैं, समझिए। और खासियत यह है कि भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है ये, और इसकी वर्तमान अपडेट यह है कि इसे आधिकारिक तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नावा सेवा अटल सेतु के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा अभी आपने सुनोगा गंगा एक्सप्रेसवे, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, जिसकी लंबाई 594 किलोमीटर के करीब है और इसकी लागत करीब 36,000 करोड़ है। और उत्तर प्रदेश में मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा। वर्तमान स्टेटस यह है कि लगभग चालू हो चुका है। और यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है जो पश्चिमी और पूर्वी यूपी को जोड़ेगा, जिससे बहुत से आर्थिक फायदे देश को होने जा रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम में चलते चलते हम आपको सुनाते हैं फिल्म सैयारा का ये गाना।

श्रोताओं, इस गीत के साथ कार्यक्रम बातें नई गीत नए अब संपन्न होता है। एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। डीजे प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम युगल गीत। तो आइए सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म महबूबा का ये युगल गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के बैतूल के केंद्र से आप सुन रहे हैं युगल गीत का कार्यक्रम। आइए सुनते हैं फिल्म सिलसिला का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में।

श्रोताओं, इस गीत के साथ युगल गीत का कार्यक्रम संपन्न होता है। एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से मन प्रसारित करेंगे समाचार संध्या।

0: मुख्य समाचार। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे। और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डी के शिव कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरमैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि CLP नेता का चयन का कार्य AICC को सौंप देना चाहिए। इसके बाद AICC जनरल सेक्रेटरी KC मेरो गोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरमैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की। तब तक CLP मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि डी के शिव कुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और डी के शिव कुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब डी के शिव कुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य June 3 को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के सचेतक एग्री SS कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ TVK द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना DMK से इस्तीफा देने के तुरंत बाद TVK में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए TVK सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर

0: उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
2: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रति वर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
3: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहाँ से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीनें जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीनें जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि यह निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब

0: देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
1: As far as Operation Sindoor is concerned,
2: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाई और किम वॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गए। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहू मिस्क समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लब्बैतुम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 1,75,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में

0: डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन आपके लिए। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह। जौहर महमूद इन गोवा ये नाम फिल्म का है, इसी फिल्म का ये गाना है। मुकेश की आवाज, कमर जलालाबादी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: घराना फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। शकील बदायूनी के बोल थे, रवि का संगीत था। 2 जून, सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। अनारकली फिल्म का गीत हेमंत कुमार की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल सी रामचंद्र का संगीत।

आनंद बख्शी का लिखा गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म थी आपकी कसम। विविध भारती से यह है कार्यक्रम आपके लिए।

0: ज्वेल थे फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ।

रंगोली फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। शैलेंद्र के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत था। इसी के साथ आज का आपके लिए कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसी बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता।

ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संग।

विविध भारती के सभी श्रोताओं को दिलीप का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है पार्श्व गायक के यानी कृष्ण कुमार कुन्नाथ पर।

23 अगस्त 1968 को दिल्ली में जन्मे के यानी कृष्ण कुमार कुन्नाथ ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। बॉलीवुड में कदम रखने से पहले लगभग 3,500 जिंगल्स के लिए आवाज दी। क्रिकेट विश्व कप 1999 के दौरान भारतीय टीम की हौसला अफजाई के लिए जोश ऑफ इंडिया गीत में भी उन्होंने गाया। उन्होंने संगीत में कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी। केके का कहना था कि गायक का चेहरा दिखने के बजाय उसका सुना जाना ज्यादा जरूरी है।

ये गीत काफी लोकप्रिय रहा। हालांकि बॉलीवुड में पहला ब्रेक मिला फिल्म हम दिल दे चुके सनम के गाने तड़प तड़प से। उनके गीतों से युवा अपने आप को रिलेट कर पाते थे क्योंकि उनके गीतों में वो कहीं ना कहीं अपने आप को भी महसूस कर पाते थे और भावनात्मक रूप से भी जुड़ जाते थे, जैसे कि ये गाना उन्हीं के लिए गाया गया हो।

1999 में उन्होंने अपना एक एल्बम लॉन्च किया पल, जिसका गीत यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है काफी लोकप्रिय रहा और स्कूल कॉलेज के लगभग हर फेयरवेल फंक्शंस का हिस्सा रहता था। इस गाने के बगैर कोई भी फेयरवेल फंक्शन अधूरा ही माना जाता था।

केके के चर्चित गानों की बात करें, शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम का गाना आंखों में तेरी काफी लोकप्रिय हुए। काइट्स का जिंदगी दो पल की, जन्नत का गाना जरा सा, गैंगस्टर का गाना तू ही मेरी शब है।

उनको 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए नामित किया गया और उन्हें बचना ए हसीनो फिल्म के गाने खुदा जाने के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का स्क्रीन अवार्ड मिला।

के बचपन में डॉक्टर बनना चाहते थे। कॉलेज में दोस्तों के साथ मिलकर परफॉर्म भी करते थे और नेचर लवर भी थे। केके के कुछ अपने उसूल भी थे जिनसे वो समझौता नहीं करते थे। एक बार एक गाने को रिकॉर्ड करते वक्त उन्हें लगा कि गीत के बोल ठीक नहीं है और उनकी इस आपत्ति का सम्मान करते हुए गाने के बोल बदल दिए गए। अच्छे गायक की उनकी अपनी परिभाषा थी। केके मानते थे कि अच्छा सिंगर वही है जो किसी संगीतकार के गाने को अपना बना के गा सके।

0: संगीतकार ललित पंडित ने कृष्ण कुमार कुन्नाथ के लिए अपने हृदय के उद्गार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए।
1: केके को पूरी म्यूजिक फ्रेटर्निटी बहुत प्यार करती है, बहुत ही अच्छे कलाकार होने के अलावा बहुत अच्छे दिल के इंसान थे, बहुत दोस्त थे मेरे साथ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने इंडिपेंडेंट म्यूजिक में लाइफ में कभी कभी और शोबिज मुकेश भट्ट जी की फिल्म में गाने गाए हैं, इनमें सारे मेरे जतिन ललित के भी गाने गाए हैं। उनकी आवाज में एक यूथ को अट्रैक्ट करने की क्षमता थी और गाने में जो सुर पकड़ने की ताकत थी उनमें बहुत थी। और सबसे बड़ी बात है जो सिंगर में लोग ढूंढते हैं और जो कुदरत की तरफ से आती है वो एक वॉइस क्वालिटी। उनकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत ही यूथफुल वॉइस क्वालिटी थी। और वॉइस क्वालिटी का ऐसा होता है कि एज से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता, वॉइस पुरानी नहीं होती आपकी, आपकी गायकी आपको मेंटेन करनी पड़ती है और वो केके में थी।

कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से कॉन्सर्ट्स का हिस्सा बने, जिसके लिए वो खास तौर से जाने जाते थे। युवा दिलों की धड़कन बने और अपने आखिरी पलों में भी अपनी पूरी ऊर्जा के साथ वो युवाओं के साथ ही थे। 53 वर्ष की अवस्था में मंगलवार 31 मई 2022 को कोलकाता में कॉलेज के कॉन्सर्ट के बाद हम सबको हमेशा के लिए अलविदा कह गए।

0: श्रोताओं, आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित था पार्श्व गायक के यानी कृष्ण कुमार कुन्नाथ पर। आलेख और स्वर दिलीप का, संपादन और प्रस्तुति तेजस्वी कांबले की।
1: आज के फनकार।

सुरों की मधुरछाओं यादों का एक खूबसूरत सफर आपके रेडियो सेट तक पहुंचाएंगे, ऐसे गीत जो आपके मन को भा जाएंगे। इसलिए हमने इस कार्यक्रम का नाम दिया है मन भावन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको गीत सुना रहे हैं, फिल्म है तेरी कसम, आवाज अमित कुमार की, संगीत आर डी बर्मन का और गीतकार गुलशन बावरा।

एफएम बैंड 103.1 MHz पर यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। दोस्तों, फिल्मी गीतों के कार्यक्रम मन भवन में आप सभी का स्वागत है। हम आप तक पहुंचाएंगे

दोस्तों, अगला गीत हमने एक ऐसी फिल्म से लिया है जो फिल्म 1982 में एक तमिल फिल्म मंदरम पिराई का रीमेक थी। फिल्म व्यावसायिक रूप से असफल रही, लेकिन बाद में जब ये फिल्म रिलीज होकर लोगों ने देखा तो इस फिल्म के कथानक और इस फिल्म की अभिनेत्री के अभिनय के चर्चे पूरी फिल्म इंडस्ट्री में छा गए और धीरे धीरे ये फिल्म एक कल्ट फिल्म बन गई। फिल्म के गीत बहुत अच्छे थे, उससे ज्यादा तारीफ इस फिल्म की हीरोइन श्रीदेवी की हुई क्योंकि इसमें उन्होंने एक रेट्रोग्रेड एमनेसिया यानी स्मृति लूप होने वाली महिला का किरदार निभाया। फिल्म के कथानक के इतने शानदार होने से फिल्म बाद में व्यावसायिक रूप से भी सफल होना शुरू हो गई और फिल्म ने 31वें फिल्म फेयर में 3 नामांकन प्राप्त किए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए। इस फिल्म का एक गीत सुरेश वाडकर की आवाज में अपनी ऊंचाइयां छू गया, तो आइए सुनते हैं फिल्म सदमा का ये गाना।

श्रोताओं, आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन। दोस्तों, अगला गीत हम आपको एक ऐसी फिल्म से सुनाने जा रहे हैं जो वर्ष 1983 में एक ड्रामा फिल्म के रूप में आई। यह फिल्म 1980 में एरिक सेगल द्वारा लिखित उपन्यास मैन वुमेन एंड चाइल्ड का रूपांतरण थी। इसी उपन्यास पर अमेरिका में फिल्म मैन वुमेन एंड चाइल्ड बनाई गई और इसी किताब पर फिल्म उलंगल मलयालम मूवी भी तैयार की गई और तेलुगु में भी इसका रूपांतरण किया गया। इसकी पटकथा इतनी शानदार थी कि दुनिया भर में इवन तुर्की जैसे देश में भी इस फिल्म का रीमेक तैयार किया गया। भारत में फिल्म मासूम के नाम से रिलीज की गई। ये फिल्म वास्तव में तो पति पत्नी के संघर्ष की कहानी थी जिसमें एक बच्चा उलझ जाता है, लेकिन फिल्म की पटकथा गुलजार साहब ने कुछ इस तरह से लिखी कि इसके मूल उपन्यास से हटकर ये फिल्म एक बच्चे की स्टोरी बन गई और मैन एंड वुमेन के उस किस्से को थोड़ा सा इस बच्चे ने पीछे छोड़ दिया और जुगल हंसराज नाम का यह बच्चा फिल्मी दुनिया में एक मासूम से बच्चे के रूप में जबरदस्त चर्चित हुआ। इस फिल्म का संगीत हर तरह से तैयार किया गया था जिसमें रोमांटिक गीत भी था, बच्चों का भी गीत था और गजल भी थी, गम भरे गीत भी थे। तो इस फिल्म का एक गीत जो गजल था लेकिन इसका फिल्मांकन एक गीत के रूप में किया गया। इस गीत में अपनी आवाजें दी सुरेश वाडकर और भूपेंद्र ने। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।

0: श्रोताओं, वर्ष 1977 में एक फिल्म आई थी घरौंदा, जो डॉक्टर श्री शंकर शेष की कहानी पर आधारित एक नाटक पर बनी हुई थी। इस फिल्म का ताना बाना मुंबई शहर में आवास की समस्या के इर्द गिर्द बुना गया था और इसका कथानक इतना इंटरेस्टिंग होने के बाद भी एक सबक देता रहा और ये संदेश दिया कि मुंबई में आशियाना यानी घर ढूंढना या बनाना कितना कठिन काम है, जिसके कारण इस फिल्म में बताया गया कि एक परिवार ही बर्बाद हो जाता है। फिल्म के गीत बड़े खूबसूरत थे, तो चलिए आपको सुनाते हैं इसी फिल्म का गीत भूपेंद्र और रूना लैला की आवाज में, गीतकार गुलजार और संगीतकार जयदेव।
1: शहर में
2: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।

श्रोताओं, वर्ष 1978 में विनोद मेहरा और रेखा की एक फिल्म आई थी घर। इस फिल्म का कथानक एक ऐसी ज्वलंत समस्या को लेकर था जिसके लिए संघर्ष हमारे देश की आधी आबादी आज भी कर रही है। फिल्म का कथानक यूं था कि एक नवविवाहित जोड़े के संघर्ष ऐसे संघर्ष की कहानी है जिसमें उसकी पत्नी के साथ बलात्कार हो जाता है और उस सामूहिक बलात्कार से पत्नी मानसिक और पति सामाजिक रूप से टूट जाता है और समाज के थपेड़े झेलते झेलते वो दोनों मिलकर अपने घर को वापस कैसे संवारते हैं, इस संघर्ष की कहानी फिल्म घर में थी।

और इस फिल्म के गीत भी बेहद लोकप्रिय हुए। आरडी बर्मन ने इसका संगीत दिया था और गुलजार ने इसके गीतों को लिखा था। तो चलिए हम आपको सुनवाते हैं इसी फिल्म का एक गीत।

श्रोताओं, फिल्म घर के इस गीत के साथ कार्यक्रम मन भावन यहीं पर संपन्न होता है। एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम, और हमारे आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राजेश्वरी चौधरी के गाए हुए गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम और हम आपको सुना रहे राजेश्वरी चौधरी के गाए हुए गीत।

श्रोताओं, इस गीत के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। अब से कुछ ही देर बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से मनु प्रसाद करेंगे हिंदी में समाचार।

समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धारमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डीके शिवकुमार

0: बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केन्द्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहाँ विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉ सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करने में सक्षम है। डॉ सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सिलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: overs. And in badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the finals of the Singapore Open. The Indian pair defeated world number one South Korea's Ryo Seo, Sang Chae and Kim Won-ho in the semi-finals today. And that is the end of this news bulletin.
1: FM वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। कल की प्रसारण सभा में सुबह 5:55 पर हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। अब आज्ञा दीजिए, शुभ रात्रि, जय हिंद।